शुभ प्रभात। FM के 101.7 MHz पर आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948, आषाढ़ माह की तिथि 10, तदनुसार 1 जुलाई ईस्वी सन 2026। इस समय प्रातः के 5:59 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और इस समय सुबह के 6 बजने वाले हैं। समाचारों के लिए आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर भी बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक की अध्यक्षता की। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को कल से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल भगवती नगर आधार शिविर से रवाना होगा। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। श्री मनोज सिन्हा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। 57 दिन की यात्रा पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल

0: रेलवे ने 200 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण पूर्व रेलवे में शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने को मंजूरी दे दी है। इससे रेलवे का डिजिटल संचार नेटवर्क मजबूत होगा। इस परियोजना से दक्षिण पूर्व रेलवे के चार बड़े संभाग में 1600 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में 48 फाइबर ओएफसी कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन और दीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह बनाई। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। राउंड 32 के एक अन्य मैच में आज शाम मैक्सिको का सामना इक्वाडोर से होगा। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेप बाय शगुन चोपड़ा। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी रामजी एक्ट 2025 विल कम इनटू फोर्स अक्रॉस रूरल इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम टुडे। द रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री सेड दैट द एक्ट विच गारंटीज 125 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर विल एम्पावर रूरल इंडिया। Our correspondent reports that a provision of 95,692 crore rupees has been made in the current financial year for operationalization of the new framework across the country. On the implementation, Union Minister of Rural Development, Shivraj Singh Chauhan said, no eligible rural worker should remain without work even for a single day. Mr. Chauhan said, the government, in close coordination with the states and union territories, has completed all administrative, financial and technical preparations to ensure a seamless transition to the new framework. The minister said, adequate financial resources have been made available, implementation systems are fully in place and ongoing works will continue without interruption. He added, the enhanced guarantee of 125 days of wage employment will strengthen rural livelihoods, create durable community assets and accelerate the vision of Viksit Bharat. Prime Minister Narendra Modi had a telephone conversation with the Iranian President Dr. Masoud Pezeshkian yesterday. During the talks, President Pezeshkian briefed Mr. Modi on the recent developments in West Asia and the way forward. The Prime Minister welcomed the understanding reached and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Mr. Modi reiterated the need for continued efforts to ensure lasting peace and stability in the region and for safeguarding freedom of navigation and commerce. Japanese Prime Minister Sanae Takaichi is arriving in New Delhi this evening on a 3-day visit to India. This marks her first official visit to India. She will attend the 16th India-Japan Annual Summit tomorrow with Prime Minister Narendra Modi. The summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Our correspondent reports that India and Japan share a long-standing friendship rooted in centuries of cultural and civilizational exchange, spiritual affinity, and shared values of freedom, democracy, and respect for the rule of law. A major change in Uttarakhand's madrasa education system will come into effect from today. Under the new arrangement, the Uttarakhand Madrasa Education Board will be abolished and all minority educational institutions in the state will be governed under a new framework. From July 1st, the Uttarakhand Madrasa Education Board, the Uttarakhand Madrasa Education Board Act 2016 and the Uttarakhand Non-Government Arabic and Persian Madrasa Recognition Rules 2019 will cease to have effect. The state government has introduced a new system under the Uttarakhand Minority Educational Institutions Act. Under the new framework, the Uttarakhand State Minority Education Authority will be responsible.

राजा जनक के महल में बेटियों की विदा का करुण हृदय विदारक दृश्य उपस्थित है। लगता है जैसे करुणा और विरह ने वहां डेरा डाल दिया है। सीता ने जिन पक्षियों को सोने के पिंजरों में पाल पोस कर सिखाया पढ़ाया था, वे मानो पूछ रहे हैं कि वैदेही कहाँ हैं। और यदि पशु पक्षी इस प्रकार विकल हैं, तो मनुष्यों की दशा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। राजा जनक परम वैराग्यवान पुरुष थे, किंतु इस अवसर पर सीता को देख उनका धैर्य भी साथ छोड़ गया। जानकी को हृदय से लगाकर वो फूट पड़े। भावना ने ज्ञान और वैराग्य के बांध तोड़ दिए। मंत्रीगण उन्हें धीरज बंधा रहे हैं। मुहूर्त देखकर सुंदर सजीव ही पालकियों में कन्याओं को बिठाया गया। पिता ने उन्हें स्त्री धर्म और कुल की रीति की सीख दी। ब्राह्मणों की चरण धूली माथे पर लेकर राजा दशरथ ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और दल बल समेत अयोध्या के लिए चल पड़े। विदा के क्षणों में अधिक से अधिक समय तक उनके साथ रहने को आतुर राजा जनक उनके साथ हो लिए। विचित्र दृश्य है। देवता हर्षित हो पुष्प वर्षा कर रहे हैं, अप्सराएं मंगल गीत गा रही हैं। कौशलपति दशरथ बार बार जनक जी से लौट जाने का आग्रह करते हैं, किंतु प्रेमवश वो लौटना नहीं चाहते।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान और अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण।

हेमंत कुमार और साथियों के स्वर में आपने सुना ये भक्ति गीत। और अब श्रोताओं सुनवा रहे हैं आपको लता मंगेशकर का गाया ये भजन।

लता मंगेशकर के स्वर में गाए इस भक्ति गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण समाप्त होता है।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब श्रोताओं आज के प्रातःकालीन सभा में आइए आपको प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में बता दें। 6:45 पर आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम और सुबह 7 जोहार चाईबासा का कार्यक्रम होगा जिसमें आप कुछ फिल्मी गीतों का आनंद ले सकेंगे। प्रातः 8 समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज का प्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 8:30 पर प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 8:40 पर होगा कार्यक्रम माटी की महक जिसमें आप बांग्ला गीत सुन सकेंगे। सुबह 9 प्रसारित करेंगे कार्यक्रम विविधा और आज के कार्यक्रम विविधा में हम बात करेंगे डॉक्टर बीसी रॉय के जयंती पर और पुरुषोत्तम दास टंडन के पुण्यतिथि पर। श्रोताओं 1 से 7 तक मनाए जाने वाले वन महोत्सव सप्ताह पर आज हमारा चर्चा का विषय होगा पेड़ लगाएं भविष्य बचाएं। 9:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा रस रंजन। सुबह 10 आपको सुनवाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, इसके प्रायोजक होंगे NCERT। 10:30 पर आपको लिए चलेंगे हम आकाशवाणी के रांची केंद्र जहां से आप आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का आनंद ले सकेंगे। तो श्रोताओं अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज के प्रातःकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के विषय में।

हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम और श्रोताओं आपको सुनवा रहे हैं राजश्री बनर्जी के स्वर में ये गीत।

आकाशवाणी का ये चाय बसा केंद्र है और श्रोताओं, हम लेकर हाजिर हैं जोहार चाय बसा का कार्यक्रम। जोहार चाय बसा सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को निशा का जोहार। श्रोताओं, आज के जोहार चाय बसा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सुबह का यह खुशनुमा समय नई उम्मीदों, नए सपनों और नई ऊर्जा का संदेश लेकर

श्रोताओं, अभी आपने सुना लता मंगेशकर का गाया, हसरत जयपुरी का लिखा, शंकर जयकिशन के धुन पर फिल्म शतरंज का ये गीत।

श्रोताओं, सुबह का समय भी एक नए सफर की शुरुआत जैसा होता है। पक्षियों की चहचहाहट, ठंडी हवा और उगते सूरज की किरणें मन को नई उमंगों से भर देती है। और अब श्रोताओं, सुनते हैं हमारे कार्यक्रम का अगला गीत।

स्वामी फिल्म के इस गीत को आपने सुना यशुदास की आवाज में। श्रोताओं, हमारा जीवन सुबह की तरह ही है। हर दिन हमें कुछ नया सिखाता है, कुछ नया दिखाता है, इसलिए हमें हर पल का आनंद लेना चाहिए और आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। और इसी भावना के साथ सुनते हैं हमारा अगला ये मधुर गीत।

श्रोताओं, गाइड फिल्म का ये गीत एचडी बर्मन के धुन में अभी आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में। और दोस्तों, नई सुबह, नई आशाएं और नए संकल्प, यही तो हमारे जीवन का सार है। जब मन उत्साह से भरा हो तो हर राह हमें आसान लगने लगता है। और सुनवा रहे हैं आपको हमारा अगला ये खूबसूरत सा गीत।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना लता मंगेशकर का गाया फिल्म प्रेम पर्वत का ये गीत। गीत लिखा था जानिशार अख्तर ने और संगीत दिया था जयदेव ने।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: और इस अंतराल के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सबों का फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं जोहार चाईबासा कार्यक्रम में ये गीत। दोस्तों, प्रकृति का सौंदर्य हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन और शांति कितनी आवश्यक है। सुबह का समय आत्मचिंतन और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे अच्छा अवसर होता है। और अब सुनते हैं हमारे कार्यक्रम का अगला गीत।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना साहिल लुधियानवी का लिखा ये गीत खयाम के धुन पर मुकेश का गाया, फिल्म कभी कभी से।
1: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: बोले सब ओड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे नका गे आम बोले रुड़ तबन में अले परिवार से मतलब पूरे ये ना
4: वरना मंगलोर आए को गांव बरगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहां बना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुन पार ली वही चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
5: नाम है रनबला देवी गांव बारे हत्तो तो था तो घर आए में हमरे घरे बहुत दुख के बात होते कम बात हो जाए है
6: नितुम बुरन सिंह तामसोय अनिता तामसोय भरूपा सेना करना ऐसे दुखुर में ना आया यापा में रिया तपा में रिया वाह बेटा निका
7: अन्य नितुम दो मुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्या हम दो कोदमरी कोड़ा रो पटन पटन तुम कितने ही कोड़ा मैंने मैं उड़ी ने बागिया तो कि दुना से यार की कोलो पुलिस कोलो इन्हीं लड़ाई चलाओ तमे दुर्गम कोई यहाँ तो जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काको मेल मिया
8: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेते ना लेंगे जा हुरा रे मिनाई रो जिता हुरा रे मिनाई रो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आगे बिता हुरा इनका अले आया नु तुम तेना मिल आप ही लेते ना।
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।

और इस संदेश के बाद श्रोताओं चलते हैं अपने कार्यक्रम की ओर। फिर एक बार आप सुन रहे हैं जोहार चाईबासा का कार्यक्रम। दोस्तों, आज का यह सुहाना मौसम हमें प्रकृति के और करीब ले जाता है। मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू की कल्पना ही हमारे मन को रोमांचित कर देती है। हवा के ठंडे झोंके, बादलों की आवाजाही और वर्षा की संभावनाएं वातावरण में एक नई ताजगी भर देती है। और इस मनभावन मौसम में बादलों की इस खूबसूरत छटा और प्रकृति के इस अनुपम श्रृंगार का आनंद लेते हुए सुनते हैं ये सदाबहार गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना लता मंगेशकर का गाया फिल्म पाकीजा का ये गीत। दोस्तों, बादलों से भरा आसमान और हल्की हल्की हवा सुबह के वातावरण को और भी मनमोहक बना देती है। ऐसे ही मौसम में संगीत का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। तो इस आनंद को बढ़ाते हुए सुनते हैं हमारा अगला ये गीत फिल्म चित्रलेखा से आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में।

श्रोताओं, अभी आपने सुना महेंद्र कपूर और बालबीर का गाया फिल्म मेरे हमसफर का ये गीत, और अब सुनवा रहे हैं आपको कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वर में फिल्म महबूबा का ये गीत। और अब दोस्तों, जीवन की धारा निरंतर बहती रहती है। सुख और दुख, सफलता और असफलता सब हमारे जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने आशा का दामन कभी न छोड़ें और चलते रहें। इसी भावना के साथ सुने ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर और मन्ना डे साथियों को फिल्म शोर में। इसी के साथ हमारा आज का जोहार चाय बसा का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये

0: मुख्य समाचार। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेशकियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी रामजी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। हरियाणा में अब मजदूरी दर 409 रुपए, गोवा में 406 रुपए और केरल में 401 रुपए प्रतिदिन होगा। सिक्किम की ऊंचाई वाली ग्राम पंचायतों में ये दर 450 रुपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेशकियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेशकियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया।

0: वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
1: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27 अरब डॉलर से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले लिए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
2: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।
3: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजानदास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
4: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा।
3: सभी मदरसों को UDIS, यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: देशव्यापी जनगणना के अंतर्गत आज केरल में घर घर जाकर आंकड़ों के सत्यापन का चरण शुरू हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
5: स्वगणना की प्रक्रिया पूरे होने के

0: बाद फील्ड सत्यापन का चरण शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया कल खत्म हुई। इस दौरान परिवार जनगणना पोर्टल के जरिए अपने सदस्यों की जानकारी डिजिटल रूप से जमा कर सकते थे। जिन लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लिया है उन्हें घर पर आने वाले जनगणना कर्मचारी को सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। इसके बाद कर्मचारी यह जांच करेगा कि ऑनलाइन दी गई जानकारी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई अंतर मिलता है या किसी परिवार ने स्वगणना पूरी नहीं की है तो कर्मचारी घर पर आने के दौरान जरूरी जानकारी फिर से इकट्ठा करेंगे। स्मृति एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय UPTET की समीक्षा बैठक में लिया गया। TET परीक्षा गुरुवार से 4 जुलाई तक राज्य के 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जंतुलुरु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। ये दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 में मैक्सिको और इक्वाडोर के बीच मुकाबला जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ही बाजार की स्थिति और पर्यावरण के सरोकारों को भी जगह दी गई है। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण को शीर्ष समाचार बनाया है। एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को किसी नुकसान का कोई सबूत नहीं। अखबार ने यह भी स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता है। पत्र ने सोने चांदी के भावों और सेंसेक्स में गिरावट की स्थिति अगले 6 माह में सुधरने की आशा की है। पंजाब केसरी ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पीएम की हाई लेवल मीटिंग और बॉक्स में प्रकाशित किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत कई मुद्दों पर पीएम ने चर्चा की और कहा कि सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हुए हॉर्मुज में प्रधानमंत्री की ओर से नौवहन की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिए जाने को भी पत्र ने शीर्ष समाचार बनाया है। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है ओजोन प्रदूषण बना रहा दिल्ली NCR को बीमार। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर आलेख प्रकाशित किया है एक नए दौर की शुरुआत। लेख में कहा गया है कि आज भारत के 2 पड़ोसी चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न हैं और उनकी वायुसेनाएं तेजी से आधुनिक हो रही हैं। ऐसे में DRDO द्वारा नेत्र प्रणाली को अंतिम परिचालन की मंजूरी मिलना भारत की हवाई निगरानी क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत जैसा है।
1: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिशकियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। विकसित भारत जी राम जी स्कीम कम्स इनटू फोर्स अक्रॉस द कंट्री टुडे, रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग एमजी नरेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीक्स टू ईरानियन प्रेसिडेंट, स्ट्रेस्ड नीड फॉर कंटिन्यूड एफर्ट्स टू सिक्योर लास्टिंग पीस इन वेस्ट एशिया एंड सेफगार्डिंग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड कॉमर्स। जापानीज प्राइम मिनिस्टर सनाई ताकायची to arrive in New Delhi this evening on a three-day visit to India. France beat Sweden 3-0 to enter round of 16 at FIFA World Cup football, and India's men's cricket team to begin their five-match 2020 international series against hosts England today. Vikasit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen Vikasit Bharat Ji Ram Ji Act 2025 will come into force across rural India with effect from today. The Rural Development Ministry says that the Act, which guarantees 125 days of wage employment in every financial year, will empower rural India. Our correspondent reports that a provision of 95,692 crore rupees has been made in the current financial year for operationalization of the new framework across the country.
4: The VBG Ramji Act replaces the 20-year-old Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005. The new act aims to enhance the statutory employment guarantee from 100 days to 125 days in a financial year. This enhanced employment guarantee is intended to support the accelerated pace of rural development, provide greater income security, and empower rural households. The Act places strong emphasis on timely, transparent, and accountable wage payments. The new Act also provides for an unemployment allowance if work is not provided within the stipulated time. The Viksit Bharat Ji Ram Ji Act is a comprehensive legislative framework designed to align rural employment generation with the national vision of Viksit Bharat by 2047. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
3: The central government has notified revised wage rates under the Viksit Bharat Ji Ram Ji Act 2025 effective from today. According to the notification issued by the Rural Development Ministry, wage rates have been enhanced across all states and union territories. It said, for the first time, an interim base wage rate of 300 rupees per day has been introduced, ensuring that no notified wage under the program falls below this level. The national average wage has risen from 298.8 rupees per day under MG Narega to 327.4 rupees per day under Viksit Bharat Ji Ram Ji, marking an average increase of over 10%. 21 states and administrative units, which previously had wages below 300 rupees, have now been brought up to the new benchmark. The states of Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, West Bengal, Assam, Arunachal Pradesh, and Himachal Pradesh are among those witnessing significant hikes ranging from between 15 and 25%. The ministry highlighted that Arunachal Pradesh and Nagaland have received the highest percentage increase of nearly 24.5%. States with already higher wages have also seen upward revisions. Haryana will now have a wage rate of 409 rupees, Goa 406 rupees, and Kerala 401 rupees per day. In Sikkim's high altitude Gram Panchayats, the rate has been set at 450 rupees per day. Union Minister for Rural Development, Shivraj Singh Chauhan, described the revision as a historic step towards building a Vikasit Bharat through prosperous villages. The Uttarakhand Minority Education Authority has come into existence today, replacing the Madrasa Board in the state. With this, all 456 madrasas in Uttarakhand will now be monitored by both the state government and the central government. More from our correspondent.
5: The Uttarakhand government has taken this significant step to make the education system more modern, transparent and inclusive. State Minister for Social Welfare, Shri Khajan Das, said that all recognized madrasas currently operating in the state will now come under the Uttarakhand Minority Education Authority. They will also be affiliated with the Uttarakhand Board for School Education to ensure that students receive education in line with the national education standards. He said that the new system will not only be limited to institutes of the Muslim community alone, but will also apply

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 आज से लागू। 100 की जगह 125 दिनों का मिलेगा रोजगार। राज्य सरकार ने तमिलनाडु गैस रिसाव हादसे में प्रभावित सभी 42 प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की। ट्रेन से झारखंड के लिए हुए रवाना। अपराध नियंत्रण में लापरवाही पर जमशेदपुर के एसएसपी और सरायकेला के एसपी पद से हटाए गए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया निर्देश। राज्य के नवनियुक्त सूचना आयुक्तों का लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह आज। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार दिलाएंगे शपथ। और मौसम विभाग ने राज्य में अगले 4 दिन तेज बारिश, आंधी और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो गया है। यह अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। एक रिपोर्ट।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर, पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्र लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय से जारी अधिसूचना के अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पारिश्रमिक दर बढ़ा दी गई है। मंत्रालय ने बताया कि पहली बार 300 रूपये प्रतिदिन का अंतरिम आधार पारिश्रमिक दर लागू किया गया है और सुनिश्चित किया गया है कि इस कार्यक्रम के तहत कोई भी अधिसूचित दर इससे कम न हो। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15-25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में अमोनिया गैस रिसाव हादसे में प्रभावित झारखंड के सभी 42 प्रवासी श्रमिक सुरक्षित ट्रेन से झारखंड के लिए रवाना हो गए हैं। श्रम विभाग और राज्य प्रवासी श्रमिक नियंत्रण कक्ष ने तमिलनाडु प्रशासन, रेलवे और अस्पताल प्रशासन के साथ समन्वय कर श्रमिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की। इस हादसे में धनबाद की प्रीति देवी की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। झारखंड सरकार ने मृतका के परिजनों को नियमानुसार मुआवजा और अन्य वैधानिक लाभ दिलाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्वी सिंहभूम के वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे और सरायकेला खरसावां के पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी को उनके वर्तमान पद से हटाने का निर्देश दिया है। विधि व्यवस्था नियंत्रित करने में विफलता और आपराधिक गतिविधियों को रोकने में लापरवाही के कारण पद से हटाने का आदेश दिया गया है। वहीं आयुक्त चाईबासा और एडीजी रांची को लगातार कैंप करने का आदेश दिया गया है। डीआईजी भी जमशेदपुर में ही कैंप करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत ने देर रात सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही या जवाबदेही से बचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित बार के बाहर चाकूबाजी और हत्या के मामले में पुलिस जांच तेज हो गई है। जोनल एडीजी सह एडीजी सीआईडी मनोज कौशिक ने कल घटना स्थल का निरीक्षण किया तथा सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की कार्रवाई की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
2: तो इसमें लापरवाही हुई है, कुछ चूक रही है, तो जिस जिसकी भी लापरवाही और चूक है उनपे एक्शंस ऑलरेडी कुछ लोगों पे ले लिए गए हैं। पूरा रिव्यू करेंगे, उसके बाद में जिसकी भी जिस स्तर पे भी लापरवाही होगी उस पर एक्शंस हो।

0: और साथ ही साथ इंसिडेंट जितने क्रिमिनल्स इन्वॉल्व हैं और जितने साथ में उनके को एक्यूज, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एक टाइम बाउंड तरीके से तो टीम्स को निकाला गया है और जैसे ही टीम्स निकलेंगी उसके बाद में इस पर डेफिनेटली।
1: धनबाद के सोनाडी ओपी क्षेत्र के टंडाबाड़ी में भूधसान प्रभावित इलाके को खाली कराने की दिशा में कार्रवाई करते हुए कल बीसीसीएल प्रबंधन ने 21 अवैध आवासों में से 16 को ध्वस्त कर दिया। बीसीसीएल प्रबंधन का कहना है कि यह क्षेत्र भूधसान की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है और किसी भी संभावित हादसे से लोगों के जानमाल की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के नवनियुक्त सूचना आयुक्तों का शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 11:30 बजे लोकभवन में आयोजित होगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार चारों नवनियुक्त सूचना आयुक्तों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा आयु सीमा में छूट से संबंधित सभी याचिकाओं का निस्तारण किए जाने के बाद जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2025 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी करने का रास्ता साफ हो गया है। अदालत ने कहा कि अधिकतम आयु सीमा तय करना राज्य सरकार का नीतिगत अधिकार है और सरकार पहले ही अभ्यर्थियों को 4 वर्ष की आयु सीमा में छूट दे चुकी है। झारखंड उच्च न्यायालय ने वर्ष 2020 के कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान कई जिलों में हुई अवैध पेड़ कटाई मामले की जांच में हो रही देरी पर राज्य सरकार और सीआईडी को फटकार लगाई है। अदालत ने जांच को केवल पलामू तक सीमित रखने पर चिंता जताते हुए पूरे मामले में संभावित बड़ी साजिश की व्यापक जांच कर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। चतरा पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के 2 उग्रवादी को पिपरवार से गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ प्रभात रंजन बरवार ने बताया कि कई मामलों में वांछित दोनों उग्रवादी लंबे समय से फरार चल रहे थे।
2: टीपीसी के 2 क्रियावादी सक्रिय क्रियावादी मसी टिग्गा और किरण नगड़वार, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। ये पूर्व से भी पिपरवार थाना कांड संख्या में वांछित थे, फरार चल रहे थे। कल एक विशेष छापा में अधिकारी दल का गठन करते हुए इन दोनों को गिरफ्तार किया गया।
1: खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र के एक फास्ट फूड दुकान में छापेमारी कर भारी मात्रा में मिलावटी अवैध शराब जब्त की गई है। डीएसपी मंगल सिंह जामुदा ने बताया कि दुकानदार को गिरफ्तार किया गया, इसके साथ 5 लोगों के ऊपर मामला दर्ज किया गया है।
3: में अड़की बाजार में कुछ अवैध शराब की खरीद बिक्री हो रही है, उसके सूचना पर हम लोग ने छापेमारी की गई। कुल 460 बोतलें बरामद हुई जो विभिन्न ब्रांड की शराब की बोतलें हैं। उसके बाद एक व्यक्ति जो पकड़ाया है फास्ट फूड का दुकान चलाते उनके भाई के साथ।
1: मौसम विभाग ने राज्य में आज से 4 जुलाई तक तेज बारिश, वज्रपात और तेज हवा की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलने तथा सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम दौरे के लिए 22 सदस्यों की जूनियर अंडर-21 पुरुष हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। मैच 5 से 18 जुलाई तक खेले जाएंगे। भारतीय टीम की कप्तानी अनमोल एक्का को सौंपी गई है। भारत अपने अभियान की शुरुआत 7 और 8 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच से करेगा। अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री की कार्रवाई की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है पूर्वी सिंहभूम एसएसपी और सरायकेला एसपी हटाए गए, एडीजी संभालेंगे कमान। हिंदुस्तान के शब्द हैं राज्य के 48 शहरी निकायों में एफएसटीपी बनाएगी सरकार। दैनिक जागरण ने लिखा है वेतन निकासी मामले में एसआईटी ने 21 बैंक खातों को कराया फ्रीज। प्रभात खबर की सुर्खी है झारखंड के 12 जिलों में सूखे का साया, अब तक 54% कम बारिश। और अब अंत में मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 आज से लागू। 100 की जगह 125 दिनों का मिलेगा रोजगार। राज्य सरकार ने तमिलनाडु गैस रिसाव हादसे में प्रभावित सभी 42 प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की। ट्रेन से झारखंड के लिए हुए रवाना। अपराध नियंत्रण में लापरवाही पर जमशेदपुर के एसएसपी और सरायकेला के एसपी पद से हटाए गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया निर्देश। राज्य के नवनियुक्त सूचना आयुक्तों का लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह आज। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार दिलाएंगे शपथ। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 4 दिन तेज बारिश, आंधी और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

आकाशवाणी का ये चाय बासा केंद्र है और अब श्रोताओं प्रस्तुत है लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। श्रोताओं कार्यक्रम माटी की महक में आज आपको सुनवा रहे हैं बंगला लोकगीत। तो सबसे पहले कलाकार हैं प्रहलाद ब्रह्मचारी के स्वर में, सुनते हैं ये लोकगीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रूना लैला के स्वर में ये लोकगीत, और अब सुनवाएंगे आपको कार्यक्रम का अगला लोकगीत। इससे पहले ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: और इस संदेश के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम माटी की महक में अगला लोकगीत आपको सुनवा रहे हैं पूरनदास बाउल के स्वर में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोकगीत के कार्यक्रम में बंगला लोकगीत पुरनदास बाउल के स्वर में। इसी के साथ हमारा आज का लोकगीत का ये कार्यक्रम माटी की महक यहीं संपन्न होता है।

कार्यक्रम विविधा सुनने वाले सभी श्रोताओं को निशा का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम विविधा में आज हम बात करने वाले हैं वन महोत्सव सप्ताह, जो कि 1 से 7 जुलाई तक चलेगा, उस विषय पर। और आज डॉक्टर बीसी रॉय की जयंती है और पुण्यतिथि होगी पुरुषोत्तम दास टंडन पर की। तो श्रोताओं, आज के विविधा कार्यक्रम में हम इन्हीं विषयों पर बात करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं वन महोत्सव पर। श्रोताओं, वन महोत्सव भारत में प्रतिवर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाए जाने वाला एक राष्ट्रीय वृक्षारोपण अभियान है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि एवं खाद्य मंत्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य था लोगों में वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा वनों के संरक्षण का संदेश देना। श्रोताओं, जुलाई का महीना प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को याद दिलाता है। इसी अवधि में मनाया जाता है वन महोत्सव, जो केवल वृक्षारोपण का कार्यक्रम नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित और सुरक्षित भविष्य का संकल्प है। तो आज वन महोत्सव के अवसर पर हम आइए चर्चा करते हैं, पेड़ लगाएं, भविष्य बचाएं, इस विषय पर। श्रोताओं, यह विषय हमारे लिए केवल पर्यावरण संरक्षण से ही नहीं बल्कि मानव जीवन, स्वास्थ्य, विकास और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। प्रकृति ने हमें जीवन जीने के लिए सभी आवश्यक संसाधन प्रदान किए हैं, जैसे कि शुद्ध वायु, स्वच्छ जल, उपजाऊ भूमि और अनुकूल जलवायु। ये सभी प्रकृति के अमूल्य देन हैं। लेकिन आज बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिकरण और वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण पर्यावरण का संतुलन लगातार बढ़ रहा है। ऐसे समय में पेड़ों का महत्व पहले से कहीं और भी अधिक बढ़ गया है। पेड़ प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। वे केवल हरियाली ही नहीं देते बल्कि जीवन

और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती ही जा रही है। इन समस्याओं का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है वन संरक्षण। एक स्वस्थ वृक्ष अपने जीवन काल में हजारों किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर सकता है। वह न केवल पर्यावरण को स्वच्छ बनाता है बल्कि आसपास के तापमान को भी नियंत्रित करता है। श्रोताओं, पेड़ों का महत्व केवल पर्यावरण तक ही सीमित नहीं है बल्कि वे हमारी अर्थव्यवस्था और आजीविका से भी जुड़े हुए हैं। लाखों लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वनों पर निर्भर हैं। पेड़ों से हमें फल, लकड़ी, औषधियाँ, रेशा, गोंद और अनेक उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेड़ किसानों के मित्र माने जाते हैं। वे मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखते हैं और हमें जल संरक्षण में मदद करते हैं। कृषि उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होते हैं। पेड़ों की जड़ें मिट्टी के कटाव को रोकती है और वर्षा के जल को भूमि में समाहित करने में मदद करती है। यदि हम अपने आसपास के वातावरण को देखें तो पाएंगे कि जहां पेड़ों की संख्या अधिक है वहां वातावरण अपेक्षाकृत ठंडा और स्वच्छ होता है। वहीं पेड़ों की कमी वाले क्षेत्रों में गर्मी बहुत अधिक महसूस होती है और प्रदूषण का स्तर भी बढ़ जाता है। आज शहरों के कंक्रीट के जंगल तेजी से बढ़ रहे हैं। बहुमंजिला इमारतें, सड़कें और वाहन तो बढ़ ही रहे हैं, पेड़ों की संख्या घटती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और गर्मी की समस्या बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी यह है कि वह वृक्षारोपण को अपने जीवन का हिस्सा बनाए। भारत की संस्कृति में वृक्षों को सदैव सम्मान दिया गया है। पीपल, बरगद, नीम, तुलसी, बेल और आंवला जैसे पौधों को धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से विशेष महत्व प्रदान प्राप्त है। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति संरक्षण को अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाया है। आज आवश्यकता है कि हम उन परंपराओं को आधुनिक संदर्भ में पुनः अपनाएं। वर्तमान समय में सरकार और विभिन्न सामाजिक संस्थाएं भी वृक्षारोपण के लिए अनेक अभियान चला रही है। वन महोत्सव, हरित अभियान और एक पेड़ माँ के नाम जैसे कार्यक्रम लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक कर रहे हैं। लेकिन केवल सरकारी प्रयास हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। जन भागीदारी के बिना पर्यावरण संरक्षण का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकता है। एक पौधा लगाना आसान है श्रोताओं, लेकिन उसे वृक्ष बनने तक सुरक्षित रखना और भी अधिक महत्वपूर्ण है। अक्सर देखा जाता है कि लोग उत्साह में पौधे तो लगा देते हैं लेकिन बाद में उसकी उचित देखभाल नहीं करते, जिसके परिणाम स्वरूप अधिकांश पौधे जीवित नहीं रह पाते। इसलिए वृक्षारोपण के साथ साथ पौधों की नियमित सिंचाई, सुरक्षा और देखभाल भी बहुत ही जरूरी है। यदि हम एक पौधा लगाकर उसे वृक्ष बनने तक संरक्षित करें तो यह पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा योगदान होगा। कल्पना कीजिए, यदि हमारे देश का प्रत्येक नागरिक वर्ष में केवल एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करे तो कुछ वर्षों में करोड़ों नए वृक्ष तैयार हो सकते हैं। इससे न केवल पर्यावरण में सुधार होगा बल्कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से भी निपटने में हमें सहायता प्राप्त होगी। पेड़ आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी सबसे मूल्यवान विरासत है श्रोताओं। हम जो वृक्ष आज लगाते हैं उसकी छाया, फल और ऑक्सीजन का लाभ हमारे बच्चे और आने वाली पीढ़ियां उठाएंगी। इसलिए वृक्षारोपण केवल वर्तमान के लिए ही नहीं बल्कि हमारे भविष्य के लिए निवेश के रूप में है। आज हमें यह समझने की आवश्यकता है कि पर्यावरण संरक्षण कोई विकल्प नहीं बल्कि हमारी आवश्यकता है। यदि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति भी हमारी रक्षा करेगी, लेकिन यदि हमने पर्यावरण के प्रति अपने जिम्मेदारियों की उपेक्षा की तो
आने वाले समय में हमें गंभीर

0: परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो श्रोताओं, आइए सब मिलकर यह संकल्प लें कि अपने जीवन में अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे और लगाए गए पौधे की देखभाल करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। जिस धरती ने श्रोताओं हमें जीवन दिया है, उसे हरियाली लौटाना हमारा कर्तव्य है। एक पेड़ केवल पौधा नहीं बल्कि आने वाले कल की सुरक्षा है। तो आइए हम सब मिलकर कहें कि पेड़ लगाएं, भविष्य बचाएं, हरियाली बढ़ाएं और हमारे धरती को स्वर्ग बनाएं। तो श्रोताओं, वन महोत्सव सप्ताह के अवसर पर हम चर्चा कर रहे थे पेड़ लगाएं, भविष्य बचाएं विषय पर।
1: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: बोले सब ओड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे नका गे आम बोले रुड़ तबन में अले परिवार से मतलब पूरे ये ना
4: मोर नाम मंगलो राय को गांव बरगड़ा आड़की थाना। तो जंगल गया है तो आउ का कहां मने आ है लोग आउ का वो जिंदा है ना मने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
5: नाम है रंगबला देवी गाँव बारे भक्तो तो घर आई में हमारे घर बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जा है।
6: नितुम बुरम सिंह तामसाय अनिता तामसाय भुरुपा सेना करना ऐसे दुखुर मिना वापा में रिय तपा में रिय वा बेटा निका
7: अन्या नितुम दो मुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्या हम दो कोदमरी कोड़ा और पटन पटन तुम कितमई कोड़ा मिनिम पुरी ने बागिया तो कि दुना से आरती को पुलिस को ने लड़ाई चलाओ तम दुरुरम को यहां तब जाए तेरे काका गु को उन को को काको ने लिया
8: अलिंग मुनि सुरन कहते आपी लेता ना लिंग से आ जा हुरा रे मिनाई रे जीता हुरा रे मिनाई रो तो बुगिन हुरा ते ससन का है हुआ गए बेटा उरन का आले आया न तुम कहीं ना आपी लेता ना।
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आएं आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
0: इस संदेश के बाद श्रोताओं, हम बात करेंगे आज डॉक्टर बीसी रॉय की जयंती पर। श्रोताओं, भारत के महान चिकित्सक, कुशल प्रशासक, समाज सेवी और भारत रत्न से सम्मानित विभूति डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, जिन्हें हम प्रेम और सम्मान से डॉक्टर बीसी रॉय के नाम से जानते हैं। 1 जुलाई का दिन भारत के लिए विशेष महत्व रखता है। इसी दिन वर्ष 1882 में डॉक्टर बीसी रॉय का जन्म हुआ था।

0: और संजोगवश इसी दिन वर्ष 1962 में उनका निधन भी हुआ। उनके असाधारण योगदान को सम्मान देने के लिए भारत में प्रतिवर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर बीसी रॉय का जीवन सेवा, त्याग, कर्तव्य निष्ठा और मानवता के प्रति समर्पण का एक अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने चिकित्सा को केवल एक पेशा नहीं माना, बल्कि मानव सेवा का सर्वोच्च माध्यम समझा। श्रोताओं, डॉक्टर रॉय का जन्म बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। बचपन से ही वे बड़े मेधावी, अनुशासित और परिश्रमी थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा उत्कृष्ट ढंग से पूरी की और बाद में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। उच्च चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे इंग्लैंड गए, जहां उन्होंने कठिन परिश्रम और लगन के बल पर चिकित्सा विज्ञान की प्रतिष्ठित परीक्षाएं पास की। विदेश में उज्ज्वल भविष्य के अनेक अवसर उनके सामने थे, लेकिन उन्होंने अपने देश लौटकर भारतवासियों की सेवा का मार्ग चुना। यह निर्णय उनके राष्ट्र प्रेम और जनसेवा की भावना को दर्शाता है। श्रोताओं, भारत लौटने के बाद उन्होंने चिकित्सा सेवा को अपना जीवन समर्पित कर दिया। वे केवल रोगों का उपचार नहीं करते थे, बल्कि रोगियों के दुख दर्द को भी समझते थे। गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करना उनकी आदत थी। अनेक लोगों का उन्होंने निःशुल्क उपचार भी किया। उनका मानना था कि एक डॉक्टर का पहला कर्तव्य रोगी की पीड़ा को कम करना है। यही कारण था कि वे मरीजों के बीच बहुत ही लोकप्रिय थे। डॉक्टर बीसी राय केवल एक सफल चिकित्सक ही नहीं, बल्कि एक जागरूक नागरिक और राष्ट्रभक्त भी थे। श्रोताओं, वे स्वतंत्रता आंदोलन के विचारों से प्रभावित थे और राष्ट्रीय नेताओं के संपर्क में रहा भी करते थे। उन्होंने अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को चिकित्सीय सहायता प्रदान की और देश हित के कार्यों में सहयोग दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया, लेकिन उनका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं था। वे राजनीति को जनसेवा का माध्यम मानते थे। उनकी ईमानदारी, कार्यकुशलता और दूरदर्शिता के कारण उन्हें जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। वर्ष 1948 में वे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने राज्य के विकास के लिए अनेक ऐतिहासिक कार्य किए। उन्होंने औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, शिक्षा के प्रसार और शहरी विकास को विशेष महत्व प्रदान किया। उनके नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में कई विकास के आयामों को छुआ। उन्होंने अनेक अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और विकास परियोजनाओं को बढ़ावा दिया। आधुनिक पश्चिम बंगाल के निर्माण में उनके योगदान को आज भी सम्मानपूर्वक याद किया जाता है। डॉक्टर रॉय का विश्वास था कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति और नागरिकों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर निर्भर करती है, इसलिए उन्होंने चिकित्सा और शिक्षा दोनों क्षेत्रों में विशेष कार्य किया। उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं को आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया और चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि किसी भी पेशे में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए साथ साथ समाज के प्रति अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करना भी आवश्यक है। वर्ष 1961 में भारत सरकार ने उनके अद्वितीय योगदान को सम्मानित करते हुए उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया। यह सम्मान चिकित्सा, शिक्षा, राजनीति और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान की राष्ट्रीय स्वीकृति थी। आज जब हम राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाते हैं, तब हमें डॉक्टर बीसी राय के जीवन से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। उन्होंने हमें सिखाया कि चिकित्सा सेवा केवल उपचार तक सीमित नहीं, बल्कि यह करुणा, संवेदना और मानवता की सेवा का मार्ग है। विशेष रूप से कोविड-19 जैसे वैश्विक महामारी के दौरान हमने देखा कि डॉक्टरों ने किस प्रकार अपने जीवन की परवाह किए बिना मानवता की सेवा की। ऐसे सभी चिकित्सकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का यह दिन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है श्रोताओं। डॉक्टर बीसी राय का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी मेहनत, अनुशासन, सेवा भावना और राष्ट्र के प्रति समर्पण हमें यह संदेश देते हैं कि यदि व्यक्ति दृढ़ संकल्प और निस्वार्थ भावना के साथ कार्य करे तो वह समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। आज आवश्यकता है हम उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं। सेवा, करुणा, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा जैसे मूल्यों को आत्मसात करें तथा समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को सहायता के लिए सदैव तत्पर रहें। डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती हमें राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर हम उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं तथा देश विदेश में मानवता के सेवा में जुटे सभी चिकित्सकों को हार्दिक सम्मान और शुभकामनाएं देते हैं।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: और इस संदेश के बाद श्रोताओं कार्यक्रम में फिर से आप सबों का स्वागत है। और अब हम आज के विविधा कार्यक्रम में बात करेंगे पुरुषोत्तम दास टंडन की पुण्यतिथि पर। श्रोताओं, हमारे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में ऐसे महान व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने अपने त्याग, समर्पण और राष्ट्रभक्ति से देश को एक नई दिशा प्रदान की है। ऐसे ही महान राष्ट्रनायकों में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। वे एक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि हिंदी भाषा के प्रबल समर्थक, समाज सुधारक, कुशल राजनेता और भारतीय संस्कृति के सजग प्रहरी भी थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा, जन कल्याण और भारतीय भाषाओं के विकास के लिए समर्पित कर दिया। पुरुषोत्तम दास टंडन का जीवन त्याग, सादगी, ईमानदारी और राष्ट्रीय चेतना का अनुपम उदाहरण है। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका, किसानों और मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्ष तथा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने के लिए उनके प्रयास आज भी प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी पुण्यतिथि 1 जुलाई यानी आज मनाई जाती है और उनके योगदान को याद किया जाता है। श्रोताओं, उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और स्वतंत्रता की लड़ाई को मजबूत करने का प्रयास किया। देश के प्रति उनके अमूल्य योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें 1961 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया। यह सम्मान न केवल उनके व्यक्तिगत योगदान की मान्यता थी बल्कि उन आदर्शों का सम्मान भी था जिसके लिए उन्होंने अपने पूरा जीवन समर्पित कर दिया। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन भारतीय इतिहास के उन महान व्यक्तित्वों में से एक हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम, हिंदी भाषा के विकास और राष्ट्र निर्माण में अमूल्य योगदान दिया। उनका जीवन त्याग, सेवा, सादगी और राष्ट्रभक्ति का अनुपम उदाहरण है। उनकी पुण्यतिथि हमें उनके आदर्शों को आत्मसात करने, राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने और समाज के कल्याण के लिए कार्य करने की प्रेरणा देती है। भारतवर्ष सदैव इस महान सपूत का ऋणी रहेगा और आने वाली पीढ़ियां उनके योगदान को सम्मानपूर्वक याद करती रहेंगी। तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का विविधा कार्यक्रम समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं और अब श्रोताओं प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसरंजन। तो श्रोताओं, आज के रसरंजन कार्यक्रम में हम लाए हैं बहुत सारे मनोरंजक गीत, तो सुनते हैं ये गीत।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म चाहत का ये गीत, कुमार शानू और साधना सरगम की आवाज़ों में। गीत लिखा था निदा फाजली ने, संगीत दिया था अनु मलिक ने। आप सुन रहे हैं हमारे आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से कार्यक्रम रस रंजन, और अब सुनते हैं ये संदेश।
1: मिस सीमा
2: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1 लाख दो, बच जाओगे।
2: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा,
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
7: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
6: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
7: अब घर, दफ्तर या

0: दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 870001424।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें 870001424।
2: इन संदेशों के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं ये फिल्मी गीत और आप सुनवा रहे हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर का गाया फिल्म कभी अजनबी थे का ये गीत।

उदित नारायण अलका याग्निक और साथियों के स्वर में गाए फिल्म आपको भी पहले कहीं देखा है कि इस गीत के साथ ही श्रोताओं आज का रसरंजन का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चायबसा केंद्र से बोल रहे हैं और अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसके प्रायोजक है NCERT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। नए महीने जुलाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका कार्यक्रम उमंग में। आइए शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ, जिसे हमें भेजा है आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है।
0: धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से। जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास और धनवंतीन बाई जी का। लिखते हैं, जय जोहार बंदगी विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। आगे लिखते हैं,
2: उमंग टीम को बधाई जी। उमंग कार्यक्रम में 3 जून 2026 को पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के पर्यावरण के प्रति लगाव वाली कहानी ने दिल छू लिया। हमें बहुत प्रेरणा और सीख मिली। आपने बहुत प्रेरणादायक और रियल स्टोरी सुनाई। धन्यवाद साहेब।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से। अजय देवता मुरिया, तुषार देवता मुरिया, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नीलिमा अजीम।
0: और पुणे से सुयोग बटवे।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
0: स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं विभिन्न खनिज पदार्थों की, और इस क्रम में हमने कल चर्चा की थी कोयले की, जिसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो अजीत जी, आज की चर्चा का विषय तो बताइए, किस खनिज की हम चर्चा करने जा रहे हैं? श्रोताओं की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है।
0: उत्सुकता तो बढ़ेगी ही, क्योंकि हमारा कार्यक्रम होता ही है मजेदार और जानकारियों से भरपूर। पता है, कुछ श्रोता तो रेडियो सुनते समय कागज कलम लेकर बैठते हैं और कुछ तो पूरा कार्यक्रम भी रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि कोई जानकारी न छूट जाए।
2: हम सभी सुधीर श्रोताओं को धन्यवाद देते हैं। तो क्या रहेगा आज हमारी चर्चा का विषय?
0: चलिए मैं कुछ हिंट देता हूँ। श्रोताओं जरा अंदाजा लगाइए, हिंट है, ये बहुत ही लोकप्रिय धातु है
2: जी,
0: मूल्यवान भी है। रंग इसका सुनहरा पीला है, सभी इसे बहुत चाहते हैं।
2: अजीत जी, वैसे तो और भी कई धातुएं मूल्यवान हैं, लेकिन यदि हिंट है कि ये पीले रंग का है और बहुत लोकप्रिय है तो बात स्पष्ट हो गई है। कहीं आप गोल्ड या सोने की बात तो नहीं कर रहे हैं?
0: बिल्कुल सही है उत्तर आपका। जी हाँ, मैं सोने या गोल्ड की बात कर रहा हूँ। वैसे इसमें कुछ धातुएं मिला दी जाएं तो इसका रंग बदल भी सकता है। सोना पृथ्वी के बहुमूल्य खनिजों में से एक गिना जाता है
2: जी।
0: तो विमलेश जी, अब जानते हैं कि सोना बनता कैसे है?
2: अजीत जी, बेशक ये पृथ्वी के मूल्यवान खनिजों में से एक है, लेकिन एक बेहद रोचक और आश्चर्यजनक बात बता दूं कि कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं।
0: कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं, ये क्या बात हुई?
2: यही तो खास बात है अजीत जी। सोने की उत्पत्ति की कहानी धरती से नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में तारों की भीषण टक्कर और विस्फोट से हुई है। सोने की उत्पत्ति अरबों साल पहले सुपरनोवा यानी विशाल तारे के फटने और न्यूट्रॉन तारों की टक्कर से हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष से विशाल तारों और उल्कापिंडों की टक्कर के कारण उत्पन्न धूल से सोना पृथ्वी पर पहुंचा है।
0: तो ये बात है, शायद इसीलिए सोने और चांदी को स्टार डस्ट भी कहते हैं
2: जी।
0: जब ब्रह्मांड में कोई विशाल तारा या सुपरनोवा अपना जीवन चक्र पूरा करता है ना, तो भयंकर विस्फोट के साथ फट जाता है, और इस प्रक्रिया में अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव पैदा होता है।
2: जब कोई तारा फटता है और दबाव और गर्मी इतनी अधिक हो जाती है कि हल्के तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर भारी परमाणु बनाने लगते हैं, इसमें एक नया तत्व बनता है जिसे हम सोना कहते हैं।
0: लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है। अब वो ये है कि यदि सोना अंतरिक्ष में पैदा हुआ या उत्पन्न हुआ तो वो पृथ्वी तक पहुंचा कैसे?
2: ये जानना भी बहुत रोचक है। सोना पृथ्वी पर अंतरिक्ष से मुख्य रूप से तारों के टूटने और उल्कापिंडों की भारी बौछार मीट्रोइड बॉम्बार्डमेंट के जरिए पहुँचा है।
0: इसी बात को चलिए थोड़ा विस्तार और देते। लगभग 4 अरब साल पहले अंतरिक्ष से सोने और अन्य कीमती धातुओं से भरे लाखों विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए। इस भीषण बौछार के कारण उल्कापिंडों में मौजूद सोना पृथ्वी की ऊपरी परत में बिखर गया। आज हम जो भी सोना खदानों से निकालते हैं वह इसी अंतरिक्षीय बारिश की देन है।
2: जी, सोना पृथ्वी की ऊपरी परत पर बिखर गया, लेकिन धीरे धीरे उस पर भी मिट्टी और चट्टानों की परतें जमने लगी और सोना पृथ्वी की गहराइयों में चला गया। उसी सोने को अब हम खदानों से खोद कर निकालते हैं। अब सोने को ठोस रूप देने के लिए उसमें कई धातुएं भी मिलाई जाती हैं।
0: जी, सच्चाई ये है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सोना मानव सभ्यता के प्रारंभ होने से भी अरबों वर्ष पहले बन चुका था।
2: अजीत जी, सचमुच बड़ी अद्भुत कहानी है ना सोने की। एक और रोचक बात

0: ₹100 का सोना बनाने में लाखों रुपए लग सकते हैं।
1: एक बात और, शुद्ध सोना बहुत नरम होता है, इसीलिए उसे आकार देने के लिए उसमें तांबा, चांदी, जस्ता और निकेल जैसी धातुएं भी मिलाई जाती हैं। लेकिन एक बात तो है,
0: और वो ये है श्रोताओं कि जब आप सोना या स्वर्ण आभूषण देखते हैं तो याद रखिए, ये मूल रूप से पृथ्वी की वस्तु नहीं लेकिन अरबों वर्ष पहले हुई ब्रह्मांडीय घटनाओं का परिणाम है, इसीलिए ये बहुत कीमती मानी जाती है। दूसरे शब्दों में,
1: आपके हाथ के सोने की अंगूठी कभी किसी तारे के फटने या किसी महाविस्फोट का हिस्सा रही होगी।
0: जी, तो श्रोताओं ये थी जानकारी अंतरिक्ष की मूल्यवान वस्तु सोने की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है, सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं?
0: आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल पर भी। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो करना ना भूलिए। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की,
0: तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, अरावली की कहानी।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला की रोचक जानकारी दी गई है और बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण में इस पर्वतमाला की क्या भूमिका है।
0: अरावली की कहानी।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी, यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहाँ शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत, डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर है क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
4: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
3: यस मैम।
4: वाह, क्या बात है
5: मैम।
4: हाँ बेटी,
5: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
4: बिल्कुल कहा।
5: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
4: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
5: जी, पहाड़ी।
2: अरे वाह, अच्छा, लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
4: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
3: यस मैम।
4: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
3: अच्छा।
4: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
3: अच्छा।
4: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
3: अच्छा, मैंने भी देखा है।
2: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
6: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
4: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। अब जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर।

0: और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
1: लंबाई 800 किलोमीटर। ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
0: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
2: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
3: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
0: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
4: जी मैम,
5: हमेशा याद रखेंगे।
3: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है? क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
0: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
1: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
0: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
4: सॉइल इरोजन,
0: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। सेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही हैं।
3: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
0: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
4: जी मैम।
5: यस मैम।
0: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
5: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
0: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
1: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
0: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
3: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
3: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
3: ओह,
0: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
4: जी मैम।
3: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
4: बहुत अच्छी लगी।
3: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
4: धन्यवाद सर।
5: धन्यवाद मैम।
6: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति

0: उत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
1: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है बांगुई।
2: ये कार्यक्रम अफ्रीका की एक लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा संदेश दिया गया है कि पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम एक सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: अफ्रीका महाद्वीप का नाम तो आपने सुना होगा। उसके पश्चिमी हिस्से में एक छोटा सा देश है घाना। विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा के निकट होने के बावजूद घाना में सूखे की नहीं बाढ़ की समस्या प्रबल रहती है। कई छोटी बड़ी नदियां इस देश से होकर बहती हैं और इसे हरा भरा बनाए रखती हैं, लेकिन अक्सर इन नदियों में बाढ़ आ जाती है और गांव के गांव डूब जाते हैं। आज सुनते हैं व्हाइट वोल्टा नदी के किनारे बसे एक ऐसे ही गांव के आदिवासियों की कहानी।
1: नमस्कार भाई। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अभी तो खेत में काम करने का समय नहीं हुआ।
2: अरे आज खेतों में नहीं, जंगल में काम करने जा रहा हूँ। ये देखो कुल्हाड़ी।
1: अरे ये क्या, हल वाले हाथ में कुल्हाड़ी लकड़ी काटने जा रहे हो? क्या नया घर बना रहे हो?
2: हाँ भैया, नया घर तो बन रहा है, लेकिन मेरा नहीं, अपने मुखिया बांगुई है ना, वही अपना नया घर बनवा रहे हैं।
1: मुखिया बांगुई का नया घर? लेकिन अभी कुछ ही बरस पहले तो उन्होंने नया घर बनवाया था।
2: तो क्या हुआ, उन्हें अपना वो नया घर अब पुराना और छोटा लगने लगा है। दरअसल जंगल की लकड़ी बेच बेच कर रईस हो गए है ना, सो अपनी रईसी की शान दिखाने के लिए फिर नया मकान बनवा रहे हैं।
1: अच्छा तो ये बात है, मुखिया बांगुई ने ही पैसे के लालच में शहर के लोगों को जंगल से लकड़ी काटने की अनुमति दी है। तभी मैं कहूँ कि जंगल से आजकल दिन रात लकड़ी काटने की आवाज क्यों आती है, इस तरह तो जंगल के सारे पेड़ कट जाएंगे।
2: अरे और नहीं तो क्या, जंगल से जिस तरह से ये शहरी लोग दिन रात लकड़ी काट रहे हैं ना, देखना थोड़े दिनों में सारा जंगल साफ हो जाएगा। अरे जंगली जानवर गांव पर हमला करेंगे, नदी की धारा जंगल की रुकावट ना पाकर गांव की तरफ बढ़ने लगेगी।
1: और ये सब जानकर भी तुम कुल्हाड़ी लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ भैया और क्या करूं, मेरे पास खेत तो है नहीं, मुखिया बानगुई के खेतों में काम करता था, लेकिन उन्हें अब खेती बाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं, उन्हें जंगल की कटाई से काफी पैसे मिल जाते हैं ना। बाल बच्चों का पेट पालने के लिए मैंने भी लकड़ी काटना शुरू कर दिया है भैया, फिर शहर के लोग लकड़ी काटने की मजदूरी भी अच्छी देते हैं।
1: पर तुम तो मुखिया के मकान के लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ, मुखिया का ये नया मकान शहरी लोग ही बनवा रहे हैं ना, मुखिया ने उन्हें जंगल से लकड़ी काटने की आज्ञा दी है, इसलिए वो लोग उन्हें ऊंची वाली चट्टान पर एक बहुत बड़ा तिमंजिला मकान बना कर दे रहे हैं।
1: तिमंजिला मकान? वो तो बहुत ऊंचा होगा।
2: हाँ, हमारे तीन मकान एक के ऊपर एक रख दिए जाए, इतना ऊंचा होगा।
1: लेकिन ये मकान नदी के इतने नजदीक क्यों बनवा रहे हैं, अगर नदी में बाढ़ आ गई तो?
2: अरे भैया बाढ़ आती है तो तबाही हमारे कच्चे झोंपड़ों की होती है ना, ऊंची चट्टान पर बने तिमंजिले मकान पर बाढ़ का क्या असर होगा भला, फिर हमें से क्या भैया, हमें तो अपनी मजूरी से मतलब है। अच्छा चलता हूँ, बड़ी देर हो गई।
1: अच्छा भाई मैं भी चलता हूँ।
2: कहाँ बड़े चले आ रहे हो? अरे जानते नहीं ये मुखिया बानगुई का मकान है?
3: जानते हैं भाई जानते हैं, तभी तो अपनी फरियाद लेकर यहाँ आए हैं।
2: मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से।
3: अरे ये
2: इस समय कोई फरियाद वरियाद नहीं सुनी जाएगी, अभी मुखिया जी बांसुरी बजा रहे हैं और जब वो बांसुरी बजा रहे हो तब उन्हें तंग करने का हुक्म नहीं है।
3: लेकिन अगर मुखिया जी हमारी फरियाद नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे भैया?
2: अच्छा भाई बोलो क्या बात है, बोलो।
3: मैं बोलूं? अच्छा देखो भैया तुम भी तो हम ही में से एक हो, गांव की हालत तुमसे छुपी नहीं है, मुखिया जी के सारे खेत खाली पड़े हैं, उनमें काम करने वाले मजदूर बेकार हो गए हैं, जिनके पास थोड़ी बहुत अपनी जमीन थी जहां खेती करके थोड़ा अनाज हो जाता था, उन सारे खेतों में बाढ़ का पानी भर गया है भैया, बारिश के मौसम में लकड़ी की कटाई का काम भी बंद हो गया है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं भैया, इसीलिए हम मुखिया जी के पास आए हैं।
4: अरे तो इसमें मुखिया जी क्या कर सकते हैं?
5: सुना है मुखिया जी के मकान के एक पूरे खंड में अनाज भरा है। अगर इस संकट के समय हम गरीबों को भी एक एक मुट्ठी अनाज मिल जाता तो।
4: अच्छा, और मुखिया जी क्या फाके करें? मैं कहता हूँ भाग जाओ, भाग जाओ यहाँ से। बढ़िया है अनाज मांगने।
0: एक बार की बात है, उस इलाके में मूसलाधार वर्षा हुई और लगभग 4 दिनों तक चलती रही।
6: मुखिया जी, मुखिया जी!
7: बदतमीज, ऐसे क्या चिल्ला रहे हो?
6: माफ कीजिएगा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि।
7: ओ, आप कुछ बोलो भी, क्या हुआ है?
6: गांव में चारों तरफ पानी भर गया है।
7: तो भरने दो।
6: गांव के सभी लोग, औरतें, बच्चे और मर्द गांव छोड़कर जा रहे हैं।
7: अरे तो जाने दो।
6: लेकिन मुखिया जी, इस मकान के चारों तरफ भी पानी पानी है, अगर हम निकल कर जाना भी चाहें तो भी नहीं जा सकते।
7: अरे बेवकूफ, हम यहाँ से जाएंगे ही क्यों? इस ऊंची चट्टान पर बने 3 मंजिले मकान में पानी आएगा कैसे? हमारे पास यहाँ क्या कमी है? अरे खाना है, पानी है, और ये हमारी बांसुरी भी है।
6: लेकिन मुखिया जी,
7: वो तुमसे कितनी बार कहा है कि जब हम बांसुरी बजा रहे हो तो हमें परेशान मत किया करो।
6: जी मगर
7: जाओ, चले जाओ यहाँ से।
8: मुखिया जी,
7: अब क्या है?
8: नीचे वाली मंजिल में बहुत पानी आ गया है।
7: तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, सब चीजें दूसरी मंजिल पर ले जाओ, और हम 3री मंजिल पर जा रहे हैं।
5: मुखिया जी,
7: चैन नहीं लेने देंगे। अब क्या है
5: जी? वो दूसरी मंजिल पर भी पानी
7: चढ़ रहा है। अरे तो 3री मंजिल किस लिए है? देखो, सब सामान ऊपर ले जाओ, हम छत पर जा रहे हैं।
5: माफ कीजिएगा मुखिया जी, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। बूढ़ा कालू कह रहा है कि ये साधारण बाढ़ नहीं है, बल्कि नदी ने अपनी धारा बदल दी है। अब नदी इसी जगह से बहेगी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। हम लोगों ने लकड़ी के तख्ते जोड़ जोड़ कर एक नाव तैयार की है, हम तो जा रहे हैं, आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं।
7: नालायक, डरपोक, अरे भाग रहे हो? इस महल को छोड़कर भाग रहे हो? जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ तुम लोग, मैं यहीं रहूंगा।
5: जैसी आपकी मर्जी।
7: अरे ये तो सचमुच चला गया। कहीं वो बूढ़ा कालू ठीक ही तो नहीं कह रहा? क्या नदी ने सचमुच अपनी धारा बदल दी है? छत से देखता हूं मैं। ये कैसा भयानक दृश्य है! दूर दूर तक जहां नजर जाती है पानी ही पानी, कहीं कोई नहीं, ना कोई आदमी, ना जानवर, ना खेत, ना जंगल। अगर मेरे इस मकान की 3री मंजिल में पानी में डूब गई तो ये क्या? अरे ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं, ये इतना मजबूत मकान भी गिर रहा है। हे भगवान, मैं क्या करूं? अरे कहाँ जाऊं मैं? ये पानी में डूब रहा हूं मैं। अरे मैं अपनी जान कैसे बचाऊं? अरे कोई है? अरे बचाओ मुझे! अरे मैं डूब रहा हूँ मैं। नहीं, ये क्या? ये लगता है कोई पेड़ अब भी अपनी मजबूत जड़ें धरती पर धंसाए बैठा है। अगर किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं तो मेरी जान बच सकती है। हाँ, मैं उसे पकड़ूंगा किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं। लेकिन ये पानी तो मुझे दूसरी तरफ बाहर ले जा रहा है। आखिर पहुंच गया। यहाँ तो
9: यहाँ तो इस तरह के कितने ही पेड़ थे जो जो मैंने कटवा दिए, लेकिन ना जाने यही एक इकलौता पेड़ मुझे शरण देने के लिए कैसे बच गया। शायद शायद मेरी मेरी आंखें खोलने के लिए, हाँ शायद मेरी आंखें खोलने के लिए

0: बांगुई, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसके प्रायोजक थे NCERT। आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:30 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.5। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 10:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम जोहार रांची।

0: जोहार रांची सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को मीता बोले तो आपकी मीत का प्यार भरा नमस्कार जोहार।
1: और विनोद का भी नमस्कार जोहार।
0: आपको भी हमारा नमस्कार विनोद जी।
1: नमस्कार आपको भी।
0: और हम इतने प्यारे से प्रोग्राम को शुरू कर रहे हैं, तो उससे पहले एक प्यारा सा गीत अगर हम सुन लें तो कैसा रहेगा?
1: बिल्कुल।

0: और विनोद जी कहिए, क्या हाल है? गर्मी और बारिश का एक साथ आनंद उठा रहे हैं ना?
1: बिल्कुल, और आनंद के साथ साथ रोमांच की बात हम लोग करें कि कब
0: बिल्कुल
1: कब मतलब कि धूप खिली रहेगी और कब बारिश हो जाएगी, अंदाजा
0: कुछ कहा नहीं जा
1: लगाना
0: सकता।
1: मुश्किल है।
0: वैसे विनोद जी, लगता है अब गर्मी से कुछ राहत मिलने वाली, क्योंकि आज सरायकेला, खरसावां और पूर्वी सिंहभूम को छोड़कर राज्य के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है।
1: बिल्कुल, बारिश और तेज हवा के कारण 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है, जिससे थोड़ी तो राहत मिली है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, 30 जून से यानी कल से 2 जुलाई तक मानसून पूरे झारखंड में सक्रिय रहेगा। अधिकांश जिलों में तेज बारिश, वज्रपात और लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है, जिसकी वजह से गर्मी से राहत तो होगी ही, लेकिन लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी है ना?
1: बिल्कुल, और अगर हम बात करें तो अरब सागर के कुछ हिस्सों और गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार में मानसून सक्रिय रहेगा। इसके प्रभाव से झारखंड में अच्छी बारिश की संभावना है। जुलाई में बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी के कारण बारिश का सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है।
0: लेकिन विनोद जी, लगातार और भारी बारिश से खेतों में तैयार हो रहे धान के बीजों को नुकसान पहुंच सकता है और मक्का, अरहर और दूसरे जो खरीफ फसलों के खेतों में जल जमाव से बीज सड़ सकते हैं। इसलिए हमारे जो किसान हैं वो सावधान रहें, अपने खेतों पर ध्यान दें, पानी जमा ना होने दें।
1: बिल्कुल, निकासी का जो भी है उत्तम प्रबंध करें, और मौसम की बातों में अगर गीत भी शामिल कर लिया जाए तो कैसा रहेगा?
0: बहुत अच्छा रहेगा।

0: बेहद प्यारा सा ये गीत था विनोद जी, और हम समझते हैं कि हमारे श्रोता जो इसमें सुन रहे होंगे, बारिश तो अभी थमी हुई है लेकिन गीतों के माध्यम से वो जरूर बारिश का लुत्फ ले रहे होंगे।
1: और बिल्कुल उन्हें अपनी पुरानी भी बहुत सारी बातें याद आ रही होंगी इस गीत के माध्यम से।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और जो उस जमाने के हमारे श्रोता होंगे वो तो खासा इंजॉय कर रहे होंगे इस गीत को।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि अपने वक्त की बातें ही कुछ और होती है। नहीं वैसे विनोद जी, बड़े लोगों की बातें भी बड़ी होती हैं और उनसे जीवन का रहस्य सीखा समझा जा सकता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, महान लोगों का अनुभव हमारे लिए अच्छा पथ प्रदर्शक वाला होता है।
0: जी हाँ, 20वीं सदी के महान स्पेनिश चित्रकार, मूर्तिकार, कलाकार, क्यूबिक कला शैली के सहजनक पाब्लो पिकासो ने कहा है, आप जो भी कल्पना कर सकते हैं वह आप कर सकते हैं, यानी वो आपके लिए संभव है।
1: बिल्कुल, हर असंभव कार्य का बस तरीका एक ही है, कड़ी मेहनत, तो हर कार्य फिर संभव हो जाएगा।
0: ऑस्कर वाइल्ड ने कहा है, अनुभव सबसे कठिन शिक्षक होता है, वह पहले परीक्षा लेता है उसके बाद सीख देता है।
1: बिल्कुल, जिंदगी के अनुभव ही गलत और सही की अगर हम बात करें तो हमारी कमियों को बताते हैं जिनसे सीखकर सफलता हासिल की जा सकती है। अमेरिकी लेखक पेंटिस मूलफोल्ड का कहना है कि कल की चिंता आज की ऊर्जा का दुश्मन है, वर्तमान में जिए शांति खुद कदम चूमेगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से लोग होते हैं विनोद जी कि अतीत की यादों में खोए रहते हैं, अगर कुछ बुरा घटित हुआ तो और उसके लिए सोच सोच के रोते रहते हैं, और अगर कुछ बहुत अच्छा बीता हुआ हो तो फिर अफसोस करते रहते हैं, आह वो भी क्या दिन थे, हम तो ऐसे थे, हम तो वैसे थे, हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन वो गुजर चुका होता है।
1: बिल्कुल, और उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि जिंदगी जो है वो सतत चलने का नाम है।
0: बिल्कुल,
1: रुकने से सभी कुछ जिंदगी ठहर नहीं जाती है, और खुद को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, खुद को ऊर्जान्वित रखें, यही जीने का फलसफा है।
0: और क्या, आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और फिर उस पर आगे बढ़ते चले जाएं, चाहे जितना भी हो कठिन रास्ता, आप उसको कर सकते हैं। वैसे विनोद जी, किसी भी काम में पूर्णता संभव तो नहीं है, लेकिन आप अगर कोशिश करेंगे तो सफल भी होंगे और उत्कृष्टता को हासिल कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, एक कदम आगे बढ़ाएं, आगे आपको कहीं ऐसे भी मोड़ दिख सकते हैं जहां से कि आपको कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन जब आप मोड़ पर पहुंचेंगे तो फिर आगे आपको राह दिखता चला जाएगा और फिर जिंदगी जो है आसान होती चली जाएगी।

0: छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। हम भी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं विनोद जी। और जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में बात की थी कि मौसम जो है वो बदल चुका है, मानसून आ चुका है, और बारिश के इस मौसम में सबसे खास ख्याल हमें सेहत का रखना होता है। जरा सी लापरवाही और स्वास्थ्य खराब, फिर पड़ जाते हैं लेने के देने।
1: बिल्कुल, सेहत के लिए बारिश में अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो हमारी बीमार पड़ने की संभावना काफी कम हो जाएगी,
0: क्योंकि बीमार पड़ना यानी आपका सब कुछ प्रभावित हो जाता है। और आप अगर, जैसा कि विनोद जी ने कहा दोस्तों, अगर छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। जैसे कि आप घर से बाहर जब निकलें तो छाता तो आपके साथ होना ही चाहिए, रेनकोट होना ही चाहिए, पानी से बचने की हर सुविधा अपने साथ रख करके चलें। लेकिन अगर आप भीग जाए तो तुरंत ही घर पहुंचते के साथ अपने आप को साफ करें, पोछें, और अपने जूते मोजे तो तुरंत ही उठाएं, क्योंकि जो जूतों में फंगस होने की संभावना होती है अगर भीगे रहे। और जूते सुखाने का एक उपाय भी है, उसमें पेपर डाल दीजिए, है ना, सूखे पेपर अगर डालेंगे, आपको कम पता होगा, आपके घर में यह सब मिल जाता होगा व्यवस्था किया हुआ, लेकिन हम गृहिणियों को पता होता है कि उसके अंदर अगर आप पेपर के टुकड़े डाल दें तो वो नमी को खींच लेते हैं और वो दूसरे दिन के लिए आपके लिए तैयार हो जाते हैं। और जो हमारे बच्चे होते हैं विनोद जी, तो उन्हें रास्ता चलते हुए ये थोड़ा ध्यान रखना होगा कि रास्ते में जो गड्ढे वड्ढे आते हैं तो उसमें छपक छपक करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इन्फेक्शन होने का डर होता है। और जो हमारे दोस्त बाइक चलाने वाले, साइकिल रिक्शा चलाने वाले हमारे भाई जो हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि गड्ढों से बच के थोड़ा संभल के चलें, क्योंकि दुर्घटनाओं की संभावना होती है, गड्ढे पानी से भरे होते हैं ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और अगर देखा जाए तो जो शहरी क्षेत्र में जो नालियां होते हैं

0: कई जगहों पे वो ढके हुए नहीं होते हैं, और बीच में अपनी शहर की ही बात करें, रांची की ही बात करें, तो कई जगह आपको मतलब कि मुख्य सड़क के बीच में भी मेन होल मिल जाएगा, और कई उसमें जो रहते हैं कि उसके उसका ढक्कन नहीं रहता है या फिर ढक्कन धस जाया करता है, तो ऐसी स्थिति में बहुत विकट स्थिति हो जाती है, खतरा बना रहता है।
1: हाँ, तो थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता, थोड़ा एक्स्ट्रा अलर्ट तो बरसात के दिनों में होना ही पड़ता है। और जो आप नहाने के बाद या ऐसे बाहर से आने के बाद जो भीगे तौलिए है उसको इधर उधर ना फेंकें, क्योंकि इन दिनों सूर्य देव के दर्शन थोड़े कम होते हैं विनोद जी, तो फंगस होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, खुजली और रैशेज भी पड़ सकते हैं अगर गीले गीले आप रहे तो। इन सब के लिए आपको आपको सुखाना भी जरूरी है, आपके घर को भी सूखा रहना चाहिए, और इस मौसम में बाहर के खाने को तो अवॉइड करना ही चाहिए।
0: बिल्कुल। और
1: हमारी बहनें जो है वो बहुत चाट फुचका की शौकीन होती हैं, उन्हें थोड़ा सा कंट्रोल में रहना पड़ेगा।
0: और आप देख भी रही हूँ कि समाचार पत्रों में भी बहुत सारी से खबरें आ रही हैं कि फूड पॉइजनिंग के कारण बहुत परेशानियां बढ़ जा रही हैं, तो खासकर मतलब कि जो भी बरसात के समय में जो भी खाना हो, मतलब कि खाना ताजा रहे, ऐसा नहीं कि मतलब कि फ्रिज में रख दिया और सुबह सुबह खा रहे हैं, दोपहर में खा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम बरसात में तो इससे बचाव जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है। और रास्ता चलते हम अपने बच्चों को जरूर समझाएं कि वो बिजली के खंभों से दूर रहें, ट्रांसफार्मर ये सब से दूर रहें, और खुद भी गीले हों और तो गीली दीवारों को ना छुएं या गीले रहने पर बिजली के उपकरणों को ना छुएं, है ना।
0: बिल्कुल।
1: उन सब का तो खास ध्यान रखना चाहिए, और बारिश में पेड़ के नीचे भी नहीं खड़े होना चाहिए।
0: खासकर ये हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो भाई हैं, हमारे जो किसान बंधु हैं, उन्हें सर विशेष मतलब कि ध्यान केंद्रित करके रखना चाहिए। और खासकर आज की बात करें तो पहले वाली बात आज रही नहीं, हम तकनीकी युग में जी रहे हैं, और जो हमारा मौसम विज्ञान विभाग है वो हर मतलब अगर आप देखेंगे तो वो आधे आधे घंटे पे हमें अलर्ट करता है,
1: बिल्कुल,
0: है ना,
1: बिल्कुल,
0: कि
1: बिल्कुल।
0: दो घंटे के बाद बारिश होनी है, संबंधित क्षेत्र में बारिश होनी है, कहाँ वज्रपात होना है, तो ऐसे इसमें बचने की पूरी कोशिश हम सभी को करनी चाहिए।
1: बिल्कुल। और बारिश के इस मौसम में अब बारिश का तो लुत्फ उठाएं हमारे दोस्तों, क्योंकि ये मौसम बहुत सुंदर होता है, और आप गर्मी से इस समय परेशान भी हैं तो जाहिर सी बात है जब बारिश की बूंदें गिरेंगी तो भीगने का मन तो करेगा, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, हम आपके मनोरंजन का ख्याल रखते हैं।
0: बिल्कुल।

0: और विनोद जी, अब हम इतिहास के कुछ पन्नों को पलटते हैं, क्या ख्याल
1: बिल्कुल
0: है?
1: बिल्कुल
0: तो चलिए साझा करते हैं अपने श्रोताओं से वो बातें जो आज की तारीख में घटित हुई। आज यानी 1 जुलाई को भारतीय इतिहास में सबसे बड़े आर्थिक सुधार के रूप में 2017 में वस्तु एवं सेवा कर यानी GST लागू किया गया था। इसे संपूर्ण भारत में एकीकृत कर प्रणाली स्थापित करने के लिए देश दुनिया के प्रमुख इतिहास में याद किया जाता है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी।
1: और अगर आज की बात करें तो देश में प्रतिवर्ष 1 जुलाई को CA दिवस मनाया जाता है और त्रावणकोर कोचीन राज्य का विलय भी 1 जुलाई 1949 को हुआ था।
0: विश्व की घटनाओं पर अगर हम बात करें तो 1 जुलाई 1867 को कनाडा को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता मिली थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1916 में इसी दिन फ्रांस में ये ऐतिहासिक लड़ाई शुरू हुई थी, जिसमें पहले ही दिन ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान झेलना पड़ा था।
1: और अगर 1863 की बात करें तो आज के ही दिन अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में गेटिसबर्ग की प्रसिद्ध और खूनी लड़ाई शुरू हुई थी। अगर हम बात करें 1908 की तो आज के ही दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर SOS जो कि संकटकालीन संदेश है, संकेत को आधिकारिक रूप से अपनाया गया था।
0: आज भारत के 8वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का जन्मदिन है। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म भी आज ही के दिन यानी 1 जुलाई 1938 में हुआ था। वेल्स की राजकुमारी डायना, जो ब्रिटेन की राजकुमारी डायना थी, उनका जन्म भी आज ही के दिन 1961 में हुआ था। 1 जुलाई 1847 को संयुक्त राज्य अमेरिका के डाकघर ने अपना पहला आम डाक टिकट जारी किया था, और ये डाक टिकट जॉर्ज वाशिंगटन के सम्मान में 10 सेंट का डाक टिकट जारी किया गया था। पहले अमेरिकी डाक कार्ड 1873 में, पहले स्मारक डाक टिकट 1893 में और पहले हवाई डाक टिकट 1918 में जारी किए गए थे। 1 जुलाई 1858 में भारत का शासन आधिकारिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया।
1: और आज के ही दिन 1862 में भारत में पहली बार उच्च न्यायालयों जिसमें कलकत्ता, बम्बई और मद्रास शामिल है, की स्थापना की प्रक्रिया शुरू हुई थी। 1879 में आज के ही दिन भारत में पोस्ट कार्ड सेवा की भी शुरुआत हुई थी।
0: प्रसिद्ध क्रिकेटर कपिल देव का जन्म भी आज ही के दिन हुआ, 1 जुलाई को 1962 में। 1968 में भारत सरकार ने भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना की। 1991 में 1 जुलाई में भारत में नई आर्थिक नीतियों के तहत रुपये का पहला अवमूल्यन किया गया, और 1857 में हांगकांग आधिकारिक रूप से ब्रिटेन से चीन को सौंपा गया। 2002 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने आधिकारिक रूप से कार्य करना शुरू किया, और 1 जुलाई 2013 को क्रोएशिया यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य बना।
1: और आज एक और महत्वपूर्ण दिवस है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की हम बात कर रहे हैं।
0: जी हाँ,
1: तो आज का दिन जो है, सबसे पहले हम सभी जितने भी डॉक्टर्स हैं उन्हें
0: उनका धन्यवाद
1: शुभकामनाएं
0: दे।
1: देते हैं और धन्यवाद भी देते हैं, क्योंकि भाई अगर वो हैं जो कहा जाता है कि धरती के आप भगवान हो, तो निश्चित
0: बिल्कुल
1: तौर पे जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो हमारे लिए सहायक होते हैं।
0: वही सहायक होते
1: तो
0: हैं। जब कहीं कोई आसरा नहीं दिखता, फिर हम
1: बिल्कुल
0: डॉक्टर की ही शरण में जाते हैं। ये ऐसा कह सकते हैं कि शरणागत हो जाते हैं हम उनके।
1: बिल्कुल बिल्कुल और अगर कहा जाए तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस केवल चिकित्सकों को सम्मान देने का अवसर नहीं, बल्कि चिकित्सा पेशे के मूल उद्देश्य सेवा, समर्पण और मानवता को याद करने का भी दिन है। चिकित्सकों ने अनगिनत अवसरों पर अपनी दक्षता, संवेदनशीलता से असंख्य लोगों को नया जीवन दिया है, इसलिए समाज में उनका स्थान अत्यंत सम्माननीय है। लेकिन यह भी कटु सत्य है कि चिकित्सा क्षेत्र के बढ़ते व्यावसायीकरण ने इस पवित्र पेशे की छवि को धूमिल भी किया है।
0: विनोद जी, हम सबसे महत्वपूर्ण बात हम अपने श्रोताओं को बताएं कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है जो डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि के सम्मान में मनाया जाता है।
1: और चिकित्सक को धरती का भगवान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके निर्णय पर किसी की जिंदगी टिकी होती है। ऐसे में चिकित्सा को केवल जो हम आज जो व्यवसायीकरण की अभी बात कर रहे थे तो सिर्फ उसका मकसद न रहे, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ ही इस क्षेत्र में जो भी संकल्प के साथ और सेवा भावना के साथ काम करते हैं लोगों की, जो यहाँ जो पूरी आबादी है उनसे यही उम्मीद करती है कि भाई सेवा के साथ जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो कभी कभी होता है कि बहुत ज्यादा जब भीड़ होती है तो डॉक्टर सही ढंग से आपको देख नहीं पाते हैं, आपको सही ढंग से परामर्श नहीं कर पाते हैं। और कभी कभी आप ये भी देखती होंगी कि कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं कि जो आप वहाँ गई आपके बारे में वो इतना मतलब कि पॉजिटिव थिंकिंग उनका रहेगा या आपको इतना वो ऊर्जान्वित कर देंगे कि आधी बीमारियां लगेगी जैसे कि
0: मतलब ये एक भरोसा होता है अपने डॉक्टर पर ना कि हम सही हाथ में हैं और अब हमारी हर परेशानी दूर हो जाएगी। तो जो मरीज होता है ना उसकी आधी समस्या यूं ही खत्म हो जाती है, बस वो सुकून से अपने आप को डॉक्टर के हाथों में सौंप देते हैं, जैसे कि हम ईश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप देते हैं, उनके चरणों में जाते हैं, मंदिर जाते हैं और सोचते हैं बस हमारी सारी समस्याओं का समाधान अब हो ही जाना है। उसी तरह से जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो लगता है बस हमारी बीमारी अब छुमंतर हो ही जाएगी।
1: बिल्कुल, कहने का आशय यही है कि चिकित्सा सेवा का आधार करुणा, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए।
0: बिल्कुल, तो हम एक गाना भी अपने श्रोताओं को सुनवा दें।

0: आओगे जब तुम साजना। ऐसा ही कुछ मंजर होता है हमारी लाइफ में भी, हमारी जिंदगी में, है ना विनोद जी? हम भी किसी के इंतजार में होते हैं, लेकिन किसी का इंतजार घर में बैठ के करने से बेहतर है, क्यों ना कहीं बाहर निकल के किसी अपने को ढूंढा जाए।
1: बिल्कुल
0: हमारे मानसिक स्वास्थ्य और बौद्धिक विकास के लिए पर्यटन एक बेहतरीन साधन है, और शायद इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी अक्सर पर्यटन को बढ़ावा देने की बातें करते हैं।
1: और देखा जाए तो पर्यटन की बात हम कर रहे हैं तो ये एक पार्ट ऑफ एजुकेशन भी है।
0: बिल्कुल
1: और अगर हम जो ये कह रहे हैं कि, और अभी 2 दिन पहले ही झारखंड के मुख्यमंत्री की भी एक तस्वीर वायरल हुई है जिसमें
0: हाँ
1: कि वो अपनी पत्नी के साथ, जो कि विधायक भी हैं गिरिडीह की,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: कल्पना सोरेन के साथ नजर आ रहे हैं।
0: पर्यटन आर्थिक विकास के साथ साथ रोजगार को भी बढ़ावा देता है। वैसे साथियों, इन दिनों बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, हरियाली की चादर ओढ़े प्रकृति काफी खूबसूरत लग रही है, रास्ते काफी खूबसूरत लग रहे हैं, झील तालाब झरने भी काफी खूबसूरत और आकर्षक लग रहे हैं। तो विनोद जी, क्या कहते हैं आप?
1: बिल्कुल कहीं दूर निकल जाए फिर।
0: हमारा झारखंड तो प्राकृतिक
1: बिल्कुल।
0: सौंदर्य से भरपूर है।
1: और ये भी है कि जहां तक हम दूर जाने की बात करते हैं तो पहले जो है कि अपने झारखंड को हम सही ढंग
0: बिल्कुल
1: से देखें। और
0: बिल्कुल
1: जहां तक आप कहीं भी पूरे देश के अगर किसी भी पर्यटन स्थल की आप बात करेंगी, मैं उसे झारखंड से कोरिलेट कर दूंगा बहुत हद तक अगर देखा जाए।

0: मान लीजिए कि आप बादलों की बात करती हैं, ज्यादा दूर नहीं, यहां से केवल ओरमांझी पार करते हुए आप सिकिदरी पहाड़ पर चले जाएं, बादल आपको पार करता हुआ नजर आएगा, आपको टच करते हुए वो निकलता हुआ
1: अरे
0: नजर आ
1: वाह,
0: जाएगा, और फिर जाकर देखिए वहां वहां का क्या वातावरण है। और
1: बिल्कुल।
0: इसी तरह से अगर मान लीजिए आप घाटियों की बात करें, तो बहुत ज्यादा दूर नहीं, आप केवल पतरातू घाटी चले जाएं, देखिए आप रोमांचित हो जाएंगे।
1: और नेतरहाट जो है वो तो हमारे
0: कहना ही नहीं
1: झारखंड की
0: है,
1: शिमला है ही।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: वहां का सनसेट और सनराइज देखने लायक होता है।
0: और फिर आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो जलप्रपात की अगर बात करें, वाटरफॉल की बात करें, तो ये दृश्य तो हमें लगता है कि जितना आपको यहाँ देखने को मिलेगा शायद यहाँ कहीं मिलेगा, यहाँ तो हर 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, दो
1: तालाब
0: किलोमीटर
1: और
0: पर आपको
1: झरनों का
0: लेना है।
1: शहर ही है हमारा
0: बिल्कुल
1: रांची।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हमारी रांची में इतने तालाब हैं, इतने तालाब और उतने ही झरने, खूबसूरत खूबसूरत, बेहद खूबसूरत झरने।
0: और
1: दसम
0: खास
1: हो गया, जोना है, हुनरू है, लेकिन इसमें एक लेकिन किंतु परंतु लग जाता है विनोद जी, कि बारिश के दिनों में पानी वाली जगहों से थोड़ी दूरी ही बनाए रखना बेहतर है। आप देखने जाएं, इसकी खूबसूरती तो बरसात में ही निखर के आती
0: बिल्कुल
1: है, लेकिन थोड़ा दूर से।
0: हाँ, थोड़ा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। अगर
1: हाँ।
0: देखा जाए तो सरकार ने भी बहुत प्रयास किए हैं, जितने भी यहाँ पे फॉल्स हैं सुरक्षा के पूरे प्रबंध किए गए हैं, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए जैसे हम दशम फॉल की बात करें, और सबसे ऊंचाई से करीब 144 फीट की ऊंचाई से कांची नदी से होते हुए ये जलप्रपात वहां पे बह रहा है, तो अगर देखा जाए तो उसमें कई सा अभी अगर देख लीजिए आप, तो आपको कभी गई होंगी तो आप देखेंगे वहां करीब 4 ऐसे पॉइंट्स बने हुए हैं जहां से कि जाकर आप उसका लुत्फ उठा सकती हैं, आप
1: अच्छा।
0: नीचे से भी उठा सकती हैं और ऊपर भी कई करीब 50 फीट ऊपर से भी देख सकती हैं, नीचे जाकर 20 फीट नीचे से भी देख सकती हैं कि कितना विहंगम वो जलप्रपात है। लेकिन फिर अगर उससे भी नीचे, जो कि वहां से प्रतिबंधित क्षेत्र है, अगर इससे अगर आप आगे जाती है तो निश्चित ही परेशानी हो सकती है, तो ऐसे में तो हमें खुद ही सचेत रहना होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। आनंद लीजिए, लेकिन दुर्घटनाओं से संभल के, दुर्घटनाओं को निमंत्रण ना दीजिए। और बस हमने, और विनोद जी ने तो इतनी सारी बातें कह दी आपसे, इतने सारे जगहों के नाम ले लिए, कि हम तो समझते हैं कि इस वक्त आपको भी मन कर रहा होगा कि चल कहीं दूर निकल जाए।

0: तो कहिए दोस्तों, कहाँ जाने का प्लान किया है आपने? वैसे विनोद जी, हम इंसान तो इंसान, हमारे भगवान जी भी इन दिनों भ्रमण के मूड में है। फिलहाल तो वो बीमार पड़े हुए हैं। आपको तो पता ही होगा कि 29 तारीख उन्होंने जो खूब सारा स्नान किया हुआ है,
1: बिल्कुल, जो ये सदियों से जो चली आ रही है
0: परंपरा
1: परंपरा कि
0: हमारी
1: रथ
0: है।
1: यात्रा से पहले बहुत सारे विधि विधान होते हैं, इसी
0: जी
1: में एक महास्नान का भी जो है वो
0: हाँ
1: परंपरा है। और इसमें है कि 108 घड़ा सुगंधित जल से
0: हाँ
1: भगवान को स्नान कराया जाता है। महाप्रभु जगन्नाथ जी स्नान करते हैं और कहा जाता है कि वो शीतल जल होता है तो इससे
0: बिल्कुल,
1: प्रभावित होकर भगवान बीमार पड़ जाते हैं और फिर 15 दिनों के लिए एकांतवास में चले जाते
0: एकांतवास में।
1: हैं।
0: अभी वो एकांतवास में ही है,
1: बिल्कुल
0: अभी उनकी लीला चल रही है। ये एकांतवास में है वो, और उसके बाद उनका भी भ्रमण शुरू होगा। 16 जुलाई को
1: बिल्कुल
0: रथ यात्रा शुरू होगी, मतलब वो अपने मौसी के घर जाने के लिए निकलेंगे, है ना? तो हमारे श्रोताओं को बेसब्री से इंतजार है भगवान जी के दर्शन का। तो फिलहाल तो उन्हें एकांतवास करने दीजिए और हम उनके शरणागत होते हैं। एक प्यारा सा ये गीत सुनते हैं।

0: और विनोद जी, अब खबरें खेल की। तो सबसे पहले हम ये बताएं अपने श्रोताओं को कि इंग्लैंड के दिग्गज ऑलराउंडर और टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ ट्रेंट ब्रिज टेस्ट के चौथे दिन उन्होंने अपने संन्यास का ऐलान कर क्रिकेट जगत को चौंका दिया। 15 साल के अपने शानदार करियर में स्टोक्स ने तीनों फॉर्मेट्स को मिलाकर 279 इंटरनेशनल मैच खेले। उन्होंने अपने आखिरी व्हाइट बॉल मैच भारत में हुए 2023 वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में खेला था। अपने आक्रामक बल्लेबाजी, घातक गेंदबाजी और कभी हार ना मानने वाले अपने जज्बे से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेलने का तरीका ही बदल दिया। गेंद और बल्ले दोनों से उन्होंने ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं जो उन्हें क्रिकेट इतिहास के सबसे महान ऑलराउंडर्स की लिस्ट में शुमार करते हैं।
1: और अगर बात करें हार्दिक पांड्या की, तो टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने अपना ठिकाना बदल लिया है।
0: अच्छा।
1: वे अब मुंबई से अस्थायी रूप से बेंगलुरु शिफ्ट हो गए हैं। इसका मुख्य कारण BCCI के सेंटर ऑफ एक्सलेंस को अपने करियर के बाकी समय के लिए परमानेंट ट्रेनिंग बेस बनाना है।
0: और महिला वर्ल्ड कप की बात करें तो T20 में ऑस्ट्रेलिया 8वीं बार फाइनल में है। और हम अपने बॉयज की बात करें तो आज मैच होने वाला है। आयरलैंड के खिलाफ 0-2 से चौंकाने वाली सीरीज हार के बाद अब टीम इंडिया आज इंग्लैंड से भिड़ेगी। दोनों देशों के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा।
1: और अगर मुकाबला तो मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे शुरू होगा, जिसका सीधा प्रसारण विभिन्न टीवी चैनलों पर दिखाया जाएगा। और नए T20 कप्तान श्रेयस अय्यर पर इस सीरीज में टीम को जीत की पटरी पर लौटाने का भारी दबाव भी होगा।
0: जी हाँ। और विनोद जी, बातें तो ढेर सारी, खबरें भी खेल की ढेर सारी हैं, लेकिन अब घड़ी की सुइयां हैं जो इशारा कर रही हैं कि हमें अपने श्रोताओं से विदा लेना चाहिए। तो इस प्यारे से गीत के साथ हम अपने श्रोताओं से लेते हैं विदा। नमस्कार, जोहार, जोहार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए हम आपको सबसे पहले सुनवाते हैं फिल्म प्रियतमा का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में। बोल है आनंद के, माफ कीजिएगा, अनजान के, और संगीत राजेश रोशन का।

और ये गीत है फिल्म तपस्या से, जिसे गाया है किशोर कुमार और आरती मुखर्जी ने, लिखा है एमजी हसमत ने और संगीतबद्ध किया है रविंद्र जैन ने।

जवानी दीवानी, जी हाँ नाम है फिल्म का। सुनते हैं इस फिल्म का दो गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। नगमा निगार है आनंद बख्शी और मौसीकी है आर डी बर्मन की।

आप सुन रहे थे फिल्म दाग का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में। शब रचना की थी साहिर लुधियानवी ने और उसे संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की ही आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत। संगीत है आरडी बर्मन का और फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी।

आशिक मुझे बनाया, हंसते हंसते कट जाए रास्ते। अभी आप सुन रहे थे फिल्म खून भरी मांग का ये गीत नितिन मुकेश और साधना सरगम तथा सोनाली की आवाजों में। शब्द थे इंदिवर के और उसे संगीत से सजाया था राजेश रोशन ने। कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अजनबी का ये गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में।

फिल्म अजनबी के लिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए इसी गाने के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम गृह लक्ष्मी, जिसे आज प्रस्तुत कर रही हैं महजबीन परवीन और सुभाषिनी। प्रस्तुति है गौरव पांडे की।

0: बहनों 12 बज चुके हैं और वक्त है आपके मनपसंद कार्यक्रम गृहलक्ष्मी का, जिसे लेकर हाजिर है आपकी दो सखियां। मैं हूँ सुभाषिनी और संग है हमारी एक और रेडियो सखी महजबीन।
1: तो स्वीकार करें बहनों हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। हर दिन की तरह आज भी हम आपसे ढेर सारी बातें करेंगे और साझा करेंगे। आपके लिए होंगी कुछ जानकारियाँ और साथ में होगा मनोरंजन भी।
0: हाँ और बहनों, लेकिन आज के दिन क्या खास है वो तो बता दे बहनों को। तो बहनों आपको बता दे कि आज से यानी कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक हम राष्ट्रीय वन महोत्सव सप्ताह मना रहे हैं।
1: बिल्कुल सुभाषिनी, हर वर्ष हम 1 से 7 जुलाई के बीच वन महोत्सव सप्ताह मनाते आ रहे हैं। यह एक वार्षिक वृक्षारोपण उत्सव है बहनों, जिसका उद्देश्य है पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना।
0: हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, प्रकृति ने हमें अनेक अनमोल उपहार दिए हैं जिनमें वन सबसे महत्वपूर्ण है। ये न केवल हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं बल्कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं।
1: तभी तो वन धरती के फेफड़े कहे जाते हैं, यानी वन है तो हम है। वनों के बिना हम मानव पृथ्वी की कल्पना भी नहीं कर सकते। वन प्रकृति का कवच है और हमारे जीवन का आधार भी है।
0: बिल्कुल, और बहनों गौर करें तो हमारे जो रोजमर्रा के जीवन की बहुत सी जरूरतें हैं ना, वो वनों पर ही निर्भर हैं। जैसे कि वनों से हमें अनेक जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं जिनसे कई असाध्य रोगों की दवाएं बनती हैं। फर्नीचर के लिए कच्चा माल हमें वनों से ही तो मिलता है।
1: सिर्फ यही नहीं बहनों, वन अनेकों पशु पक्षियों का आशियाना भी कहा जाता है। अगर हम पर्यावरण की बात करें तो वन जलवायु की जो गर्मी है ना उसे सामान्य बनाए रखते हैं, तेज हवाओं को रोककर उपयुक्त जलवायु का भी निर्माण करते हैं।
0: बिल्कुल, और वर्षा तो कराते ही हैं, साथ ही वर्षा जल को सोख कर भी रखते हैं जिससे भूमि का जल स्तर गिरता नहीं है और दूर दूर तक के जो क्षेत्र होते हैं वो हरे भरे रहते हैं। यानी सखियों, वन हमारी जीवन का आधार है। यदि वन सुरक्षित रहेंगे तो हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा।
1: सही है सुभाषिनी, कवि सुमित्रा नंदन पंत ने ठीक कहा है कि वृक्ष धरती के गहने हैं। अगर हमें अपना अस्तित्व बचाना है तो वनों को बचाना ही होगा। पेड़ हमारे बिना भी जी सकते हैं, लेकिन हम यानी सभी जीव जंतु पशु पक्षी इसके बिना नहीं जी सकते, क्योंकि पेड़ है तो हम हैं।
0: बिल्कुल, तो आज के आधुनिक युग में जहां एक तरफ कंक्रीट के जंगल यानी इमारतें बढ़ती जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ असली हरे भरे जंगल जो हैं वो घटते जा रहे हैं। ऐसे में हम सबका ये दायित्व बनता है कि वनों के संरक्षण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं।
1: एक पेड़ लगाएं, ऐसा ना हो कि उस पेड़ को लगाकर आप भूल जाएं। उस पर आप ध्यान दें, उसकी देखरेख करें। मौसम भी अनुकूल है, बारिश का मौसम है, ऐसे में हम एक पेड़ लगाते हैं तो ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे द्वारा लगाए गए पेड़ ये जो है सूखेंगे भी नहीं, क्योंकि वो कुदरत की ओर से उसे कुछ ना कुछ नमी प्रदान होते रहेगी। ये हमारे सच्चे मित्र हैं जो बिना कुछ मांगे भी हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं।
0: पर्यावरण को हरा भरा बनाने के लिए आप सरकार द्वारा चलाए गए एक पेड़ माँ के नाम अभियान से भी जुड़ सकते हैं। और अभी तो समय भी अनुकूल है, क्योंकि यह मौसम सिर्फ बारिश का नहीं बल्कि जीवन के पुनर्जागरण का मौसम है। यही वह समय है जब प्रकृति हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है।
1: सखियों, कल्पना करें कि अगर भारत का हर नागरिक साल में सिर्फ एक पेड़ लगा दे तो करोड़ों एक पेड़ लगाना भविष्य में निवेश करने जैसा है। आज अगर 5 साल का बच्चा जो पौधा है, छोटा पौधा लगाएगा, तो 25 साल की उम्र में वही पेड़ उसे छाया, फल और बहुत ही ज्यादा शुद्ध हवा देगा। यानी कि देखा जाए तो एक पेड़ से हमें कई फायदे हैं।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात बताई तुमने। और बहनों, तुलसीदास की एक प्रसिद्ध पंक्ति है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिय ही न पान। यानी पेड़ खुद फल नहीं खाते, खुद पानी नहीं पीते, फिर भी सबको जीवन देते हैं। तुलसीदास की इस पंक्ति में जीवन का गहरा राज छुपा है बहनों। पेड़ के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है।
1: तो बहनों आइए हम प्रण लें कि एक पेड़ जरूर लगाएं और साथ ही साथ उसका संरक्षण भी करें। अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर उपयोग करें, लेकिन उस निर्ममता को के साथ नहीं कि प्राकृतिक का जो संतुलन है वो बिगड़ जाए। यानी कि हम उसके जो संतुलन को बरकरार रखना हमें ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है।
0: बिल्कुल, वन पर्यावरण और मानव का अटूट संबंध है। मानव अपनी खुशी का आनंद वन और पर्यावरण के संग ही तो पाता है। प्रकृति की हरियाली और शीतल वायु सभी का मन मोह लेती है। प्रकृति की गोद में पर्यावरण के संग रहना ऐसा सुखद लगता है बहनों, जिसका वर्णन शब्दों में करना बहुत कठिन है।
1: तो क्यों ना जो प्रकृति की गोद में चलें और प्रकृति के संग उन पलों को महसूस करें इस खूबसूरत से प्यारे से गीत के माध्यम से।

0: बहुत ही खूबसूरत गीत है ना महजबीन। और इस गीत के बाद हम छोटे से अंतराल एक ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। और लेकिन ये ज़रूरी है कि आज चूंकि वन महोत्सव है तो हम अपने मेहमान से बहनों को ज़रूर मिलवा
1: हाँ,
0: देते
1: क्यों
0: हैं,
1: नहीं
0: है ना?
1: मिलते अपने मेहमान से।
0: तो बहनों आपको बता दें कि आज के हमारे खास मेहमान हैं श्रीकांत वर्मा, जो कि DFO रांची हैं, और इनसे बातचीत कर रही हैं महजबीन। और आज वन महोत्सव के उपलक्ष्य पर आइए सुनते हैं उनसे क्या बातचीत हुई है।
2: आपको वन्य सप्ताह के उपलक्ष्य में वन संरक्षण के बारे में जानकारी देंगे। और हमारे आज के मेहमान हैं श्रीकांत वर्मा, DFO रांची। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
3: नमस्कार सभी श्रोताओं को, नमस्कार जोहार। इस बार जो अभी मानसून का समय आ रहा है, वन महोत्सव का समय आ रहा है, झारखंड में वन महोत्सव बहुत हर्षो उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य स्तरीय प्रोग्राम से पूरे झारखंड वासियों को और देशवासियों को वन महोत्सव की शुभकामनाएं देते हैं। वो कार्यक्रम भी शीघ्र ही समय लेकर आयोजित किया जाएगा। मैं इस मानसून और वन महोत्सव यानी कि वनों के लगाने के उत्सव के विषय में यही कहना चाहता हूँ कि ये सरकार के साथ साथ जो कम्युनिटी है, समाज है, वो सभी की भागीदारी से ही ये संभव है। तो आइए हम सब मिलकर अपने वनों की रक्षा करें, जो प्राकृतिक संपदा है उसको समृद्ध करें और आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर चलें। हमें वनों के संरक्षण के साथ साथ जल संरक्षण पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मानव एवं जो वन्य प्राणी है और वन्य जीव, पेड़ पौधे हैं, जितने भी

0: जीव जंतु हैं, सभी के एग्जिस्टेंस के लिए ये दोनों ही बेहद आवश्यक हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं पुनः कहना चाहूंगा कि हम अपना दायित्व समझें और इसे बखूबी निभाएं, और एक साझा जिम्मेवारी है हम सभी की, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इसको निभाने की कोशिश करें तो हमारे आने वाले जनरेशन उस तरह का क्लाइमेट, उस तरह का वेदर देख पाएंगे जो हमने अपने बचपन में देखा है, या उससे भी बेहतर देख पाएंगे। तो इस दिशा में हमको कार्य करना चाहिए। इन बातों के साथ पुनः आपको बहुत बहुत बधाई इस वन महोत्सव के आने वाले सीजन के लिए, और मैं श्रीकांत वर्मा DFO रांची आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने अच्छे कार्य किए हैं और आगे भी इसी दिशा में करते रहेंगे।
1: सर एक ये भी बात है कि वन सभी के लिए, यानी जानदार जीव जंतु सभी के लिए एक जीवनदाता का काम करता है, तो सभी इस और जागरूक हो, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
0: हम कोशिश करते हैं कि देखिए ग्रामीण परिवेश में लोग जागरूक रहते हैं, उनको प्रकृति से जनरली यहाँ जो जनजाति समूह है, या हम आप देखें गांव घर में भी लोग करते हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री ने भी एक पेड़ माँ के नाम का लगभग 3 वर्षों से ये स्लोगन चल रहा है, उसके अनुपालन में भी काफी कार्य हो रहा है। लेकिन शहरी क्षेत्रों में वनों की कमी हो गई है, आप देखेंगे पॉल्यूशन पर्टिकुलर इमिशंस के कारण बहुत बढ़ गया है। तो इस समय में आवश्यक है कि जो सिविल सोसाइटी है वो प्लांटिंग करे, और केवल एक पेड़ नहीं, मैं कहूंगा कि उनको 10 लगाना चाहिए, क्योंकि सामाजिक रूप से अगर आप सशक्त हैं, आर्थिक रूप से सशक्त हैं, तो जो कमजोर वर्ग है, जो 2 जून की रोटी के लिए प्रयासरत है दिन भर, तो उनसे हो सकता है कि हम अपेक्षा ना करें कि वो वृक्षारोपण या पॉल्यूशन या अन्य चीजों पर उनका उतना ध्यान जाएगा। तो इसी के लिए आवश्यक है कि हम उनके शेयर का भी जो काम है वो हम करने की कोशिश करें, उनका भी दायित्व लें, ताकि जो कार्य वो ना कर पाए उसको कंपनसेट किया जा सके। तो यही अपेक्षा करता हूँ कि मैं तो कर रहा हूँ, आप भी कीजिए।
1: और सर ये भी है कि वनों की कटाई से हमारा जो वातावरण है वो दूषित भी हो रहा है, और हम ये भी देख रहे हैं कि आप जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही है बहुत ज्यादा आ रही है, आपका क्या संदेश होगा?
2: देखिए 1950 में यानी कि हमारी आजादी के 3 वर्ष बाद, जो उस समय जो राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह में काफी अच्छी भागीदारी थी उनकी, और बाद में मिनिस्टर हुए, उनका नाम था KM मुंशी, कनेका मनिकलाल मुंशी, इन्होंने इस वन महोत्सव की नींव रखी थी, और ये उस समय भी जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही मनाया जाता था, फिर भी ये जो प्रथा है ये चालू है, और इसको वो एक नेशनल एक्टिविटी यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर एक विधि के रूप में या लोगों के मास में, मतलब समूह इसको अडॉप्ट करें, सब लोग करें, ये समझ उस समय भी थी कि अगर जनता इसको अडॉप्ट कर लेगी तो जो अभी समस्याएं हैं जलवायु परिवर्तन इत्यादि की वो कम से कम होंगी। तो यह जो वन महोत्सव है और इसका जो स्पिरिट है ये अभी भी प्रासंगिक है, इसको हम लोग प्रादेशिक कार्य भी कहते हैं, क्राइम कंट्रोल लॉ एंड ऑर्डर की भी समस्याएं इसमें आती हैं, और विभिन्न वन पदाधिकारी इस संबंध में उनको जो भी पावर्स हैं वो निहित हैं कई तरह के अधिनियमों के अंदर कि वो वन्य प्राणी और वनों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं, ये पहला है। दूसरा है कि वनों के आवरण की बढ़ोतरी, इसके लिए जो वन संपदा है उसका रेगुलर असेसमेंट किया जाता है, उसको समय समय पर आकलन किया जाता है कि कहाँ कितने पौधारोपण की आवश्यकता है, जो खाली भूमि है उन पर किया जाए, या वनों के बाहर लोगों को प्रोत्साहित किया जाए, किसान है वो भी अपने जो जमीन है उसके मेड़ है उस पर भी वृक्ष लगा सके। तो इस प्रकार से हरित आवरण को बढ़ाना और सुरक्षा करना, ये दोनों कार्य करके ही हम इस चुनौती को पार पा सकते हैं। देखिए जागरूकता के लिए सब ये वन महोत्सव एक जागरूकता कार्यक्रम ही है, एक सिंबॉलिक कार्यक्रम ही है कि कहीं पर आप बच्चों को, महिलाओं को, और खासकर झारखंड से राज्य जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहाँ

0: उस समूह के लोगों को जो वनों पर आश्रित हैं, उनको वनों के महत्ता के बारे में फिर से बताइए और उनको जोड़िए अपने साथ कि छोटे मोटे स्वार्थ के लिए हम वनों की कटाई ना करें, वहाँ के जमीन को लेने के लिए हम उस पर अतिक्रमण ना करें। ये सब बातें वन महोत्सव के माध्यम से या विश्व पर्यावरण दिवस के माध्यम से या वर्ल्ड अर्थ डे मनाते हैं, इन सब माध्यम से हम समय समय पर लोगों के साथ साझा करते रहते हैं, चाहे सोशल मीडिया हो। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन पर जिन जो भी लोग हैं, मैक्सिमम लोग हैं स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, उनके पास इस तरह की जागरूकता प्रतिदिन आती रहती है। ज़रूरत है कि एक थोड़ा ठहर कर उनको समझने की और अपने जीवन के साथ जोड़ने की। ऐसा अगर सभी करेंगे तो अवश्य रूप से वो एक बेहतर धरती की कल्पना कर सकते हैं। जुड़ना है इस कार्यक्रम से, जैसे बहुत सारे कैंपसेस हैं, सरकारी विद्यालय हैं, आंगनबाड़ी है, जहाँ जहाँ ब्लॉक के कार्यालय के जो भी परिसर हैं, अस्पताल के परिसर हैं, वहाँ आप जागरूक होकर जो भी सरकारी पौधशालाएं हैं उनकी जानकारी आप उस जिले में प्राप्त कर लें, वहाँ से जाके पौधा लेकर और आवश्यकता अनुसार आप पौधारोपण करें। दूसरा है कि एक बहुत अच्छी प्रथा शुरू हुई है वृक्षों के रक्षाबंधन की। बहुत सारे लोग एक संस्कृति डेवलप हुई है झारखंड में, खासकर हजारीबाग के में, सिमडेगा में, कि लोग वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधते हैं। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है। इस प्रकार के स्पिरिट को अगर लोग फॉलो करें तो ये जनभागीदारी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल। देखिए, हम आप रेगुलरली अपने टीवी में, मोबाइल में देखते रहते हैं कि किस प्रकार हम मनुष्य ही इतने फैल चुके हैं कि अपनी धरा को दूषित कर रहे हैं। हम अपने लिए इतना जगह बना ले रहे हैं कि बाकी जो स्पेशीज हैं, जैसे जो वनों में रहने वाले जंगली जानवर हैं, हाथी है, टाइगर है, जो हम लोग रेगुलरली चाहते हैं कि हम लोग कभी देखें, टाइगर रिजर्व में जाके, पार्क्स में जाके सामने से देखें, जो बहुत अच्छे लगते हैं, राइनोसेरस है, उसको देखने का मन करता है, हाथी की सवारी लोग करना चाहते हैं। तो ऐसे जो जीव हैं, ये धरा उनकी भी है और उनको नुकसान ना करें इसके लिए सबसे पहले है कि जो वन है उनको अक्षुण्ण रखने का प्रयास हम सभी को करना है। जो वहाँ पर वृक्ष हैं, जो वहाँ पर पानी का स्रोत है, उसको दूषित ना करें। प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें, प्लास्टिक की जगह कपड़े का थैला यूज़ करें। कोशिश करें कि अब बैटरी वाले बाइक्स आ रहे हैं, उनका उपयोग करें ताकि पोल्यूशन कम हो। थोड़ी देर अगर कहीं 1-2 किलोमीटर चलना भी हो शॉपिंग जाने के, तो आप चलने का प्रयास करें। हर समय वाहन का उपयोग ना करें। घर से निकलें तो एसी और पंखे और बिजली वगैरह के उपकरण बंद कर दें। इन सब छोटे छोटे तरीकों से हम अपनी धरा को एक किसी न किसी प्रकार से बचाते हैं। इसीलिए इस संबंध में जागरूक होकर एक अच्छे नागरिक बनने की आवश्यकता है।
1: मैंने आप अभी सुन रही थी भेंटवार्ता। भेंटवार्ताकार थे श्रीकांत वर्मा, DFO रांची, और इनसे बातचीत कर रही थी महजबीन परवीन। और महजबीन, अब हम बहनों के लिए क्या लाई हो, बहनों को जरा बताओ।
2: अब अपनी बहनों को हम सुनवाते हैं एक और प्यारा सा गीत।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। So easy.
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: बहनों, फिर से स्वागत है आपका गृह लक्ष्मी कार्यक्रम में। आज हम आपको बताएंगे कि क्यों जरूरी है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी माध्यम है। नियमित रूप से एक्सरसाइज करने से न केवल हमारा शरीर निरोगी रहता है, बल्कि हमारा मन भी शांत और ऊर्जावान बना रहता है। आज की आधुनिक जीवन शैली में एक्सरसाइज का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है, क्योंकि लोग जागरूक हो रहे हैं।
1: एक्सरसाइज हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है बहनों, क्योंकि न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर रखता है, बल्कि हमारा वजन भी नियंत्रित करने, फिर मानसिक तनाव को कम करने और बीमारियों के खतरे को भी कम करके जीवन को सुचारू ढंग से चलाने में हमारी मदद करता है।
0: हाँ बहनों, नियमित एक्सरसाइज रक्त संचार को बेहतर बनाता है और जो शरीर के ऊतकों का तक पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। इससे ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहते हैं। शारीरिक गतिविधि अतिरिक्त कैलोरी बर्न करने में भी मदद करती है, जिससे मोटापा और उससे जुड़ी अन्य बीमारियों का जो खतरा है कम रहता है। तो बहनों, एक्सरसाइज करने से फेफड़ों और हृदय की कार्य प्रणाली में सुधार होता है, जिससे आप दिन भर ऊर्जावान महसूस करते हैं। एक्सरसाइज जो जिस तरह से आप करती हैं, वो उससे मूड बेहतर रहता है और तनाव भी कम होता है, साथ में और साथ से भी बचाता है। नियमित शारीरिक श्रम से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, जोड़ों का लचीलापन बढ़ता है और उम्र बढ़ने के साथ साथ हड्डियों का जो कमजोर होने का खतरा होता है ना, वो कम होता है।
1: बिल्कुल। और बहनों, हम महिलाओं के लिए भी एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए एक्सरसाइज बेहद जरूरी है। उम्र जैसे जैसे बढ़ती है महिलाओं की, शरीर में कई तरह के हार्मोनल और शारीरिक बदलाव होते हैं, जिन्हें नियंत्रित करने में एक्सरसाइज मुख्य भूमिका निभाती है।
0: और शारीरिक स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञ है ना, उसकी सलाह भी लेना जरूरी है, तभी आप एक्सरसाइज की शुरुआत करें। तो बहनों, हम चलते चलते क्यों ना आपको एक और प्यारा सा गीत सुनवा दें।

0: बहनों, आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव पांडे की, अब दे महजबीन
1: और सुभाषिनी को दे विदा। नमस्कार,
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत में पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं ऐतराज फिल्म का। इस गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने, लिखा है समीर ने और इसकी धुन तैयार की है हिमेश रेशमिया ने।

और अब आइए सुनते हैं फिल्म शान का ये नगमा आशा भोसले और पंकज उधास की आवाजों में। नगमा निगार हैं आनंद बख्शी और संगीत है SD RD बर्मन का।

दोस्तों, जिंदगी हसीन है मगर सिर्फ उनके लिए जिन्होंने प्यार किया है, क्योंकि सिर्फ प्यार करने वाले जानते हैं कि आन बान और शान से जीना किसे कहते हैं, है ना।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म राज से। लिखा है इसे समीर ने और नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में, गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: डट पड़े भारतीय सेना।
1: हमारे श्रोता इस समय कुछ फिल्मी गीतों का आनंद उठा रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से, और अब आइए सुनते हैं फिल्म दम लगा के हिस्सा का ये गीत पपून की आवाज में। वरुण ग्रोवर ने लिखा है इसे और संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने।

और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत, आनंद कुमार की आवाज में। इंदिवर के बोल हैं और संगीत है आनंद जी वीर जी शाह का। फिल्म का नाम कुर्बानी।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म कुर्बानी का ये गीत। समय अभाव के कारण आप इस गीत को पूरा नहीं सुन पाए, इसका हमें खेद है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 1 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे, जिसे रिले करेंगे हम अपने दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबी जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जीराम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपये से बढ़ाकर विकसित भारत जीराम जी के अंतर्गत 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जीराम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
1: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सतत जल प्रबंधन और सिंचाई के विस्तार से सिंचाई आधारित कृषि के 10 वर्ष से अधिक हो गए हैं। पहली जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेतों में जल दक्षता में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू बाढ़ की स्थिति तथा आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहुंचे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों केंद्रीय मंत्रियों को भेजने में उनकी तत्परता और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कल मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। इस दौरान श्री खांडू ने गृहमंत्री को मौजूदा स्थिति, राहत, बचाव और पुनर्वास के चल रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi has said Digital India Initiative has redefined governance, empowered citizens and accelerated all-round development. Marking the 11 years of the initiative, Mr. Modi said that Digital India has touched every aspect of life. He underscored that seamless digital payments and direct benefit transfers are reaching beneficiaries with transparency. Mr. Modi said that technology has become a powerful instrument for furthering ease of living. Home Minister Amit Shah has said that the government has transformed India into a digital nation by expanding digital connectivity, strengthening digital governance, and improving access to public services. Marking 11 years of the Digital India Initiative, Mr. Shah said the country has witnessed significant progress in internet connectivity, digital infrastructure, and technology-driven governance. In a social media post, he said that over 103 crore people are now connected to the internet, while more than 2,20,000 villages have been linked through BharatNet. Revised wage rates under the Viksit Bharat Ji Ramji Act 2025 have become effective from today. According to the notification issued by the Rural Development Ministry, wage rates have been enhanced across all states and union territories. The ministry said for the first time an interim-based wage rate of 300 rupees per day has been introduced, ensuring that no notified wage under the program falls below this level. The national average wage has risen from 298.8 rupees per day under MG Narega to 327.4 rupees per day under Viksit Bharat Ji Ramji. 21 states and administrative units which previously had wages below 300 rupees have now been brought up to the new benchmark. Minister for Rural Development Shivraj Singh Chauhan described the revision as a historic step towards building a Viksit Bharat through prosperous villages. In Uttar Pradesh, five people, including two minor girls, were killed after a sleeper bus collided with a car on the Agra-Lucknow expressway in the wee hours today. According to the officials, the sleeper bus was travelling from Haryana to Bihar while the car was heading from Agra towards Lucknow when the speeding bus hit the car from behind. After the collision, the bus fell off the expressway and overturned. The impact was so severe that the car was completely mangled and dragged for nearly 20 feet on the expressway. With the help of locals, injured people were rescued and rushed to the community health centre Bangarmau. Those with serious injuries were referred to the district.

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वे 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को दी नई दिशा और देश के समग्र विकास को दी गति। सशक्त हुए नागरिक। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने नए सूचना आयुक्तों को पद और गोपनीयता की दिलाई शपथ। लोकभवन में आयोजित हुआ समारोह। जेपीएससी सिविल सर्विस पीटी रिजल्ट जारी होने का रास्ता साफ। उम्र सीमा विवाद पर हाईकोर्ट ने खत्म की सुनवाई। पासपोर्ट आवेदन शुल्क में आज से वृद्धि लागू। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट की लागत अब होगी 2500 रुपए। और आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी शुभकामनाएं। समर्पण और सेवा भाव की सराहना की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है और डिजिटल इंडिया ने नवाचार को देश के कोने कोने तक पहुंचाया है। वीबी जे राम जी को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आज का दिन ऐतिहासिक है। मनरेगा से बेहतर योजना, जिसमें 100 नहीं बल्कि 125 दिन के रोजगार का प्रावधान है, वीबी जे राम जी आज से लागू हुई है।
1: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। कल मनरेगा का समापन हो गया और मनरेगा से बहुत बेहतर योजना, जिसमें 100 दिन नहीं 125 दिन का रोजगार मांगने पर मजदूर बहनों और भाइयों को दिया जाएगा, विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को

0: रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
1: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। यह दरें आज से लागू हो गई हैं। एक
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपए से बढ़ाकर विकसित भारत जीराम जी के अंतर्गत 327.40 रूपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रूपए से कम थी वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
1: लोक भवन रांची में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड राज्य सूचना आयोग के 4 नए सूचना आयुक्तों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने राज्यपाल के नियुक्ति आदेश को पढ़कर सुनाया।
3: झारखंड राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्तों की नियुक्ति आदेश ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट पढ़ने की अनुमति चाहता हूँ। मैं संतोष कुमार गंगवार, झारखंड का राज्यपाल, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को झारखंड राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त के पद पर अपने पद का प्रभार संभालने की तिथि से नियुक्त करता हूँ। 1. श्री अनुज कुमार सिन्हा, 2. श्री तनुज खत्री, 3. श्री अमूल्य नीरज खलको, 4. श्री शिव पूजन पाठक। मेरे हस्ताक्षर और मुद्रा से आज दिनांक 8 जून 2026 को लोक भवन रांची में दिया गया। संतोष कुमार गंगवार, झारखंड के राज्यपाल।
1: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के झारखंड प्रभारी के राजू 2 से 6 जुलाई तक राज्य के संगठनात्मक दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे रांची सहित कई जिलों में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन की मजबूती, बूथ सशक्तिकरण और आगामी कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। रांची में हुई फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की बैठक में झारखंड की औद्योगिक संभावनाओं, उद्यमिता और निवेश को बढ़ावा देने के मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। इस बैठक में शिक्षाविद लक्ष्मी नारायण गोयल ने रोजगार सृजन, व्यापारिक वर्ग की भूमिका तथा खनिज संपदा के बेहतर उपयोग के लिए आधुनिक तकनीक और वैश्विक सहयोग पर बल दिया। पासपोर्ट आवेदन शुल्क में आज से वृद्धि लागू हो गई है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या फिर से पासपोर्ट बनवाने की लागत अब 2500 रूपए होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या दोबारा जारी पासपोर्ट की लागत अब 3500 रूपए निर्धारित की गई है, जबकि तत्काल योजना के तहत ये 6000 रूपए होगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा आयु सीमा में छूट से संबंधित सभी याचिकाओं का निस्तारण किए जाने के बाद जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2025 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी करने का रास्ता साफ हो गया है। अदालत ने कहा कि अधिकतम आयु सीमा तय करना राज्य सरकार का नीतिगत अधिकार है और सरकार पहले ही अभ्यर्थियों को 4 वर्ष की आयु सीमा में छूट दे चुकी है। कोडरमा के डोमचांच निवासी युवा उद्यमी सचिन प्रजापति ने 15 तरह के शहद निर्माण में सफलता हासिल करते हुए कई युवाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की प्रेरणा दी है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना PMFME के तहत 35% अनुदान पर उन्होंने प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया। आज उनके उत्पादों की मांग देश के विभिन्न राज्यों से आती है।
4: इसका शुरुआत 2023 में किए थे, इंटरनेट के थ्रू इसके बारे में जानकारी मिला, फिर इसको हम एक्सप्लोर किए। एक्सप्लोर करने के बाद फिर जब देखिए फैमिली के साइड से भी अच्छा सपोर्ट हमको रहा, शुरू से ही बनते रहा, तो शुरू में डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा था, देन फिर धीरे धीरे करते करते प्रयास करते करते फिर अभी हम लोग ग्रुपिंग में बी कीपिंग कर रहे हैं। सर लास्ट ईयर हमको PMFME की तरफ से प्लांट सेटअप करने के लिए सरकारी मदद मिला, उसमें 35% अनुदान है।
1: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,33,200 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,45,000 रुपए प्रति किलो है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से आज से एयर इंडिया एक्सप्रेस की 4 और इंडिगो की 1 नियमित उड़ान का परिचालन अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इन उड़ानों के बंद होने से रांची से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता आने जाने वाले यात्रियों को अस्थायी रूप से असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। यह दिवस हर वर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। झारखंड में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है, जिससे अगले 4 दिनों तक राज्यभर में भारी बारिश और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग ने इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि मॉनसून ने राज्य को कवर कर लिया है।
5: झारखंड में जो कवरेज थोड़ा सा बचा हुआ रह गया था पलामू और गोड्डा जिलों के कुछ हिस्सों का, आज वो भी कंप्लीट हो गया है और पूरे झारखंड में मॉनसून कवर करता हुआ अब यूपी तक भी पहुंच गया है और आगे देखा जाएगा कि उसका स्थिति क्या बनता है, आगे और डेवलप करता है, किस दिशा में जाता है, क्योंकि उसका जो दिशा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो हमारे इलाके से गुजरेगा तो और अच्छा बारिश होगा।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को दी गति, सशक्त हुए नागरिक। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने नए सूचना आयुक्तों को पद और गोपनीयता की दिलाई शपथ। लोक भवन में आयोजित हुआ समारोह। जेपीएससी सिविल सर्विस पीटी रिजल्ट जारी होने का रास्ता साफ। उम्र सीमा विवाद पर हाईकोर्ट ने खत्म की सुनवाई। पासपोर्ट आवेदन शुल्क में आज से वृद्धि लागू। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट की लागत अब होगी 2,500 रुपए। और आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुभकामनाएं दी, समर्पण और सेवा भाव की सराहना की। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है उप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। आज आप सुनेंगे इस कार्यक्रम में शोभा गुट्टू को। पहले आप प्रस्तुत करेंगे मिस्टर खमाज में ठुमरी, उसके बाद दादरा और फिर मिश्र भैरवी में ठुमरी। तो आइए सुनते हैं शोभा गुट्टू का गायन।

अभी आप सुन रहे थे दादरा, आवाज थी शोभा गुरटू की, और इसके साथ ही उपशास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम अनुरंजनी यहीं समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:45 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। आइए सुनते हैं मिताली सिंह की चंद गजलें।

मिताली सिंह की गाई इसी गजल के साथ सुगम संगीत यहीं समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। मिड डे न्यूज के लिए अगला प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

0: Pradesh, newly appointed Army Chief General Dheeraj Seth stresses on modernization of Army to tackle challenges of evolving security environment. Afghanistan attacks ISIS targets in Pakistan. Monsoon likely to advance to Delhi, Haryana, Chandigarh and Punjab in the next 2 days. And in FIFA World Cup, Mexico defeat Ecuador 2-0 to enter round of 16. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मॉनसून के 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। और फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है। आधार, डिजीलॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान अब अपने अगले दशक में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ भारत तकनीक को समावेशी विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जून महीने में UPI के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए। ये पिछले वर्ष जून के मुकाबले 23% अधिक है। इस लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। ये पिछले साल के तुलना में 20% की बढ़ोतरी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि VBG रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। एक रिपोर्ट।
3: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी रामजी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर

0: किया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
2: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
1: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दल ने पहले पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट का सर्वेक्षण किया, जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, और फिर बोइंग गांव जाकर जमीन स्तर पर हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
2: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए, अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
1: राज्य में बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं। लगभग सभी 28 जिलों में 90,499 लोग प्रभावित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
3: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
1: जनरल सेठ ने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
3: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच, कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
1: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर के स्थान पर नियुक्त हुए हैं, जो 4 दशक से अधिक की सेवा के बाद कल सेवानिवृत्त हो गए। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते हुए श्री सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ये

0: स्थान भविष्य में उत्कृष्टता का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।
1: I am pleased to know that this university has developed a long-term vision to become a future-ready institution. Its commitment to the sustainable development goals, especially to those on quality education, reflects a sense of responsibility towards inclusive and equitable development.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश ने कहा है कि भारत संप्रभु फलस्तीन की स्थापना के लिए बातचीत से द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। इसके अंतर्गत एक ऐसे संप्रभु फलस्तीन की स्थापना हो सकेगी जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इसराइल के साथ शांति और स्थिरता से रह सकेगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत ने फलस्तीनी लोगों को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है।
2: भारत फलस्तीन के लोगों की मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। अब तक भारत फलस्तीन को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता दे चुका है। इसके अलावा भारत समय समय पर मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, आपातकालीन दवाइयां और सामान्य उपयोग की आवश्यक औषधियां भी उपलब्ध कराता रहा है।
3: इंक्लूडिंग इमरजेंसी एंड जनरल यूज मेडिसिन।
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले 9 वर्ष में वस्तु और सेवा कर GST ने भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। GST से तर्कसंगत कर दरों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। ये 2017 में 1 जुलाई से लागू हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेती में जल के समुचित उपयोग में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में ISIS से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में ISIS के ठिकानों पर किए गए। इन हमलों में ISIS और उसके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचा और आर्थिक रूप से भी भारी क्षति हुई। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए थे और 163 अन्य घायल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने तुरंत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया है। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया। इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन G Ramji अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मॉनसून के दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

बिना कुछ जताए ही हो जाते हैं जो देश पर कुर्बान, वो हैं हमारे जवान। जय भारती सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को उम्मीद आ बोले तो आपकी मीत का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम सभी अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। हर किसी के अंदर ये जज्बात होता है कि हम अपने देश के लिए कुछ करें, लेकिन हर कोई सक्षम नहीं होता। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें देश के लिए कुछ करने का मौका मिलता है, जिन्हें अपनी देशभक्ति दिखाने का, जताने का, बताने का कोई मौका मिलता है, और ये मौका मिलता है हमारे जवानों को। हम नमस्कार करते हैं उनके जज्बात को, उनके एहसास को, उनकी वीरता को, उनकी भावनाओं को। हम आभार प्रकट करते हैं उनका कि उनके होने से हम सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अपने देश के जवानों के मनोरंजन के लिए हमारा भी थोड़ा कुछ योगदान हो, और इसी हेतु ये कार्यक्रम है। तो चलिए कुछ फिल्मी गाने सुनवाते हैं हम अपने भाइयों को, और उम्मीद करते हैं कि ये वक्त जो इस समय गुजर रहा है उनके लिए बहुत सुंदर हो।

यह देश है वीर जवानों का, और ये देश है हमारे किसानों का भी, जिनकी मेहनत से मिट्टी महक उठती है और हमारा पालन पोषण अच्छे से होता है। हर देशवासी ये चाहता है कि उसका देश हर तरह से खुशहाली के राह पर आगे बढ़े, तरक्की की राह पर आगे बढ़े।

एक सच्चा देशभक्त वो होता है जो अपने कार्यों से, ईमानदारी से, देश के कानूनों का पालन करके राष्ट्र निर्माण में सहयोग करता है। हर तरह से देश की तरक्की के लिए जो सोचे, देश पर कुर्बान हो जाने की जिसकी लालसा का कभी अंत ना हो, वही सच्चा देशभक्त कहला सकता है। दिल से निकलेगी ना मर कर के भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी।

दिल दिया है जहाँ भी देंगे ए वतन तेरे लिए। बस हमारे यही जज्बात हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। देश के लिए कुछ करने की भावनाओं का जन्म होता है ऐसे ही एहसासों से। अपने लिए तो हर कोई जीता है, हर जीव जंतु अपने लिए जीता है, लेकिन एक मनुष्य है जो अपने देश के लिए, अपनों के लिए जीता है। मानव हृदय ही दूसरे का दर्द समझ सकता है, और जिस हृदय में भावनाएं हो तो उस हृदय के लिए हर कोई सामने से नमस्कार करता है, उसका आदर करता है, उसका सत्कार करता है। असल में अगर किसी भी देश की उन्नति और तरक्की अगर किसी में छुपी हुई है तो वो उसके देशवासियों में है। हमारी भावनाएं ही हमें अपने देश के लिए कुछ करने का जज्बा देती है, और जब हम अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो फिर उस देश की तरक्की को कौन रोक सकता है।

ताकत वतन की हमसे है। इसी गाने के साथ कार्यक्रम जय भारती समाप्त करने की आपकी दोस्त मीता बोले तो आपकी मीत आपसे अनुमति चाहती है। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जय भारती, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय दिन के 2:55 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। देश में आज डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे हो गए हैं। इस अभियान ने सुशासन को नई दिशा देने के साथ साथ देश के समग्र और समावेशी विकास को नई गति प्रदान की है। एक रिपोर्ट।
1: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है। आधार, डिजीलॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान अब अपने अगले दशक में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ भारत तकनीक को समावेशी विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने देश में पोषण निगरानी प्रणाली को मजबूत करने पर जोर दिया है। सोशल मीडिया पर एक संदेश में उन्होंने कहा कि पोषण ट्रैकर के जरिए भारत में पारदर्शिता और कार्यक्षमता सुनिश्चित की जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ये डिजिटल सिस्टम रियल टाइम डैशबोर्ड, जियो टैग्ड आंगनवाड़ी केंद्रों और टेक होम राशन वितरण के लिए फेस रिकॉग्निशन जैसी आधुनिक तकनीकों के माध्यम से काम कर रहा है। उन्होंने स्मार्ट न्यूट्रिशन स्मार्टर नेशन का नारा देते हुए इसे कुपोषण मुक्त भारत की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। रांची के लोकभवन में आज एक गरिमामय समारोह के दौरान राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य के 4 नवनियुक्त सूचना आयुक्तों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में अनुज कुमार सिन्हा, तनुज खत्री, शिव पूजन पाठक और अमूल्य नीरज हलको शामिल रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने सभी नवनियुक्त आयुक्तों को बधाई देते हुए पारदर्शिता और जनहित में काम करने की उम्मीद जताई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। राज्य में हाल ही में हुई कुछ आपराधिक घटनाओं को लेकर मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने सरकार की प्रशासनिक विफलता पर तीखा हमला बोला है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का आरोप है कि राज्य में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और आम जनता असुरक्षित महसूस कर रही है।
2: 1000 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी है और सरकार का सजा दिलाने का रिकॉर्ड बहुत खराब है। अब राज्य सरकार ने जनता के बढ़ते दबाव के कारण सरायकेला के SP और जमशेदपुर के SSP का तबादला किया है और जब तक ट्रांसफर पोस्टिंग एक उद्योग बनकर रहेगा, जब तक योग अफसरों की फील्ड में पोस्टिंग नहीं होगी, ऐसी घटनाएं पर रोकथाम बिल्कुल नहीं होगी।
0: दूसरी ओर सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है और अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जा रही है।
3: राम मंदिर में चंदा लूट लिया इन लोगों ने, SIT का गठन करके लीपापोती हो रहा है। गिरफ्तार कौन हो रहे हैं? तो ड्राइवर, तो चौकीदार और जो बड़े बड़े भाजपा नेता उसमें शामिल है, वो गिरफ्तार क्यों नहीं हो गए? झारखंड में दुर्घटना हुआ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन आज दिवंगत परिवार को संतुष्टि मिला होगा कि कार्रवाई सिर्फ सिपाही और दरोगा पर नहीं, IPS अफसर, सीनियर SP जो वहाँ, उन पर कार्रवाई होगी।
0: रामगढ़ थाना क्षेत्र की चुट्टू बालू घाटी में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां एक दर्जन से अधिक गाड़ियां आपस में टकरा गई। राहत की बात है कि हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जानकारी के अनुसार लोहे के चक्के लदे एक अनियंत्रित ट्रेलर का ब्रेक फेल हो गया, जिससे आगे चल रही कई कारों और मोटरसाइकिलों को रौंद दिया। इस दुर्घटना में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए रामगढ़ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस बल मौके पर मौजूद है और राहत कार्य तेजी से जारी है। राजधानी रांची के सभी यातायात थाना क्षेत्रों में नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ एक महीने का विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। यातायात पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 1 जून से 30 जून तक चलाए गए इस सघन चेकिंग अभियान के दौरान कुल 1,24,144 चालान काटे गए। इसके अलावा गंभीर उल्लंघनों को लेकर कुल 831 मामलों को अभियोजन के लिए माननीय न्यायालय भेज दिया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। दिन के 3 बजे हैं प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। नए महीने जुलाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका कार्यक्रम उमंग में। आइए शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ, जिसे हमें भेजा है आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है।
0: धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से। जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास और धनवंतीन बाई जी का। लिखते हैं, जय जोहार बंदगी विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। आगे लिखते हैं,
2: उमंग टीम को बधाई जी। उमंग कार्यक्रम में 3 जून 2026 को पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के पर्यावरण के प्रति लगाव वाली कहानी ने दिल छू लिया। हमें बहुत प्रेरणा और सीख मिली। आपने बहुत प्रेरणादायक और रियल स्टोरी सुनाई। धन्यवाद साहेब।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से। अजय देवता मुरिया, तुषार देवता मुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नीलिमा अजीम।
0: और पुणे से सुयोग बटवे।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
0: स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं विभिन्न खनिज पदार्थों की, और इस क्रम में हमने कल चर्चा की थी कोयले की, जिसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो अजीत जी, आज की चर्चा का विषय तो बताइए, किस खनिज की हम चर्चा करने जा रहे हैं? श्रोताओं की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है।
0: उत्सुकता तो बढ़ेगी ही, क्योंकि हमारा कार्यक्रम होता ही है मजेदार और जानकारियों से भरपूर। पता है, कुछ श्रोता तो रेडियो सुनते समय कागज कलम लेकर बैठते हैं, और कुछ तो पूरा कार्यक्रम भी रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि कोई जानकारी न छूट जाए।
2: हम सभी सुधीर श्रोताओं को धन्यवाद देते हैं। तो क्या रहेगा आज हमारी चर्चा का विषय?
0: चलिए मैं कुछ हिंट देता हूँ। श्रोताओं जरा अंदाजा लगाइए, हिंट है ये बहुत ही लोकप्रिय धातु है
2: जी,
0: मूल्यवान भी है। रंग इसका सुनहरा पीला है, सभी इसे बहुत चाहते हैं।
2: अजीत जी, वैसे तो और भी कई धातुएं मूल्यवान हैं, लेकिन यदि हिंट है कि ये पीले रंग का है और बहुत लोकप्रिय है, तो बात स्पष्ट हो गई है। कहीं आप गोल्ड या सोने की बात तो नहीं कर रहे हैं?
0: बिल्कुल सही है उत्तर आपका। जी हाँ, मैं सोने या गोल्ड की बात कर रहा हूँ। वैसे इसमें कुछ धातुएं मिला दी जाएं तो इसका रंग बदल भी सकता है। सोना पृथ्वी के बहुमूल्य खनिजों में से एक गिना जाता है
2: जी।
0: तो विमलेश जी, अब जानते हैं कि सोना बनता कैसे है?
2: अजीत जी, बेशक ये पृथ्वी के मूल्यवान खनिजों में से एक है, लेकिन एक बेहद रोचक और आश्चर्यजनक बात बता दूं कि कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं।
0: कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं। ये क्या बात हुई?
2: यही तो खास बात है अजीत जी। सोने की उत्पत्ति की कहानी धरती से नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में तारों की भीषण टक्कर और विस्फोट से हुई है। सोने की उत्पत्ति अरबों साल पहले सुपरनोवा यानी विशाल तारे के फटने और न्यूट्रॉन तारों की टक्कर से हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष से विशाल तारों और उल्कापिंडों की टक्कर के कारण उत्पन्न धूल से सोना पृथ्वी पर पहुंचा है।
0: तो ये बात है, शायद इसीलिए सोने और चांदी को स्टार डस्ट भी कहते हैं
2: जी।
0: जब ब्रह्मांड में कोई विशाल तारा या सुपरनोवा अपना जीवन चक्र पूरा करता है ना, तो भयंकर विस्फोट के साथ फट जाता है, और इस प्रक्रिया में अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव पैदा होता है।
2: जब कोई तारा फटता है और दबाव और गर्मी इतनी अधिक हो जाती है कि हल्के तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर भारी परमाणु बनाने लगते हैं, इसमें एक नया तत्व बनता है जिसे हम सोना कहते हैं।
0: लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है। अब वो ये है कि यदि सोना अंतरिक्ष में पैदा हुआ या उत्पन्न हुआ, तो वो पृथ्वी तक पहुंचा कैसे?
2: ये जानना भी बहुत रोचक है। सोना पृथ्वी पर अंतरिक्ष से मुख्य रूप से तारों के टूटने और उल्कापिंडों की भारी बौछार मीटेराइट बॉम्बार्डमेंट के जरिए पहुँचा है।
0: इसी बात को चलिए थोड़ा विस्तार और देते हैं। लगभग 4 अरब साल पहले अंतरिक्ष से सोने और अन्य कीमती धातुओं से भरे लाखों विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए। इस भीषण बौछार के कारण उल्कापिंडों में मौजूद सोना पृथ्वी की ऊपरी परत में बिखर गया। आज हम जो भी सोना खदानों से निकालते हैं, वह इसी अंतरिक्षीय बारिश की देन है।
2: जी, सोना पृथ्वी की ऊपरी परत पर बिखर गया, लेकिन धीरे धीरे उस पर भी मिट्टी और चट्टानों की परतें जमने लगीं, और सोना पृथ्वी की गहराइयों में चला गया। उसी सोने को अब हम खदानों से खोद कर निकालते हैं। अब सोने को ठोस रूप देने के लिए उसमें कई धातुएं भी मिलाई जाती हैं।
0: जी, सच्चाई ये है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सोना मानव सभ्यता के प्रारंभ होने से भी अरबों वर्ष पहले बन चुका था।
2: अजीत जी, सचमुच बड़ी अद्भुत कहानी है ना सोने की। एक और रोचक बात साझा करना चाहती हूँ। पता है श्रोताओं, सोने को किसी भी रासायनिक विधि द्वारा पृथ्वी पर नहीं बनाया जा सकता। रसायन शास्त्रियों ने, जिन्हें एल्केमिस्ट कहा जाता है, शताब्दियों तक लोहे, तांबे और पारे जैसी सस्ती धातुओं को सोने में बदलने की कोशिश की थी, लेकिन वे हमेशा असफल रहे, क्योंकि रासायनिक रूप से किसी धातु को सोने में बदलना असंभव है। मान्यता ये है कि प्राचीन काल में भारत में एक पत्थर पाया जाता था जिसे पारस पत्थर कहते थे। इसके स्पर्श मात्र से लोहा सोने में बदल जाता था।
0: जी, लेकिन अब आधुनिक विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि आज के समय में परमाणु रिएक्टर के जरिए वैज्ञानिक कुछ धातुओं से सोना बना सकते हैं। लेकिन इस वैज्ञानिक प्रक्रिया में इतनी अधिक ऊर्जा और पैसा खर्च होता है कि 100 रुपए का सोना बनाने में लाखों रुपए लग सकते हैं।
2: एक बात और, शुद्ध सोना बहुत नरम होता है, इसीलिए उसे आकार देने के लिए उसमें तांबा, चांदी, जस्ता और निकेल जैसी धातुएं भी मिलाई जाती हैं। लेकिन एक बात तो है,
0: और वो ये है श्रोताओं कि जब आप सोना या स्वर्ण आभूषण देखते हैं तो याद रखिए, ये मूल रूप से पृथ्वी की वस्तु नहीं लेकिन अरबों वर्ष पहले हुई ब्रह्मांडीय घटनाओं का परिणाम है। इसीलिए ये बहुत कीमती मानी जाती है। दूसरे शब्दों में,
2: आपके हाथ के सोने की अंगूठी कभी किसी तारे के फटने या किसी महाविस्फोट का हिस्सा रही होगी।
0: जी, तो श्रोताओं ये थी जानकारी अंतरिक्ष की मूल्यवान वस्तु सोने की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं?
0: आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल पर भी। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो करना ना भूलिए। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की,
0: तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, अरावली की कहानी।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला की रोचक जानकारी दी गई है और बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण में इस पर्वतमाला की क्या भूमिका है।
0: अरावली की कहानी।
3: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी, यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र।

0: यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
1: यस मैम।
0: हाँ, क्या बात है
2: मैम?
0: हाँ बेटी,
2: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
0: बिल्कुल कहा।
2: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
0: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
2: जी पहाड़ी।
3: अरे वाह, अच्छा लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
0: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों जानना है ना इसके बारे में?
1: यस मैम।
0: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
1: अच्छा।
0: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
1: अच्छा।
0: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
2: मैंने भी देखा है।
3: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
4: मैम अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
0: बिल्कुल जरूर बताएंगे। आप जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
5: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
0: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
1: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
3: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
0: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
2: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
3: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
0: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
5: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
0: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
1: सॉइल इरोजन,
0: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, शेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं जो राजस्थान में ही हैं।
3: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
0: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
1: जी मैम।
2: यस मैम।
0: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
2: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
0: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
5: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं। क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
0: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती

0: क्यों, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नील गाय, सांबर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
1: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
1: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है। अब जैसे जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
2: जी मैम।
1: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
2: बहुत अच्छी लगी।
1: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का यह अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। तो डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
2: धन्यवाद,
3: धन्यवाद मैम।
4: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
1: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है बांगुई।
5: ये कार्यक्रम अफ्रीका की एक लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा संदेश दिया गया है कि पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम एक सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: अफ्रीका महाद्वीप का नाम तो आपने सुना होगा। उसके पश्चिमी हिस्से में एक छोटा सा देश है घाना। विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा के निकट होने के बावजूद घाना में सूखे की नहीं बाढ़ की समस्या प्रबल रहती है। कई छोटी बड़ी नदियां इस देश से होकर बहती हैं और इसे हरा भरा बनाए रखती है, लेकिन अक्सर इन नदियों में बाढ़ आ जाती है और गांव के गांव डूब जाते हैं। आज सुनते हैं व्हाइट वोल्टा नदी के किनारे बसे एक ऐसे ही गांव के आदिवासियों की कहानी।
1: नमस्कार भाई। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अभी तो खेत में काम करने का समय नहीं हुआ।
2: अरे आज खेतों में नहीं, जंगल में काम करने जा रहा हूँ। ये देखो कुल्हाड़ी।
1: अरे ये क्या, फल वाले हाथ में कुल्हाड़ी, लकड़ी काटने जा रहे हो? क्या नया घर बना रहे हो?
2: हाँ भैया, नया घर तो बन रहा है, लेकिन मेरा नहीं। अपने मुखिया बांगुई है ना, वही अपना नया घर बनवा रहे हैं।
1: मुखिया बांगुई का नया घर? लेकिन अभी कुछ ही बरस पहले तो उन्होंने नया घर बनवाया था।
2: तो क्या हुआ, उन्हें अपना वो नया घर अब पुराना और छोटा लगने लगा है। दरअसल जंगल की लकड़ी बेच बेच कर रईस हो गए हैं ना, सो अपनी रईसी की शान दिखाने के लिए फिर नया मकान बनवा रहे हैं।
1: अच्छा तो ये बात है, मुखिया बांगुई ने ही पैसे के लालच में शहर के लोगों को जंगल से लकड़ी काटने की अनुमति दी है। तभी मैं कहूँ कि जंगल से आजकल दिन रात लकड़ी काटने की आवाज क्यों आती है? इस तरह तो जंगल के सारे पेड़ कट जाएंगे।
2: अरे और नहीं तो क्या, जंगल से जिस तरह से ये शहरी लोग दिन रात लकड़ी काट रहे हैं ना, देखना थोड़े दिनों में सारा जंगल साफ हो जाएगा। अरे जंगली जानवर गांव पर हमला करेंगे, नदी की धारा जंगल की रुकावट ना पाकर गांव की तरफ बढ़ने लगेगी।
1: और ये सब जानकर भी तुम कुल्हाड़ी लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ भैया, और क्या करूं, मेरे पास खेत तो है नहीं। मुखिया बानगुई के खेतों में काम करता था, लेकिन उन्हें अब खेती बाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्हें जंगल की कटाई से काफी पैसे मिल जाते हैं ना, बाल बच्चों का पेट पालने के लिए मैंने भी लकड़ी काटना शुरू कर दिया है भैया। फिर शहर के लोग लकड़ी काटने की मजूरी भी अच्छी देते हैं।
1: पर तुम तो मुखिया के मकान के लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ, मुखिया का ये नया मकान शहरी लोग ही बनवा रहे हैं ना। मुखिया ने उन्हें जंगल से लकड़ी काटने की आज्ञा दी है, इसलिए वो लोग उन्हें ऊंची वाली चट्टान पर एक बहुत बड़ा तिमंजिला मकान बना कर दे रहे हैं।
1: तिमंजिला मकान? वो तो बहुत ऊंचा होगा।
2: हाँ, हमारे तीन मकान एक के ऊपर एक रख दिए जाए, इतना ऊंचा होगा।
1: लेकिन ये मकान नदी के इतने नजदीक क्यों बनवा रहे हैं? अगर नदी में बाढ़ आ गई तो?
2: अरे भैया, बाढ़ आती है तो तबाही हमारे कच्चे झोंपड़ों की होती है ना। ऊंची चट्टान पर बने तिमंजिले मकान पर बाढ़ का क्या असर होगा भला? फिर हमें से क्या भैया, हमें तो अपनी मजूरी से मतलब है। अच्छा चलता हूँ, बड़ी देर हो गई।
1: अच्छा भाई मैं भी चलता हूँ।
2: कहाँ बड़े चले आ रहे हो? अरे जानते नहीं ये मुखिया बानगुई का मकान है?
3: जानते हैं भाई जानते हैं, तभी तो अपनी फरियाद लेकर यहाँ आए हैं।
2: मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से। इस समय कोई फरियाद नहीं सुनी जाएगी। अभी मुखिया जी बांसुरी बजा रहे हैं, और जब वो बांसुरी बजा रहे हो तब उन्हें तंग करने का हुक्म नहीं है।
3: लेकिन अगर मुखिया जी हमारी फरियाद नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे भैया?
2: अच्छा भाई बोलो क्या बात है, बोलो।
3: मैं बोलू? अच्छा देखो भैया, तुम भी तो हम ही में से एक हो, गांव की हालत तुमसे छुपी नहीं है। मुखिया जी के सारे खेत खाली पड़े हैं, उनमें काम करने वाले मजदूर बेकार हो गए हैं। जिनके पास थोड़ी बहुत अपनी जमीन थी जहाँ खेती करके थोड़ा अनाज हो जाता था, उन सारे खेतों में बाढ़ का पानी भर गया है भैया। बारिश के मौसम में लकड़ी की कटाई का काम भी बंद हो गया है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं भैया, इसीलिए हम मुखिया जी के पास आए हैं।
1: अरे तो इसमें मुखिया जी क्या कर सकते हैं?
4: सुना है मुखिया जी के मकान के एक पूरे खंड में अनाज भरा है, अगर इस संकट के समय हम गरीबों को भी एक एक मुट्ठी अनाज मिल जाता तो।
1: अच्छा, और मुखिया जी क्या फाके करे, मैं कहता हूँ भाग जाओ, भाग जाओ यहाँ से।
0: एक बार की बात है, उस इलाके में मूसलाधार वर्षा हुई और लगभग 4 दिनों तक चलती रही।
1: मुखिया जी, मुखिया जी!
5: बदतमीज, ऐसे क्या चिल्ला रहे हो?
1: माफ कीजिएगा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि।
5: ओ, आप कुछ बोलो भी, क्या हुआ है?
1: गांव में चारों तरफ पानी भर गया है।
5: तो भरने दो।
1: गांव के सभी लोग, औरतें, बच्चे और मर्द गांव छोड़कर जा रहे हैं।
5: अरे तो जाने दो।
1: लेकिन मुखिया जी, इस मकान के चारों तरफ भी पानी पानी है, अगर हम निकल कर जाना भी चाहें तो भी नहीं जा सकते।
5: अरे बेवकूफ, हम यहाँ से जाएंगे ही क्यों? इस ऊंची चट्टान पर बने 3 मंजिले मकान में पानी आएगा कैसे? हमारे पास यहाँ क्या कमी है? अरे खाना है, पानी है और ये हमारी बांसुरी भी है।
1: लेकिन मुखिया जी,
5: वो तुमसे कितनी बार कहा है कि जब हम बांसुरी बजा रहे हो तो हमें परेशान मत किया करो।
1: जी मगर
5: जाओ, चले जाओ यहाँ से। अब क्या है?
6: नीचे वाली मंजिल में बहुत पानी आ गया है।
5: तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, सब चीजें दूसरी मंजिल पर ले जाओ, और हम 3री मंजिल पर जा रहे हैं।
4: मुखिया जी,
5: चैन नहीं लेने देंगे। अब क्या है
4: जी? वो दूसरी मंजिल पर भी पानी
5: चढ़ रहा है। अरे तो 3री मंजिल किस लिए है? देखो, सब सामान ऊपर ले जाओ, हम छत पर जा रहे हैं।
4: माफ कीजिएगा मुखिया जी, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। बूढ़ा कालू कह रहा है कि ये साधारण बाढ़ नहीं है, बल्कि नदी ने अपनी धारा बदल दी। अब नदी इसी जगह से बहेगी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। हम लोगों ने लकड़ी के तख्ते जोड़ जोड़ कर एक नाव तैयार की है, हम तो जा रहे हैं, आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं।
5: नालायक, डरपोक, अरे भाग रहे हो? इस महल को छोड़कर भाग रहे हो? जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ तुम लोग, मैं यहीं रहूंगा।
4: जैसी आपकी मर्जी।
5: अरे ये तो सचमुच चला गया, कहीं वो बूढ़ा कालू ठीक ही तो नहीं कह रहा? क्या नदी ने सचमुच अपनी धारा बदल दी है? छत से देखता हूं मैं। ये कैसा भयानक दृश्य है, दूर दूर तक जहां नजर जाती है पानी ही पानी, कहीं कोई नहीं, ना कोई आदमी, ना जानवर, ना खेत, ना जंगल। अगर मेरे इस मकान की 3री मंजिल में पानी में डूब गई तो ये क्या? अरे ये क्या हो रहा है? नहीं, ये इतना मजबूत मकान भी गिर रहा। हे भगवान, मैं क्या करूं? अरे कहां जाऊं मैं? ये पानी में डूब रहा हूं मैं। कोई पेड़ अब भी अपनी मजबूत जड़ें धरती पर धंसाए बैठा है। अगर किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं तो मेरी जान बच सकती है। हाँ, मैं उसे पकड़ूंगा किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं। लेकिन ये पानी तो मुझे दूसरी तरफ बाहर ले जा रहा है। आखिर पहुंच ही गया।
7: यहाँ तो इस तरह के कितने ही पेड़ थे जो मैंने कटवा दिए, लेकिन ना जाने यही एक इकलौता पेड़ मुझे शरण देने के लिए कैसे बच गया। शायद मेरी आंखें खोलने के लिए, हाँ, शायद मेरी आंखें खोलने के लिए

0: बांगुई। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे रांची मेलोडीज़।

अभी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में फिल्म परवरिश का ये गीत, जिसे लिखा था हसरत जयपुरी ने और संगीत से सजाया था दत्ताराम वाडकर ने। अब आइए सुनते हैं फिल्म कश्मीर की कली का ये गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। इसे संगीत से सजाया है ओपी नैयर ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दूर गगन की छांव में से, जिसे गाया है किशोर कुमार ने, लिखा है शैलेंद्र ने।

और अब आइए सुनते हैं फिल्म किस्मत का ये गीत, SH बिहारी का लिखा हुआ। ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में इसे गाया है आशा भोसले और शमशाद बेगम ने।

0: के लिए भी बेहतर होगा। तो समेकित कीट प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम जो देख रेख कर सके अपनी खेत का, बुआई से लेकर जो कटाई है उस पर पूरी निगरानी रख सके ताकि कोई कीड़े मकोड़े उनको क्षति ना पहुंचाए। दूसरी हमारे
1: उद्देश्य है किसान भाई बहनों, अभी आप जानकारी ले रहे थे समेकित कीट प्रबंधन के बारे में और इस विषय पर जानकारी दे रही थी कुमुद रानी त्यू। और इस जानकारी के साथ ही आज का हमारा खेती गृहस्थी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम से कोमल नायक को देविदा, जोहार।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 के तहत वॉलंटियर्स और शिक्षकों की तैनाती केवल BLO को सहयोग देने के लिए की गई है। उनका मुख्य उद्देश्य पात्र नागरिकों को मतदाता सूची से जोड़ना है। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष सतीश पॉल मुंजनी ने चुनाव आयोग से राज्य के करीब 47 लाख अनमैप्ड और ASTD सूची वाले मतदाताओं का विवरण तत्काल सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आयोग इन सूचियों को अपनी वेबसाइट और प्रत्येक मतदान केंद्र पर प्रदर्शित करे। रामगढ़ पुलिस ने मांडू के सब रजिस्ट्रार बालेश्वर पटेल हत्याकांड में त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक मुकेश लोनायत ने बताया कि ये वारदात 11 डिसमिल जमीन के आपसी विवाद को लेकर हुई थी। पूर्व सब रजिस्ट्रार बालेश्वर पटेल की हत्या के विरोध में आज धनबाद जिला निबंधन कार्यालय का कामकाज पूरी तरह ठप रहा। निबंधन कर्मियों ने दिवंगत अधिकारी को श्रद्धांजलि देते हुए अपराधियों की त्वरित गिरफ्तारी और सुरक्षा की मांग की। रांची पुलिस ने आम जनता की शिकायतों के त्वरित निष्पादन के लिए सभी थानों में साप्ताहिक जन शिकायत समाधान शिविर की शुरुआत की है। वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के निर्देश पर यह कार्यक्रम अब प्रत्येक बुधवार को आयोजित किया जाएगा। पाकुड़ सदर प्रखंड कार्यालय में आज लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एक विशेष कैंप का आयोजन किया गया। कैंप के दौरान कुल 60 लोगों ने अपने आवेदन जमा किए। दस्तावेजों की गहन जांच के बाद 32 चालकों को मौके पर ही लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत किए गए। रामगढ़ के DDC आशीष अग्रवाल ने आज प्रोजेक्ट इंपैक्ट NEP पखवाड़ा के तहत 2 CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने गांधी मेमोरियल जिला स्कूल और बालिका स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पहुंचकर विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा की। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

नया आकाशवाणी रिया चाहे भाषा केंद्र तना एफएम रिया 101.7 मेगाहर्ट्ज़ रबन आई तना ना आई पेंग छः बजाय नहीं तो 2 मिनट हो बस।

0: ikan labon do lapak ekonomi en sambanda cike juar
1: juar ga
0: ando tising aben ta nagiling uju kena aben e ko cilike ko ana ko inaite ando abu chicken lab chi lapak ekonomi en sambandre chi bisay re juka nang ben jagar tar do eso padinge jagar ayarta abena uprum chi parichay juka jagar ta aben
1: cha jagar ayaraite aling parichay aling jagar abue aling hatu biletne ono nutum taling kateram laguri parkand goilkera ado paschim simbum tanabue
0: acha tigya ndado aben nen eko chilikebo anakua enria juka jagar leven
1: en darure anakoten eko jese abu bakra darure bu jankua inaite isa darure bu jankua ando lua darure bu jankua ondo baru darue bujan kua iman iman esu pure eko to mina kue endo aling na bakara darure jan koten ekoria barere kuchpu jagara olingi
0: acha maro ya
1: ti eko abunen july august maine bij rupte jo ko online de jo chidu ko mina kue tolakan ten ko aite
0: iya
1: eko ko tolakan acha
0: ha ha
1: एन तोला कना इते जो चीदू उनको ला एन चीदू को एन बकरा दारुरे जो एन ये तोला कन को एमता को एन ऑल तन समय रे रे एमता कर दो को जानो को
0: अच्छा अच्छा सब या एन दो चिलके एन दो मा को ते बाओ छि चिलके एन चीदू को ना बन का जीतन को
1: या एन ओकन दारुरे को तोला कना इना माने पूंजी या तो बीज रूप ते उपयोग होते अनतित एन दारू समेत इना टुकड़े केते इना तोल बुजा के कोइते एन दारू रे जान कोतिया
0: अच्छा अच्छा अच्छा एन रे एम तकोतिया या तोल तकोतिया एन देन
1: ओ एन जैसे जैसे को ओला इन इते एन चिदु को एन दारू रे को जापान को जापान ओइते को सुए सुए ते को मारांग वा को इनका इनकाते ना जैसे इनाओ अबु जैसे दागा मरिया को प्रॉब्लम मिना एन रे
0: या या
1: ओकन समय पूरे बिजली ये इनकन समय करे कुछ को नष्ट हो अको असला आड़ा उड़ू ये गड़ा उड़ू ये एंड तो बिजली कड़कावा ये रदो एने को शॉर्ट हो अको
0: अच्छा अच्छा एंड को गासरो लिखा
1: कर या या गासरो लिखा कर क्यों हुआ इने इतने ना वर्षी जो टावर को मिना इन तेरे को कुछ नुकसान को हुआ उतना
0: अच्छा अच्छा अच्छा नेको तो बकरा है कोरिया तो बन जगर के डा इन्हें तो उन्हों चिकन चिकन दारू करे नेको बुगिते या नेके बुगिल का दुको तलोवा
1: बारू दारू रे को तलोवा इन्हें इते अबू मुरुद दारू बुमेनिया
0: या या
1: एंडेयो को तलोवा एंड बराबर के को तलोवा बारू है को जैसे को तलो एंड का को तलोवा मुरुद दारू यो इन्हें इते उन्हों में ये दारू मिना ना अबू ने ना हाथू करे जो ना विदेशी दारू ची चिलकेन दारू जो इट्टी पोसार ये पोटास बो मिता
0: हाँ
1: एंड रोड कुटी करे को रुआ या
0: या या
1: ते एंड दारू रियो को जानू मको
0: अच्छा अच्छा अच्छा ने को एंड दो निमिन पूरे प्रकार या दारू बन जगर के डा एंड दो आपन ना निंतारे अबेनो तुरंत बन अनातन की आनो इना मंते के को कजिनुआ लिंग रहता अबेन तालिंग हो जो ये ने नंद्रिया जो रूप निमिन पूरे बन कज के दा अबेन नंद्रिया जानकारी बढ़िया के मिना मंते है ओकुन दारुरन एको मने गोनों रहतो पूरे सभीन को ऐते बुकिन नम
1: इनका तो ना आ सबसे पूरे ऊंचा रेट ची ये मारांग गोनों ताकरिंग को तो बारु है को
0: बारु है को
1: या बारु रे जो को तोलो आए ने को मारांग मारांग को तोलो आ को तो एने को आ चिकेची ने को आ दो ओजन ते को आ करिंग हो चा
0: या या
1: एंड ओजन ने को मोटा जब मिना करो देन को आ ओजन नुबा हुआ
0: हाँ
1: ते अधिकतर ने क्षेत्र रे जो बारु दारु को मिना चिकेची निना जो को बुरु इलाका था ना
0: हाँ
1: तो बुरु इलाका नो तन रे तो बारु दारु को असल मिना एंड एन बारु दारु को रेगले जान को आ तो प्रत्येक साल जैसे मौसम साथे एमिया गामा कोरिया को बिजली कोरिया को एन दो बढ़िया मौसम एम कह रहे दो ऐसे बढ़िया को तो लो उतना और प्रत्येक साल मने लाखों रुपये रिया पैदा हो बनते ना
0: नन रहे
1: ओ
0: एन रहे दो अबेन नन कोरिया अबेन जगर के डर निमिन बढ़िया है अंडो लाभ हो ची पैदा नन रहे ते लाखों रुपये रिया अबेन मने था नन एको जब वो जन को हा इटादर एन रहे दो एन ऑल चबाए ना को चिदु को एन दो एनको कुछ को आकरिंग हुआ चेन को तो चिल के को था
1: हो एना कोका को मिता जैसे एन ऑल यंत्र आदो को कोका एन दो नेन कोका ओ मने इना मने एन गनुए इते हल्का चुको ए कम गनुंग ते को आकरिंग हुआ इना
0: ओ एनको को आकरिंग
1: एनको को आकरिंग हुआ को

0: सभी बहनों को बसंती का जोहार, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम मनोरमा में। उम्मीद है बहनों इस समय आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। और बहनों, बरसात के मौसम में तो हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक सचेत रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस मौसम में नमी और उमस के कारण बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है और साथ ही स्किन की समस्याएं भी साथ लेकर आता है। मौसम में उमस बढ़ने से बॉडी में कई तरह की परेशानियां होने लगती है और इस मौसम में महिलाओं को पीरियड्स के दौरान ज़्यादा परेशानी होती है। इसलिए इस दौरान सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। तो बहनों, इसी सिलसिले में आज हम चर्चा के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे कि बरसात के मौसम में सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि हम सुरक्षित रहें। बहनों, सबसे पहले तो हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि पीरियड के दौरान इन्फेक्शन से बचने के लिए सही हाइजीन को फॉलो करना है। इस मौसम में महिलाओं को वजाइनल इन्फेक्शन जैसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, प्रजनन पथ का संक्रमण और विभिन्न प्रकार के ईस्ट संक्रमणों के बढ़ने का जोखिम बढ़ जाता है और इस दौरान हम सही हाइजीन को फॉलो नहीं करते हैं तो कई तरह की समस्याएँ हो सकती हैं। तो इस दौरान हम ये सावधानियाँ कर सकते हैं, जैसे हमें बार बार पैड को बदलते रहना चाहिए हर 3-4 घंटे में, चाहे फ्लो कम हो या ज़्यादा, फिर भी बदलते रहना चाहिए। वजाइना को साफ और सूखा रखें। बारिश के दौरान नमी में बढ़ोतरी होने से वजाइना में पीएच स्तर कम हो जाता है, जिससे महिलाओं को वजाइनल इन्फेक्शन हो जाते हैं। इसलिए साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। पैड का इस्तेमाल करने के बाद सही जगह पर रखें, बाथरूम या नमी वाली जगहों पर ना रखें। नमी से पैड में बैक्टीरिया पनप सकते हैं, इसलिए इसे सही तरीके से डिस्पोज करें। इस्तेमाल किए गए पैड को पेपर या पॉलीथीन में अच्छी तरह लपेटकर कूड़ेदान में डालें। खुले में फेंकने से बैक्टीरिया फैल सकते हैं, खुद को सूखा रखना जरूरी है। पैड बदलने के बाद उस हिस्से को अच्छी तरह पोंछकर सुखा लें। नमी रहने से रैशेज और खुजली की समस्या हो सकती है और हमेशा सूती अंडरगारमेंट्स का ही इस्तेमाल करें। सिंथेटिक कपड़े नमी और गर्मी को रोकते हैं, जिससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। और एक बात है कि जब भी आप वजाइना को साफ करें तो हमेशा सादे पानी का ही इस्तेमाल करें। खुशबूदार साबुन या केमिकल वाले इंटीमेंट वॉश के इस्तेमाल से बचें, क्योंकि ये प्राकृतिक सुरक्षा को नुकसान पहुँचाते हैं। तो बहनों, इस तरह से यदि हम थोड़ी सावधानियाँ रखें तो फंगल इन्फेक्शन जैसी समस्याओं से हम बचे रह सकते हैं। तो बहनों, इस जानकारी के बाद आइए अब हम सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: बहनों, इस संदेश के बाद आइए अब हम मनोरंजन करते हैं इस गीत से।

0: श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे कयामत से कयामत तक फिल्म के गीत से, और इस गीत के गायक कलाकार थे उदित नारायण और अलका याग्निक। इस गीत के बाद आइए अब हम सुनते हैं एक और जरूरी संदेश।
1: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: आले नवागे नेहर में ना बले नवा नुकान परिस्थिति रे बले सब उड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे ना कागे आम बले रुड़ तबन में

0: परिवार से मतलब पूरा ये है ना।
1: मोर नाम मंगल राय को गाँव बड़गड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आऊ का कहा बना है वो लोग आऊ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
2: नाम है रनबला देवी गाँव बारे हतो तो घर आई में हमारे घर बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जा है
3: नितुम बुरन सिंह तामसाय अनिता तामसाय भरूपा सेना करना ऐसे दुखुर मिना जापा में रिया तपा में रिया वा बेटा मिका
4: अन्या नितुम दो बुंबई कोड़ा पटन नितुम गुंडे कोड़ा अन्या हम दो कोदमरी कोड़ा रो पटन पटन नितुम कितने ही कोड़ा मुनी में बुरी ने बागिया तो कि दुना से आरती कोलो पुलिस कोलो में लड़ाई चलाओ तमे बुरुरम गोयां दबो जाय तेरे काका गुंगो उन्हें बुकोको काको मेल मिया
5: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
6: बहनों, अभी आप सुन रहे थे कुछ जरूरी संदेश। इन जरूरी संदेश के बाद आइए अब हम सुनते हैं सूजी पीठा रेसिपी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे वार्ता के माध्यम से, और इस विषय पर जानकारी दे रही हैं पिंकी हिस्सा। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता।
7: जोहार, मैं पिंकी हिस्सा आज आप लोगों के साथ सूजी का पिट्ठा किस तरह से बनाया जाए उसको मैं शेयर करना चाहती हूँ। और मेरे तरफ से आप सभी सुनने वाले श्रोताओं को बहुत बहुत हार्दिक जोहार। हमारे देश में अगर हम पारंपरिक पकवान की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आता है पिट्ठा। पिट्ठा का अपना एक अलग और ख़ास स्थान है और इसे काफ़ी पसंद किया जाता है और इसे त्योहारों या ख़ास मौक़ों पर ज़रूर बनाया जाता है। आमतौर पर पीठा चावल के आटे से बनता है, लेकिन अगर आप इसे और भी ज़्यादा हल्का और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो सूजी से बना पीठा बहुत ही अच्छा होता है। ये ख़ास पकवान खाने में तो स्वादिष्ट होता ही है, साथ ही आसानी से पच भी जाता है। सूजी और चना दाल की भरावन से तैयार यह पीठा बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि। तो सूजी बनाने के लिए, सूजी की पीठा बनाने के लिए हम कुछ आवश्यक सामग्री लेंगे, जैसे कि सूजी 2 कप, पानी 2 कप, नमक स्वाद अनुसार, तेल 2 बड़े चम्मच, चना दाल 1/2 कप भिगोकर पीसी हुई, अदरक 1 छोटा टुकड़ा कद्दूकस किया हुआ, हरी मिर्च 2 बारीक कटी हुई, हींग 1 चुटकी,

0: जीरा आधा छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर एक चौथाई छोटा चम्मच, धनिया पाउडर एक छोटा चम्मच, हरा धनिया एक बड़ा चम्मच कटा हुआ। तो आइए अब हम पीठा बनाने की विधि शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में पानी को उबालें और इसमें नमक और थोड़ा तेल डालें। श्रोताओं इसे ध्यान से आप सुनेंगे। जब पानी उबलने लगे तो उसमें धीरे धीरे सूजी डालते जाइए और लगातार चलाते रहें। तो ध्यान रहे पानी जब उबले तभी हमें सूजी डालना है और इसे हम सूजी डालते जाएंगे और लगातार इसे चलाते रहेंगे ताकि इसमें गांठ ना पड़े और इसे गाढ़ा होने तक पकाएं। और जब ये गाढ़ा हो जाए तो फिर आंच को बंद कर दें, फिर इसे ठंडा होने के लिए रख दें। अब एक पैन में तेल गरम करें और उसमें जीरा और हींग डालें। इसके बाद अदरक, हरी मिर्च और हल्दी और धनिया पाउडर के मसाले डालकर भूनें। इसके बाद भीगी और पिसी हुई चना दाल डालें। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाएं और कुछ देर भूनने के बाद गैस को बंद कर दें और ऊपर से हरा धनिया डाल दें। तो इस तरह से हमारा भरावन तैयार है। इसके बाद अब ठंडी हुई सूजी के आटे की छोटी छोटी लोई बनाएं और लोई को थोड़ा सा बेल लें ताकि उसमें भरावन अच्छी तरह से भर सके। भरने के बाद अब इसे अच्छे से बंद करें, पीठे का शेप दे दें। इसी तरह सभी लोइयों को पीठे का आकार दें। अब इन पीठों को स्टीम के लिए 10 से 12 मिनट तक रख दें और भाप में पकाएं। आप अगर चाहें तो इन्हें हल्का सा तेल लगाकर तवे पर भी सेक सकते हैं। तो इस तरह से सूजी का पीठा बनकर तैयार है। और गर्मा गर्म सूजी पीठा को हल्की चटनी, हरी धनिया चटनी के साथ या इमली की चटनी के साथ परोस सकते हैं। ये खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं और ये कम से कम तेल में बनता है, जो काफ़ी हल्का और हेल्दी भी होता है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो घर पर ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए, आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। इसी उम्मीद के साथ आप सभी को धन्यवाद और जोहार।
1: बहनों, अभी आप वार्ता के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर रहे थे सूजी पीठा रेसिपी के बारे में। और इस रेसिपी के बारे में पिंकी जी ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। उम्मीद है आप सभी को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो बहनों, चलिए कार्यक्रम के अंत में हम सुनते हैं ये गीत।

बहनों, इसी गीत के साथ ही आज का हमारा मनोरमा कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम में पुनः आपसे मुलाकात होगी कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बसंती को दीजिए विदा। जोहार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का कार्यक्रम मनोरमा। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:55 हुए हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए। प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड हाईकोर्ट का पारा शिक्षकों के हक में बड़ा फैसला। नियमित नियुक्ति से पहले की संविदा सेवा को भी माना जाएगा पेंशन योग्य। ब्याज सहित भुगतान का निर्देश। राज्य में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान तेज। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा BLO ऐप का संचालन किसी भी हाल में नहीं करेंगे वॉलेंटियर्स। राज्य में कृषि संकल्प अभियान के तहत उन्नत और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जिलों से रवाना हुए डिजिटल रथ। पंचायतों में होगी किसान संगोष्ठी। जमशेदपुर में करणी सेना नेता की हत्या के खिलाफ भाजपा का 3 जुलाई को बंद का आह्वान। कांग्रेस ने आरोपियों को बताया बेबुनियाद। और राज्य के 7 जिलों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट। चतरा, गढ़वा, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, लातेहार और पलामू में अगले कुछ घंटों में वज्रपात और बारिश की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड हाईकोर्ट ने पारा शिक्षकों के हक में बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि नियमित नियुक्ति से पहले संविदा के आधार पर दी गई सेवा अवधि को भी पेंशन योग्य माना जाएगा। अदालत ने 5 सेवानिवृत्त शिक्षकों की याचिका स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को 8 सप्ताह के भीतर पेंशन और अन्य लाभ 6% वार्षिक साधारण ब्याज के साथ देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पेंशन कर्मचारियों का वैधानिक अधिकार है जिससे सरकार इनकार नहीं कर सकती। राज्य में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 अभियान तेजी से जारी है। इसी कड़ी में रामगढ़ के उपायुक्त ऋतुराज ने बड़का गांव और रामगढ़ में प्रपत्र वितरण की समीक्षा करते हुए लापरवाह सुपरवाइजरों को कड़ी फटकार लगाई। उधर लोहरदगा में उपायुक्त संदीप कुमार मीणा ने आज समाहरणालय से निर्वाचन जागरूकता रथ रवाना किया और हस्ताक्षर अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि BLO घर घर जाकर प्रपत्र संग्रह कर रहे हैं। प्रपत्र जमा करने वालों के नाम ही 5 अगस्त को प्रारूप सूची में शामिल होंगे।
4: हर एक मतदाता का तो एनुमरेशन फॉर्म यानी कि गणना प्रपत्र जनरेट हुआ है। हर एक बूथ के जो BLO उनको हम लोगों ने वो गणना प्रपत्र उपलब्ध कराया है और 20 जून से लेकर के 29 जुलाई तक जो हाउस टू हाउस विजिट चलेगा उसमें जितने भी मतदाताओं का मतदाता सूची में नाम है हमारा BLO जो है 324 जो बूथ में है उसका हर BLO हर मतदाता के घर घर जाएगा।
3: इस बीच मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण में शिक्षकों और वॉलेंटियर्स की तैनाती केवल BLO के सहयोग के लिए की गई है। उन्होंने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वॉलेंटियर्स की जिम्मेदारियां स्पष्ट रखी जाए और वे किसी भी परिस्थिति में BLO ऐप का संचालन नहीं करेंगे। पूरे प्रदेश में विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत आज साहिबगंज, पाकुड़ और पलामू सहित विभिन्न जिलों से डिजिटल बिरसा कृषि जागरूकता रथ रवाना किए गए। ये रथ अगले 15 दिनों तक सभी ग्राम पंचायतों का सघन भ्रमण करेगा। अभियान के दौरान किसान संगोष्ठियों के माध्यम से खरीफ की उन्नत खेती, जैविक कृषि और सुखाड़ में वैकल्पिक खेती की जानकारी दी जाएगी। जमशेदपुर हत्याकांड के विरोध में भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने आज रांची में घोषणा की कि 2 जुलाई को जमशेदपुर में मशाल जुलूस निकाला जाएगा और 3 जुलाई को जमशेदपुर बंद रहेगा। उन्होंने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट से कराने और पीड़ित परिवार को मुआवजा व सुरक्षा देने की मांग की है।
5: पुलिस का कहना है कि जो भी दोषी है उसको गिरफ्तार करना, चाहे कोई भी कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, दोषी होगी तो कार्रवाई हम लोग करेंगी, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं। भारतीय जनता पार्टी पक्षपात की राजनीति नहीं करती है, हमेशा न्याय के रास्ते पर रखती है। जहां अन्याय होगा, कोई भी अन्याय करेगा, तो भाजपा एक पर भी पीछे हटने का काम कार्रवाई से नहीं करेगा।
3: प्रदेश कांग्रेस ने जमशेदपुर घटना को लेकर भाजपा के बंद को आह्वान के राजनीतिक अवसरवाद करार दिया है। कांग्रेस मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने भाजपा पर संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस और सरकार पर लगाए गए आरोप निराधार है। सरकार इस मामले में सख्त है और कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्सेंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्सहैंडल @AIRNewsAlerts रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देश में वस्तु और सेवा कर यानी GST लागू होने के आज 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस ऐतिहासिक कर व्यवस्था ने कर संरचना को तर्कसंगत और मानकीकृत बनाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को मजबूत किया है। इसके तहत 17 विभिन्न करों और 13 उपकरों को एकीकृत किया गया था। नए GST सुधारों ने कम दरों और आसान प्रक्रियाओं के माध्यम से कर प्रणाली को और सरल बना दिया है, जिससे परिवारों, लघु उद्योगों और किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची में फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। चैंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने नेतृत्व में हुई इस बैठक में राज्य में उद्योग, व्यापार और निवेश पर सकारात्मक चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को आगामी राज्य स्तरीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का निमंत्रण दिया। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने अपने 2 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। उन्होंने हजारीबाग और रामगढ़ जिलों में पीएम सड़क योजना, पीएम आवास और कुसुम योजना के तहत हुए विकास कार्यों की प्रगति साझा की। और साथ ही उन्होंने बरकाकाना रेलवे स्टेशन के कायाकल्प और कोडरमा रेल मार्ग के दोहरीकरण कार्य की भी जानकारी दी।
6: पुस्तक लिखा है 2 साल बेमिसाल, और वो मिसाल रहना ही है, इसलिए कि हम लोगों ने जनता के हित के लिए बहुत सारे कामों को किया। जो मेरी बेसिक जिम्मेवारी थी जो एज ए सांसद केंद्र सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करना, उस योजना के बारे में हमने अपनी पूरी बात रखी है। इसका डिजिटल वर्जन आपको वहाँ पर उपलब्ध है, इस पुस्तक के माध्यम से हम लोगों ने रखा है। आशा है कि लोग इसको जज करेंगे।

0: रांची पुलिस ने आम जनता की शिकायतों के त्वरित निष्पादन के लिए सभी थानों में साप्ताहिक जन शिकायत समाधान शिविर की शुरुआत की है। वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के निर्देश पर यह कार्यक्रम अब प्रत्येक बुधवार को आयोजित किया जाएगा। शिविर में डीएसपी स्तर के अधिकारी और थाना प्रभारी स्वयं उपस्थित रहकर जमीन विवाद, धोखाधड़ी, घरेलू हिंसा और चोरी जैसे मामलों की सुनवाई कर मौके पर ही समाधान का प्रयास किया जाएगा। रामगढ़ पुलिस ने मांडू के सब रजिस्ट्रार बालेश्वर पटेल हत्याकांड में त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक मुकेश लोनायत ने बताया कि ये वारदात 11 डिसमिल जमीन के आपसी विवाद को लेकर हुई थी।
1: घटना का संज्ञान लेते हुए स्थानीय ग्रामीणों की मदद से जो घायल व्यक्ति था उसको अस्पताल भिजवाया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल की टीम को बुलाते हुए उस घटनास्थल से पुलिस द्वारा अनुसंधान प्रारंभ वैज्ञानिक तरीके से साक्षी संकलन किया गया और अभी तक की पूछताछ में जमीन की विवाद में हत्या करने की बात सामने आई है।
0: मौसम विभाग ने चतरा, गढ़वा, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, लातेहार और पलामू जिलों के लिए अगले 1 से 3 घंटों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड हाईकोर्ट का पारा शिक्षकों के हक में बड़ा फैसला। नियमित नियुक्ति से पहले की संविदा सेवा को भी माना जाएगा पेंशन योग्य। ब्याज सहित भुगतान का निर्देश। राज्य में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान तेज। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा बीएलओ ऐप का संचालन किसी भी हाल में नहीं करेंगे वॉलंटियर्स। राज्य में कृषि संकल्प अभियान के तहत उन्नत और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जिलों से रवाना हुए डिजिटल रथ। पंचायतों में होगी किसान संगोष्ठी। जमशेदपुर में करणी सेना नेता की हत्या के खिलाफ भाजपा का 3 जुलाई को बंद का आह्वान। कांग्रेस ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। और राज्य के 7 जिलों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट। चतरा, गढ़वा, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, लातेहार और पलामू में अगले कुछ घंटों में वज्रपात और बारिश की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: जिले में आज कर

0: इस अंक में आप सुनेंगे रांची जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे रांची संवाददाता।
1: रांची के कांके स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का 46वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय केवल एक शैक्षणिक संस्थान नहीं बल्कि झारखंड के किसानों के आकांक्षाओं और आशाओं का केंद्र है। उन्होंने कहा कि कृषि अब सिर्फ परंपरागत खेती तक सीमित नहीं है बल्कि नवाचार, स्टार्टअप, खाद्य प्रसंस्करण एवं रोजगार सृजन का एक व्यापक क्षेत्र बन चुका है। राज्यपाल ने कहा कि किसान समृद्ध होंगे तभी गाँव और देश समृद्ध होगा।
2: हमारे जनजातीय समाज ने सदियों से प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए टिकाऊ कृषि और संसाधनों के संरक्षण की समृद्ध परंपरा विकसित की है। मुझे प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय जैविक खेती, श्री अन्न मिलेट्स, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन तथा जल संरक्षण जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अनुसंधान कर रहा है।
1: राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत रांची में 28 से 30 जून तक विशेष अभियान चलाया गया। अभियान को सफल बनाने के लिए 15 प्रचार प्रसार वाहनों को जागरूकता के तहत चलाया गया। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत सदर अस्पताल से की गई। इस अवसर पर रांची के विधायक सीपी सिंह ने कहा कि भारत पोलियो से मुक्त हो चुका है लेकिन इस उपलब्धि को बनाए रखने के लिए लगातार सतर्क रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, सहिया और संबंधित टीम अभियान को सफल बनाने में एकजुट दिख रही हैं।
3: सदर अस्पताल में पोलियो दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई ताकि एक भी बच्चा इससे वंचित न रह जाए। दो बूंद पोलियो का जीवन की रक्षा करने का काम करता है।

0: विधियां हैं, उच्च कोटि के प्राणायाम हैं, जिससे हम मन को अपने नियंत्रण में ला सकते हैं और व्यक्ति जो है अपनी चेतना को ईश्वर के साथ जोड़ सकता है।
1: रांची के आर्यभट्ट सभागार में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग यंग प्रोफेशनल राउंड टेबल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विषय पर केंद्रित था। इस मौके पर माई भारत झारखंड की स्टेट डायरेक्टर ललिता कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना देखा है, उसमें युवाओं की भागीदारी काफी महत्वपूर्ण है। 15 से 29 आयु वर्ग के युवाओं को आइडिया शेयर करने का मौका देता है।
2: मोदी जी का विजन है कि 2047 में हमारा भारत एक विकसित भारत के रूप में विकसित देशों के कतार में आ जाए। हमारे जो यूथ प्रोफेशनल्स हैं, यंग यूथ है 15 से 29 वर्ष के लोगों को, उनका आइडिया भी लिया जा रहा है ताकि उनका आइडिया को इंक्लूड किया जाए।
1: राउंड टेबल में अन्य युवाओं के साथ झारखंड की पीएम प्रेजेंटर आयशा फातिमा ने भी अपने विचार रखे। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची।
3: अभी आप सुन रहे थे रांची जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। पेश खिदमत है आज का आपकी पसंद कार्यक्रम।

0: आज वो दौर आ गया है कि हम अच्छी से अच्छी चीज़ से भी थोड़ी देर में बोर हो जाते हैं, लेकिन ये आशा जी की आवाज़ है जिससे लगातार सुनते रहने पर भी हम सब लोगों का लगाव बढ़ता ही जाता है। हमारी आशा जी, जिनकी गायकी में हजारों रूप लेकिन व्यक्तित्व का रूप एक, जैसा अंदर वैसा बाहर, गुस्सा है तो गुस्सा, प्यार है तो प्यार, दिल जितना बड़ा उतना ही साफ।
1: जी हाँ सामीन, कार्यक्रम का आगाज़ गुलकारा आशा भोसले की खनकती आवाज़ से, फिल्म का नाम है डॉन, सुनने के ख्वाहिशमंद बड़ा बाम्बोस, सुपाही साई से देवेंद्र तांती, ललित प्रधान और श्यामदेव नायक, चांडिल से तुलसीदास महतो, पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका और वंश बत्ता।

न्यू कॉलोनी टुंगरी से सुशील कुमार सिंह, संध्या देवी, प्रियंका, काजल, क्रिश और किट्टू। नागपुर से इलियाजर अब्राहम, उज्जैनी एलन, क्लोरी, एलेक्स, जोजफ और अविनाश। इनकी फरमाइश पर यह नगमा है फिल्म दोस्ताना से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की।

एक बार कहो। आइए सुनते हैं इस फिल्म का शीर्षक गीत, आवाज़ें बप्पी लाहिरी और सुलक्षणा पंडित की। सुनना चाहते हैं बड़ी बाजार चाईबासा से मौजम बिहारी, शमीमा खानम, जिम्मी, किरण, रोशनी, बिट्टू, मुस्कान और नबीहा। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश।

एक दूजे के लिए। आइए सुनते हैं इस फिल्म का नगमा। युगल स्वर हैं लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की। सुनना चाहते हैं आदित्यपुर से नंदलाल गागराई, सुरेश लक्ष्मी और सरस्वती गागराई। जालौन से सत्येंद्र चंसौलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक और इनके तमाम दोस्त।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: స్వయం ఇది కట్టుపడే భారతీయ సేన.
1: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ.
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है. नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है. इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गयी है.
3: तीन नाले बड़ा परिवार जो तो बनवा इन मरन बेटा क्रांति बेसरा अल नगे नहर में ना बोले नुकन परिस्थिति रे बोले सब बड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे ना कहा कि हम बोले रुड़ तब में अल परिवार से मतलब पूरे ये ना
4: वरना मंगलोर आकर गांव वगैरह
5: इश्क जब अपनी हदों से गुजर जाता है तो दुआ बनकर उम्र की किताब में उतर जाता है. फिर एक ख्वाहिश बस इतनी सी रह जाती है, जिसका हाथ थामा है वही मुकद्दर हो, जिसे दिल ने चुना है वही जिंदगी हो. इन्हीं खूबसूरत एहसासों को सुरों में पिरोता फिल्म बलमा का यह रूमानी नगमा अगर जिंदगी हो. शामीन, इस नगमे को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आमजोरा पोखरिया से शिवा गोप, प्रेम गोप, संगीता लिपि और दीपाली गोप. जमशेदपुर से हंजिदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत और पप्पी भाटिया. और मंझारी से बसंत बेंकुरा, हेमंत पात्रो, सुलोचना पान, कौशिक, दीपक, रिंकी, रूपाली और पीताम्बर.

इंसानियत के दुश्मन। अब आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत सुरेश वाडेकर और साथियों से। सुनना चाहते हैं जिला स्कूल चाईबासा से गौतम होनहागा, धनंजय ठठेरा, शंकर परशुराम, दादू संजय, दामू मिश्रा और ललित, डबवाली से बसंत सिंह चांद, राजकुमार, सुनीता और कुलदीप गांधी।

रजिया सुल्तान। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत। गुलकारा हैं लता मंगेशकर। सुनना चाहते हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। बेडी से हुकुम कर्मकर, सुनीता कर्मकर, हार्दिक प्राची और तनु कर्मकर। माहौल बिहार सोनवा से नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी गुरुचरण नायक, अनुसुया नायक, देवाशीष, गुलशन, आयुष और गीतेश महतो।

बंदिश। आइए सुनते हैं इस फिल्म का नगमा कुमार सानू और अलका याग्निक से। सुनना चाहते हैं ग्राम कुइरा से पोंडे बोईपाई, रेशनल कश्मीरा यशमती और मोनाक्षी बोईपाई, रायगढ़ से अकरम नूरजहां, डब्लू नूरजहां, सईद वसीम और वलीउल्लाह नूरजहां।

सरायकेला ग्राम कीता से राधा कृष्ण गोप, अभिषेक गोप, अमित, विक्की, अंकित और सुमित गोप। भिलाई से श्रीमती प्रमिला श्याम कुंवर, अनुश्री श्याम कुंवर, अशोक और दीपक श्याम कुंवर। इनकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं फिल्म दलाल का ये नगमा। युगल स्वर हैं कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति के।

शामीन आप सुन रहे हैं फिल्म सिलसिला का नगमा, आवाज़ें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं राजनगर से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा गुप्ता, रंका रानी, मौसम, संगीता, रुद्र और रिद्धि गुप्ता। भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर वर्मा और दीपक कुमार वर्मा।

दिल है कि मानता नहीं। अब आइए सुनते हैं इस फिल्म का शीर्षक गीत कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल से। सुनना चाहते हैं अमला टोला चाईवासा से गोरख प्रसाद गुप्ता, फुलवंती गुप्ता, अभिषेक गुप्ता और अक्षत प्रसाद। अमरावती से कमरुल्लाह, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा और सालिया शोएब खान।

प्यासा सावन। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर से। सुनना चाहते हैं न्यू कॉलोनी टुंगरी से पंडित आर के पाठक, श्रीमती अनिता मिश्रा, रिया प्रिया पाठक, सुशील कुमार सिंह और श्रीमती संध्या देवी। गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय।

गैंगस्टर। अब आइए सुनते हैं उनका गीत, फनकार जुबिन गर्ग। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं पटेल नगर मलोट से ही डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और आरजू जाजोरिया। न्यू कॉलोनी निमली से ठाकुर प्रसाद रंगीला, निर्मला देवी, अर्चना, खुशबू, खुशी और अभिषेक।

गोपी किशन। कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं इस फिल्म का नगमा कुमार सानू और अलका याग्निक से। सुनना चाहते हैं रायगढ़ से शिव कुमार चौहान और संक्रांति चौहान, मोहाली से बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम और आदिबा तिवारी।

इस नगमे के साथ ही समाप्त होता है आज का रजनीगंधा कार्यक्रम। यह आकाशवाणी चाईवासा है FM के 101.7 MHz पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। कल 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। एक रिपोर्ट।
2: VBG रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298.80 रुपए प्रतिदिन से बढ़कर 327.40 रुपए प्रतिदिन हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में VBG रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, VBG रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समयानुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जन भागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
3: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसिलर पहुँच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फरुखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर

0: यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉक्टर साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
1: बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95.24 रुपए पर बंद हुआ।
0: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा वीथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत की समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और DR कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में

0: मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Government approves 2 major highway infrastructure projects in Delhi and Uttar Pradesh worth over 14,000 crore rupees. Vikasit Bharat G. Ramji Act comes into force across the country. Centre notifies revised wage rates under the scheme. Supreme Court issues guidelines on assessing income of motor accident victims for uniformity in compensation claims. Prime Minister of Japan Sanae Takaichi arrives in New Delhi on a 3-day visit to India to take part in 16th India-Japan Annual Summit tomorrow. In men's cricket, India to take on hosts England in first T20 international of 5-match series tonight. And in FIFA World Cup, England to face DR Congo in round of 32 at Atlanta in US tonight.

0: a five-match series tonight, and then FIFA World Cup England to face DR Congo in round of 32 at Atlanta in US tonight. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। हुकूमत ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए की मालियत के शहराओं के बुनियादी ढांचे से मुतालिक दो बड़े प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। विकसित भारत जी रामजी एक्ट आज से मुल्क भर में नाफिज हो गया है। मरकज ने इस स्कीम के तहत उजरत की नजरे सानी शुदा शरहों को नोटिफाई किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे के दावों में यकसानियत लाने की गरज से गाड़ियों के हादसे के मुतासरीन की आमदनी का तायुन करने के सिलसिले में रहनुमा खतूत जारी किए हैं। जापान की वजीर आजम सनाई तकाइची भारत के 3 रोजा दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गई हैं। वो कल 16वें भारत जापान सालाना समिट में हिस्सा लेंगी। मर्दों के क्रिकेट में आज रात 5 मैचों की सीरीज में भारत और मेजबान इंग्लैंड पहले टी20 बैन अक्वामी मैच में आमने सामने होंगे, और फीफा आलमी कप में आज रात अमरीका के अटलांटा में इंग्लैंड और डीआर कॉन्गो प्री क्वार्टर फाइनल में एक दूसरे का मुकाबला करेंगे। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने आज शाहराओं के बुनियादी ढांचे से मुतालिक दो बड़े प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है, जिस पर मुश्तरका तौर पर 14,114.81 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन प्रोजेक्टों में 6,969 करोड़ रुपए का दिल्ली में सुरंग से मुतालिक एक प्रोजेक्ट है, जिसका मकसद बहुत ज्यादा ट्रैफिक को कम करना है। दूसरा प्रोजेक्ट 7,145 करोड़ रुपए के ग्रीनफील्ड शहरा से मुतालिक है। यह शहरा उत्तर प्रदेश में बनाई जाएगी। मरकजी काबीना के फैसलों के बारे में कौमी राजधानी में मीडिया से बात करते हुए इत्तिलात और नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने बताया कि इन प्रोजेक्टों का मकसद पीएम गतिशक्ति कौमी मास्टर प्लान के तहत कनेक्टिविटी को बढ़ाना, सफर के वक्त को कम करना और इकतसादी सरगर्मियों को फरोग देना है। काबीना ने दिल्ली में कौमी शहरा 148 AE पर 6 लेन वाली 8.1 किलोमीटर तवील सुरंग की तामीर को मंजूरी दी है, जो द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज में नेल्सन मंडेला मार्ग से जोड़ेगी। काबीना ने उत्तर प्रदेश में कौमी शाहरा नंबर 34 पर 117.7 किलोमीटर कानपुर कबरई सेक्शन की तामीर को भी मंजूरी दी है, जो 4 लेन वाली एक्सेस कंट्रोल राहदारी होगी, जिसका ढांचा इस तरह वजह किया जाएगा कि इसे आसानी से 6 लेन वाला बनाया जा सके।
2: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: विकसित भारत जी रामजी एक्ट 2025 के तहत बढ़ी हुई उजरतों का इतलाक आज से मुल्क भर में हो गया है। देही तरक्यात की वजारत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक उजरत की शरहें तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में बढ़ा दी गई हैं। वजारत ने कहा है कि पहली मरतबा 300 रुपये यौमिया की उजरत की एक अबूरी बुनियादी शरह मुतारिफ कराई गई है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इस प्रोग्राम के तहत कोई भी नोटिफाइड उजरत इस सतह से कम ना हो। विकसित भारत जी राम जी के तहत कौमी औसत उजरत एमजी नरेगा के तहत 298.80 रुपए योमिया से बढ़कर 327.40 रुपए योमिया हो गई है, जो कि 10% का औसत इजाफा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज रहनुमा खतूत जारी किए हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न की बुनियाद पर गाड़ी के हादसे में हलाक होने वाले मुतासरीन या दावा पेश करने वाले जख्मियों की सालाना आमदनी का तायुन अदालतें किस तरह करें। गाड़ियों के हादसे की सूरत में मुआवजों में यकसानियत लाने की गरज से एक अहम फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तनख्वाह पाने वाले अफराद के लिए पिछले बरस की इनकम टैक्स रिटर्न ही सालाना इनकम का तायुन करने के लिए काफी होगी। अपना रोजगार आप चलाने वाले अफराद के सिलसिले में अदालत ने कहा है कि पिछले 3 बरस में दाखिल की गई ITR में बताई गई औसत आमदनी को ही आमतौर पर रेफरेंस प्वाइंट बनाया जाएगा। जस्टिस संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह ने कहा कि मोटर गाड़ियों के

0: परंपरा शामिल है। इस दौरान उन्होंने मेघालय और आसाम के वज़ीर आला से मुलाकात की थी। इसी तरह आसाम के वज़ीर आला ने भी गुज़िश्ता साल जनवरी के महीने में जापान का दौरा किया और आसाम और आसियान के दरमियान अगले 5 साल के दौरान 20,000 नौजवानों को तरबियत देने से मुतालिक मफाहिमत नामे पर दस्तखत किए गए। नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
1: भारत ने पाकिस्तान के फारूकाबाद में तारीखी 125 साल पुराने मुकद्दस गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को मुनहदिम किए जाने की सख्त मजम्मत की है और कहा है कि यह इंतहाई अफसोसनाक और तहजीबी विरासत को खत्म करने की एक तयशुदा कार्रवाई है। मुबैना इनदामी कार्रवाई के मुतालिक मीडिया के सवालात के जवाब में वजारत खारजा में तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने इस इनहदामी कार्रवाई पर इंतहाई तश्वीश का इजहार किया और मकामी हुक्काम या इवैक्यूट ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड की जानिब से कोई बामानी कार्रवाई न किए जाने की रिपोर्टों पर भी तश्वीश जाहिर की। भारत ने पाकिस्तान से जोर देकर कहा है कि वो इस मामले की तेजी से तहकीकात करे और कसूरवारों को कैफर किरदार तक पहुंचाए। जनाब जायसवाल ने जोर देकर कहा कि गुरुद्वारा साहिब के मुनहदिम किए गए हिस्सों को जल्द से जल्द बहाल किया जाए और उनकी तामीर नौ की जाए। भारत ने इस्लामाबाद से जोर देकर यह भी कहा है कि वह अकलियती फिरकों और उनकी इबादतगाहों के तहफ्फुज़, सलामती और ठीक ठाक रहने को यकीनी बनाए जाने से मुतालिक अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें और पाकिस्तान में फिरके वारियत पर मबनी तशद्दुद और मजहबी अदम रवादारी के मौजूदा माहौल को फैसला कुन इख्तिताम तक पहुंचाए। भारत और पाकिस्तान ने आज नई दिल्ली और इस्लामाबाद में सिफारती चैनलों के जरिए एक दूसरे के मुल्कों में जेर हिरासत शहरी कैदियों और माही गीरों की फहरिस्तें एक दूसरे को पेश की। वजारत खारजा ने एक बयान में बताया कि भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 ऐसे शहरी कैदियों और 53 माही गीरों की फहरिस्त उन्हें सौंपी जो पाकिस्तानी हैं या जिनके मुतालिक ख्याल है कि वो पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 सिविल कैदियों और 198 माही गीरों की फहरिस्त सुपुर्द की जो भारतीय हैं या जिनके मुतालिक ख्याल है कि वो भारतीय हैं। भारत पाकिस्तान के जेर हिरासत शहरी कैदियों, माहीगीरों और उनकी कश्तियों और लापता भारतीय दिफाई अहलकारों की जल्द अज जल्द रिहाई के लिए लगातार जोर देता रहा है। श्री अमरनाथ जी यात्रा के यात्रियों का पहला जत्था जम्मू में भगवती नगर बेस कैंप में पहुंच चुका है और कल से सालाना यात्रा शुरू होने की तमाम तैयारियां हो गई हैं। तमाम जरूरी तैयारियां जिनमें बढ़ी हुई सिक्योरिटी और यात्रियों की रिहाइश के इंतजाम शामिल हैं पूरी हो गई हैं। ये 57 रोजा यात्रा ननवान, पहलगांव और बालतल के रास्ते सख्त सिक्योरिटी में जारी रहेगी। आकाशवाणी ने आज नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में वाके रंग भवन ऑडिटोरियम में अपनी नशरियाती हाउस की फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा विथिका का इफ्तिताह किया। इस फोटो गैलरी का इफ्तिताह पद्म विभूषण बांसुरी नवाज पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने किया। इस तकरीब के दौरान एक मौसीकी रेस कॉन्सर्ट का इनेकाद किया गया जिसमें पंडित रूपक कुलकर्णी ने बांसुरी की धुनों से मन मोह लिया। इस तकरीब के दौरान प्रसार भारती के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी और दूरदर्शन न्यूज के डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार जैन मौजूद थे। इस मौके पर मौजूद अफराद से खिताब करते हुए जनाब द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत की फरावा मौसीकी की विरासत को महफूज रखने और फरोग देने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया है।
2: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
1: मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के मैन T20 5 बैन अक्वामी मैचों की सीरीज का पहला मैच आज रात चेस्टरली स्ट्रीट में होगा। यह मुकाबला भारतीय वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा। फुटबॉल में फीफा आलमी कप के प्री क्वार्टर फाइनल राउंड में आज रात एटलांटा में इंग्लैंड का मुकाबला जमहूरिया रिपब्लिक कांगो से होगा। और आखिर में बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए की मालियत के शाहराओं के बुनियादी ढांचे से मुतालिक दो बड़े प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। विकसित भारत जी रामजी एक्ट आज से मुल्क भर में नाफिज हो गया है। मरकज ने इस स्कीम के तहत उजरत की नजरसानी शुदा शहरों को नोटिफाई किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे के दावों में इंसानियत लाने की गरज से गाड़ियों के हादसे के मुतासरीन की आमदनी का तयन करने के सिलसिले में

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष, एआई, सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं एआई विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और एआई एवं तकनीकी विशेषज्ञ उत्पल चक्रवर्ती। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार, चर्चा का विषय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर, जिसमें हम बात करेंगे एआई, सेमिकॉन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। आज हमारे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान, जिनमें एक है प्रसून शर्मा जो एआई एक्सपर्ट है। हमारे साथ स्वागत है आपका।
2: नमस्कार।
1: और श्रोताओं हमारे साथ जुड़े हैं एआई एंड टेक एक्सपर्ट उत्पल चक्रवर्ती जी। उत्पल जी, कार्यक्रम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार जी।
1: उत्पल जी, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे इस बारे में जानना चाहेंगे कि 2015 से लेकर के आज तक की इस पूरी यात्रा को अगर हम देखते हैं तो भारत के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही और किस तरह ये जो उपलब्धि हासिल हुई है, जो भी हमने कार्य किए हैं उन पर आपके क्या विचार हैं?
3: जो ये टाइम फ्रेम जो है, इसके अंदर हम लोग टेक्नोलॉजी फ्रंट पे बहुत एडवांसमेंट किया है, चाहे वो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारा यूपीआई जैसा पेमेंट सिस्टम हो, या हम लोग ये भी देखे है कोरोना के टाइम पे अपना कोविन जो है, ये जो नया अभी प्लेटफॉर्म आ रहे हैं जो कि सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है, ये क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत एडवांसमेंट हुआ है, जो कि खाली देश के अंदर ही नहीं, ये विदेशों में भी ये एक मॉडल बन के आया है बाकी डेवलपिंग कंट्री के लिए, इवन की डेवलप कंट्रीज के लिए। क्योंकि हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किया है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतने स्ट्रांग है और इतना वर्सेटाइल है कि अभी हम लोग कोई भी डिजिटल टेक्नोलॉजी, चाहे एआई हो, चाहे क्वांटम हो, या कोई भी डेटा इकोसिस्टम हो, सब कुछ हम लोग बना सकते हैं इसके। तो ये जो ग्राउंड वर्क किया गया है, ये 11 साल में मतलब रिमार्केबल मतलब उपलब्धि है।
1: तो सुन जी, अगर आपसे मैं बात करूं, आपसे जानना चाहूं, तो डिजिटल इंडिया की जब शुरुआत हुई 2015 में, तब शायद किसी ने इतना नहीं सोचा होगा कि दुनिया का एक बहुत बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में तैयार होगा। तो आपके हिसाब से इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी सोच क्या रही और कौन से ऐसे अहम फैसले थे जो इस बदलाव के भागीदार बने?
2: डिजिटल इंडिया के ये 11 वर्षों को ऐसा देखता हूँ कि लाइन में लगने वाली अर्थव्यवस्था को ऑनलाइन अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर दिया डिजिटल इंडिया ने पिछले 11 वर्षों में। और उसके तीन महत्वपूर्ण जो उपलब्धियां या माइलस्टोन मैं कहूंगा, पहला डिजिटल पहचान जो हमारा आधार है, दूसरा हमारा डिजिटल भुगतान जो यूपीआई है, तीसरा जो सरकार की सेवाएं हैं, चाहे वो आप पासपोर्ट देख लीजिए, टैक्स देख लीजिए, शिक्षा का क्षेत्र देख लीजिए, मेडिकल सर्विसेज, उसका डिजिटाइजेशन, ये तीन बड़े स्तंभ हमने ना सिर्फ खड़े किए, उसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करके एक ग्लोबल बेस्ट केस सिनारियो हमने क्रिएट किया है।
1: डिजिटल इंडिया के स्तंभों की अक्सर चर्चा की जाती है। श्रोताओं आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय में क्या कहा।
4: डिजिटल इंडिया के चार पिलर्स की पहचान की थी। डिवाइस की कीमत कम होनी चाहिए, दूसरा डिजिटल कनेक्टिविटी देश के कोने कोने तक पहुंचे, तीसरा डेटा सबकी पहुंच में होना, और चौथा डिजिटल फर्स्ट ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
1: और हर स्तंभ की अपनी एक विशेष भूमिका रही है, तो आपको क्या लगता है कि सबसे प्रभावशाली स्तंभ कौन सा रहेगा, किसे आप चुनना पसंद करेंगे?
2: मुझे लगता है सबसे पहला है डिजिटल पहचान, वो सबसे बड़ा स्तंभ था और वो जिस तरीके से हमने इंप्लीमेंट किया है, मुझे नहीं लगता कहीं पे भी पूरे विश्व में इतने बड़े लार्ज स्केल पे डिजिटल आइडेंटिफिकेशन का कोई प्रोजेक्ट हुआ है सक्सेसफुली। जब हमें डिजिटल पहचान मिली, उसी के बेस पे अब हम सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो भुगतान हो, चाहे वो सब्सिडीज हो, चाहे वो स्कॉलरशिप्स हो, चाहे वो मतलब आजकल हेल्थ इंश्योरेंस हो या पेंशन हो। तो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण जो डिजिटल पहचान हमने दी अपने सारे नागरिकों को, वो सबसे बड़ा माइलस्टोन रहेगा इसका।
1: उत्पल जी, आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे?
3: मैं सहमत हूँ सुन जी से, क्योंकि

0: डिजिटल पहचान जो है, आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद जो भुगतान जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मॉडल है ये मॉडल कोई भी जगह नहीं है। इतना यूपीआई जैसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा खराब हुआ है, और आज खाली यूपीआई नहीं, फ्यूचरिस्टिकली अगर हम लोग देखें तो अगर कोई भी अगर ऐसा जो कि कंट्री को एंटायर पॉपुलेशन को सर्विस देने जैसा अगर कुछ बनाना है कल को, तो वो कर सकते हैं। और वो एग्जाम्पल मैं बोला कि हम लोग कोरोना के टाइम पे देखा कि हम लोग कितना जल्दी, मतलब ये जो कोविन है उसको हम लोग लॉन्च कर दिए, और हमारा जितना भी वैक्सीनेशन है ये कितना अच्छी तरीके से हो गया, और ये भी एक बहुत बड़े मॉडल के जैसे बाकी देशों के सामने आ गया।
1: प्रसून जी, आज भारत में अगर हम बात करते हैं तो मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत ही लार्ज स्केल पर फैल चुकी है, गांव गांव तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंच रही है, 5G पहुंच चुका है लोगों के पास तक। तो असली चुनौती सिर्फ कनेक्टिविटी देना तो नहीं रहा होगा, हालांकि जो डिजिटल सेवाएं हैं हमारी जिनको हमने शुरू किया है, जो आज बड़े पैमाने पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको सिखाने में खासतौर पर जो सरकार की भूमिका रही उसे आप किस तरह देखते हैं कि सरकार ने कितना बढ़ चढ़ करके इस चीज को किया?
2: सरकार ने इसकी नींव रखी, जैसे सड़कें हमारी फिजिकल अर्थव्यवस्था को चलाती है, वैसे ही डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल अर्थव्यवस्था को चलाती है। तो वो जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने क्रिएट किया उसके ऊपर, चाहे वो सरकारी सुविधाएं हो या हमारे तकरीबन 2 लाख स्टार्टअप्स हैं जो उसमें सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सरकार का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में बहुत बड़ा योगदान रहा है, और वो फ्यूचरिस्टिक रहा है और वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रहा है। ना सिर्फ कनेक्टिविटी, कंप्यूट एप्लीकेशंस भी रीजनल भाषाओं में दी जाए ताकि वो एकदम लास्ट माइल तक पहुंच सके, और लोकल सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स जो कि स्टार्टअप या एमएसएमई के थ्रू हो। तो मेरे हिसाब से सरकार ने एक बहुत अच्छा अगले 100 साल के लिए एक बेस प्रोवाइड किया है डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए।
1: डिजिटल अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, मैं इस चीज को समझ पा रहा हूँ कि पहले एक दशक पहले की अगर हम बात करते हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, तो सरकारी काम कराने या किसी भी तरह के काम कराने के लिए लंबी कतारें देखी जाती थी, कई सारे कागज हमें इस्तेमाल करने होते थे, पेपर वर्क बहुत सारा होता था, चक्कर भी लोगों को लगाने पड़ते हैं। आज जो हमारे पास डिजी लॉकर की हम बात करते हैं, सीएससी की बात करते हैं, सिंगल ऑन स्क्रीन की बात करते हैं, सिंगल विंडो की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि डिजिटल गवर्नेंस ने आज हमारे जीवन को पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा आसान बना दिया है?
2: जी बिल्कुल, ना सिर्फ आसान बना दिया, अब हम उसमें एक लीडिंग एग्जांपल्स भी दे रहे हैं। हम डिजिटल इंडिया से अब एआई इंडिया मिशन की तरफ जा रहे हैं, जिसमें एआई से हमें समय कम लगेगा, हमारे काम जल्दी होंगे, और जो रूटीन काम थे जैसे पेपर वर्क वाले, और वो काफी हद तक कम हो जाएंगे, उसमें जो भी खर्चा था या समय था। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ना सिर्फ भारतीयों के लिए, ये पूरे विश्व के लिए। ये पहले अगर आप डिजिटल अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी की बात करें, सिर्फ दो ही डिजिटल इकोनॉमी थी पूरे ग्लोब में, पहला था यूएस ओरिएंटेड जिसको हम गैफैम बोलते हैं, गूगल एप्पल वो प्रोवाइड करते थे, तीसरा चाइना सपोर्टेड था जिसमें बायदू अलीबाबा आते हैं, दूसरा और तीसरा अब हमारा है भारत का जो ऑप्शन उन्होंने दिया है, जिसमें जो मेन कोर भारत के डिजिटल इकोसिस्टम का जो कोर है वो है टू बेनिफिट कॉमन मैन।
1: जी
2: हमारा प्रॉफिट ओरिएंटेड एम नहीं है, इसके बेस पे ना सिर्फ हम भारत के कॉमन सिटीजन्स को इंक्लूड कर रहे हैं डिजिटल फाइनेंशियल और अदर एस्पेक्ट में, हम ग्लोबली भी ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं डेवलपिंग नेशंस को कि कॉमन सिटीजन्स को हम इंक्लूड कर सके बाकी सारी सर्विसेज।
1: इसमें एक चीज अगर ये हम जोड़े कि जैसे कुछ समय पहले तक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना सभी के लिए बहुत आसान नहीं था, लोग घबराते थे कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें या ना करें, इससे हमारा नुकसान ना हो, लेकिन अभी बीते एक दशक की हम बात करते हैं भारत सरकार के जो डिजिटल प्रयास हुए हैं, क्या आपको लगता है कि ये उसी का असर है कि आज टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा हम एडॉप्ट कर रहे हैं? आपने एआई का जिक्र किया था, बहुत ही तेजी से काम करने में बहुत सहायता हमारी ये पहुंचाता है, आज आम आदमी भी एआई को बड़ी तेजी से एडॉप्ट कर रहा है।
2: अगर आप सब्जी खरीदने भी जाते हैं और अगर आप क्यूआर कोड पे पेमेंट करते हैं और वो उस पर एक वॉइस कमांड आता है कि जिसमें आपका अगर 200 रुपए का भुगतान हुआ, वो भी एआई है, वो भी हमारे गांवों में अभी जाने अनजाने में लोग यूज कर रहे हैं, वो भी एआई का एक एप्लीकेशन है। ऐसे ही अगर आप किसानों के लिए कुछ एप्लीकेशन है जिसमें वो मतलब अपने एआई बॉट से बातचीत करके पता कर सकते हैं कि भी किस तरीके का खाद डालना है, किस तरीके के बीज और कहां से लेना है। तो भारतीय सरकार ने ना सिर्फ इकोसिस्टम प्रोवाइड किया, उन्होंने जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स है उनको अनेबल भी किया, और इसमें जो नॉलेज एस्पेक्ट था, जैसे भारत ही एक सबसे विभिन्न तरीके से जीपीयू प्रोवाइड करा जो सबसे सस्ता है
1: जी।
2: पूरे विश्व में वो एमएसएमई और स्टार्टअप्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। हमारा जो एआई कोश है उसमें जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस के जो एलएलएम्स या उसके रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अनेबलमेंट भी है और सॉल्यूशन एक्सेस

0: ये नॉलेज शेयरिंग ग्लोबल लेवल पे वो जो भी बेस्ट चिप्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं, उनको भारत यहाँ ला रहा है।
1: उत्पल जी, स्वास्थ्य और न्याय की अगर हम बात करते हैं तो ई हॉस्पिटल, ई संजीवनी और ई कोर्ट्स जैसी पहल आज हमारे सामने बहुत ही आसानी से उपलब्ध है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इन सारी चीजों ने आम लोगों के जीवन पर किस तरह से असर डाला, आप कैसे देखते हैं इसे?
2: ये तो बहुत ही अच्छी चीजें हैं, बिकॉज हम अगर इंडिया का बात करें तो हमारा जो दूर दराज का एरिया है जिधर के मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू से हम लोग, वो स्टार्ट हुआ टेलीमेडिसिन से, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो ऐसा भी स्टार्टअप्स और ऐसा भी इनिशिएटिव्स है जो कि डिजिटली उधर से डायग्नोसिस कर सकता है कुछ कुछ डिजीजेस का, और वो रिमोटली डॉक्टर के साथ उसको कंसल्ट करके उसका ट्रीटमेंट होता है। हमारा एक स्टार्टअप को जिसको कि यूनाइटेड नेशंस एआई फॉर गुड में जिसको भी किया गया है, जो कि प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन को वो लोग डिटेक्ट कर सकता है एक छोटा सा डिवाइस, अफोर्डेबल डिवाइस से, और वो गांव का दूर दराज एरिया में लेके जा सकता है और उसको ये कर सकता है। और इसका पूरा श्रेय जाता है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, क्योंकि वो बैकबोन अगर नहीं होते तो हम लोग ये बाकी जितना भी चीज है ये करने, तो बहुत ऐसा कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है जो कि बिट्स एंड पीसेस में स्टार्ट किया और मैक्सिमम जो काम किया वो प्राइवेट सेक्टर ने किया या प्राइवेट बड़ा बड़ा कंपनी ने किया, लेकिन इंडिया का जो मॉडल है ये एक यूनिक मॉडल है। इसमें क्या किया, जो बेस लाइन है और जो बेस है और जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया और इसको ओपन कर दिया पब्लिक के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, बाकी कंपनीज के लिए कि इसको एक्सेस करें। तो इसीलिए आप अगर देखोगे आज ऑथेंटिकेशन करने के लिए हम लोग आधार का सर्विस यूज कर सकते, तो इट इज ए ओपन प्लेटफॉर्म, हम कोई भी एपीआई कॉल करके आधार से ऑथेंटिकेट, जो कि सबसे अच्छा ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है। ऐसा कोई भी हमारा अगर कुछ भी जरूरत है, पेमेंट्स काम है, अगर ई कॉमर्स साइट करना चाहता हो या कोई भी चीज ऐसा करना चाहता हो, अगर पेमेंट इको सिस्टम चाहिए तो मेरे पास यूपीआई है, मैं इजिली इंटीग्रेट करके कर सकता हूँ। तो ये मॉडल जो है, इट्स ए यूनिक मॉडल कि गवर्नमेंट ने आपको पूरा का पूरा बेसलाइन प्रोवाइड किया, इको सिस्टम प्रोवाइड किया, ऑन टॉप ऑफ द इको सिस्टम आप क्या कर सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो। एंड वही एआई का अभी पुसुम जी ने बात किया कि एआई कोशा में जो सब्सिडाइज रेट में जीपीयूस दे रहे थे, एंड ऑल अदर थिंग्स आर ऑल पार्ट ऑफ दैट।
1: उत्पल जी, जब सरकार की व्यवस्थाओं की हम बात कर रहे हैं तो आज कितना आसान हो गया है कि माई गॉव जैसे प्लेटफॉर्म जो है वो बड़ी आसानी से हमें जानकारी उपलब्ध करा देते हैं सरकार की चीजों के बारे में, और ये कितना आसान है कि लोग सीधे सरकार से जुड़ सकते हैं। तो आपको लगता है कि सरकार ने अब तकनीकी रूप से अपने नागरिकों के बीच संवाद करने की पहल को और ज्यादा खुला, पारदर्शी और सहभागी बनाया है?
2: डेमोक्रेसी में जो होता है, जो सिटीजन है सरकार के पास रहना चाहिए, तो वो पास का जो जरिया है वो है कम्युनिकेशन, वो कैसे हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं ऐसे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जो होता है कि सरकार से जो जनता है वो दूर में चला जाता है, क्योंकि उसका वो जो जरिया है वो नहीं है। लेकिन ये जो सरकार हमारा है बीते 11-12 साल में, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि आप जो सिटीजन है वो सरकार के साथ जोड़ सके। और ये जितना भी है माई गॉव आप देख रहे हो, बाकी जितना भी है, ये चैनल्स है सरकार के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। अपना कोई भी जो प्रॉब्लम्स है या कोई भी आइडियाज है या कुछ भी है, उसको सरकार के पास तक के लेके जाना। तो मैं समझता हूँ ये जो दीज आर ओनली चैनल्स, आप देखोगे फ्यूचर में और भी ऐसा चैनल आएगा जो कि सिटीजन को सरकार के और पास लेके जाए, एंड दैट्स द रियल डेमोक्रेसी।
1: तो सुन जी, उमंग, जीएसटीएन, पोषण ट्रैकर और पीएम गतिशक्ति जैसे जो प्लेटफॉर्म है आज अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और सरकारी व्यवस्थाओं को लोगों तक पहुंचाने में बड़ी सहायता करते हैं, तो ये जो डिजिटल इकोसिस्टम है सरकारी सेवाओं को आगे पहुंचाने का, आपको क्या लगता है कि काफी आगे तक बढ़ चुका है या इसमें भी और भी काम करने की जरूरत है?
0: काफी आगे तक बढ़ चुका है और आगे डेफिनेटली और इवॉल्व होगा, क्योंकि एक ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आप देखिए इसमें काफी सर्विसेज हैं, इवन प्रोक्योरमेंट जिसमें सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहिए थी और एनेबलमेंट चाहिए थी। हमारे स्टार्टअप्स अब किसी भी सरकारी टेंडर में भाग ले सकते हैं, हमारे स्टार्टअप्स को जो भी ग्रांट्स हैं वो सब ऑनलाइन हो चुका है। इवन जो आपको सर्टिफिकेशन, उद्यम सर्टिफिकेट चाहिए, डीपीआईटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, आप ऑनलाइन अप्लाई करिए और आपको निश्चित समय में वो उसका जवाब मिलता है, और अगर कोई क्लैरिफिकेशन भी होता है तो डिजिटल माध्यम से ही होता है। तो तकरीबन अगर आप देख रहे हैं, हम दुनिया की टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में इसीलिए ही आए हैं क्योंकि ये अनेबलमेंट हुआ है, ग्रांट डिसबर्समेंट हो रही है, प्रोजेक्ट्स में वो पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। अब हम डिजिटल यूजर से डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो गए ग्लोबल इकोसिस्टम में, ना सिर्फ कॉमन सर्विसेज में, अब रिसर्च ओरिएंटेड सर्विसेज जिसमें अब आजकल डीप टेक, जैसे हमारे भारत इनोवेट में प्रधानमंत्री ने भी कई फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सॉल्यूशन दिखाए, जैसे 3D प्रिंटेड हमारा पहला रॉकेट दिखाया गया वहां पे। तो ये तभी संभव हुआ जब हमारे पास डिजिटल एक्सेस आया, ट्रांसपेरेंसी थी,

0: कोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हुए इस डिजिटल एक्सेस के थ्रू और पार्टिसिपेशन मिला रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टार्टअप्स और एमएसएमई को।
1: जी उत्पल जी, जनधन आधार और मोबाइल यानी कि जैम ट्रिनिटी जिसे हम बोलते हैं वो हमारी डिजिटल इंडिया की एक तरह से मेरुदंड है, तो आपके हिसाब से इस मॉडल ने आम नागरिक तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाने की बात हो तो किस तरह से इसमें बदलाव लाया है?
2: पहला जो है वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी था क्योंकि आइडेंटिटी जब हो जाएगा तभी मिडिलमैन कोई नहीं रहेगा बीच में। और इसीलिए क्या हो रहा है, जितना भी गवर्नमेंट का बेनिफिट्स है जितना कुछ है डायरेक्टली सिटीजन तक के पहुंच रहा है, तो ये तो डायरेक्ट चैनल स्टैब्लिश तभी हो पाया जब हम लोग आइडेंटिटी किया। सेकेंड थिंग है कि जो ये पूरा बैंकिंग सिस्टम को, बैंकिंग इकोसिस्टम जो है, और इसमें हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री प्लस हमारा आरबीआई का एम हमारा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बहुत योगदान है कि ये जो इकोसिस्टम बनाया है ये इकोसिस्टम को यूटिलाइज करके अभी पेमेंट्स या जो ट्रांसफर हम लोग बोलते हैं जी बहुत इजी हो गया है वेदर डोमेस्टिक और क्रॉस बॉर्डर। तो और भी बहुत बेनिफिट हो रहा है कि हम लोग का जो पहले बहुत कुछ जो ये हो रहा था, मतलब कि पैसे के लेन देन में बहुत कुछ जो गड़बड़ी हो रहा था वो सब भी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस जितना भी है अभी वो इजीली कोई भी फ्रॉडुलेंट केस मनी लॉन्ड्रिंग केस को आइडेंटिफाई कर सकता है, क्योंकि क्या है जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है वो पूरा क्लीन हो गया है। उसके साथ साथ डिमोनिटाइजेशन का भी बहुत बड़ा हाथ है कि हमारा पूरा डिजिटल इकोनॉमी लाने जो आ गया उससे बहुत कुछ करप्शन छोटे लेवल पे जो कुछ भी करप्शन ये सब है वो सब हट गया। तो ये जितना भी बेनिफिट्स आप देख रहे हैं दीज आर ऑल सिटीजन सेंट्रिक, मतलब एक पहल है जो कि सिटीजन को मतलब मिडिल में रखते, सेंटर स्टेज में रखते हुए सब कुछ बनाया गया है। और आई थिंक इससे बहुत बड़ी दूरदर्शिता का काम किया है जो कि अभी प्रसून जी ने बताया कि 100 साल के बारे में सोच के बनाया है, तो मैं भी सहमत हूँ उनसे।
1: प्रसून जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेमिकॉन की हम बात करते हैं, आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में क्या जानकारी दी।
3: सेमीकंडक्टर चिप जो होती है वो पूरी की पूरी इसके ऊपर इस डिजाइन को इसके ऊपर सिलिकॉन वेफर के ऊपर कंप्लीट फैब्रिकेशन किया जाता है और उसके बाद में इसमें से इंडिविजुअल चिप्स को निकाल के सेमीकंडक्टर की चिप्स का उपयोग किया जाता है। तो बहुत खुशी की बात है कि भारत में पूरा इकोसिस्टम आ गया है, ये एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है। सेमीकंडक्टर है तो आप बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, हर चीज के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स चाहिए, तो देश के लिए बहुत बड़ी एक जरूरत है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे बहुत फोकस दिया और अब अपने 10 प्लांट में से 4 प्लांट की पायलट लाइन रेडी है, टीजी सेमी में प्रोडक्शन चालू हो गया, पहली मेड इन इंडिया चिप भी माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट की गई और साथ ही साथ भारत में टैलेंट को डेवलप करने के लिए बड़ा काम चल रहा है। 278 यूनिवर्सिटीज में सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग दी जा रही है और बहुत ही खुशी की बात है कि जो सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग लिए हुए स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 20 चिप्स ऑलरेडी डिजाइन की है, डिजाइन करके उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है।
1: डिजिटल इंडिया को हम पूरा का पूरा तकनीक से जोड़कर देखते हैं और इसका कहीं ना कहीं एक पहलू रोजगार भी है, तो आईटी, एआई, सेमीकॉन और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए जो अवसर निकल रहे हैं उन पर आपके क्या विचार हैं?
0: डिजिटल इंडिया ने हमें डिजिटल एक्सेस प्रोवाइड किया, एआई सेमीकंडक्टर हमें डिजिटल इंटेलिजेंस और सोवर्निटी प्रोवाइड करेंगे और आपने बात की साइबर सिक्योरिटी और सेमीकॉन जैसे, इसका मूल है कि चिप अगर आप देखिए मोबाइल, कार और जितने भी होम अप्लायंसेस है उसका जो भी प्रोसेसिंग है या इंटेलिजेंस यूनिट वो चिप होता है। तो पहले हम ऑलमोस्ट सारे ही चिप हम आयात करते थे, अब हम खुद बनाने लगे। नॉर्मली चिप बनाने में भी 10 से 15 साल लगते हैं, पर जिस स्पीड से भारतीय इकोसिस्टम में वो डेवलप हुआ है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज जो लिया था भारत सरकार ने वो सक्सेसफुली डिलीवर किया। अब हम चिप बना रहे हैं यहाँ पे और उसके साथ जो पूरी सप्लाई चेन है वो भी हमने खड़ी करी। तो ये एक इंटेलिजेंस युग में हम जा रहे हैं जिसमें ना सिर्फ हम यूजर हैं, हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, ना सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए पर पूरे विश्व के लिए। और अब सबसे बड़ी बात आजकल चल रही है टेक सोवर्निटी की, जगह सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट में अगर आप देखिए तो इन डिजिटल एक्सेस के थ्रू ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये इंक्लूशन एम्पावरमेंट की कहानी है। अब हमारा खुद ऑपरेशन सिंदूर में हमारा एक स्टार्टअप था जिसने एंटी ड्रोन एक सॉल्यूशन बनाया जो यूज हुआ, वो इंडिजीनियस है, भारत में बना है। ऐसे ही जो डिफेंस रिलेटेड जो स्टार्टअप चैलेंजेस है आईडेक्स के थ्रू वो भी इस इकोसिस्टम के थ्रू अनेबल हो रहे हैं, उनको ट्रायल्स के लिए फील्ड प्रोवाइड किया जा रहा है और वो सारा ऑनलाइन सिस्टम है, डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप अप्लाई करते हैं, अपना सॉल्यूशन दिखाते हैं, फिर आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट असाइन होती है और अगर आपका वो सॉल्यूशन चल रहा है तो आपका प्रोक्योरमेंट भी किया जाता है। तो ये सारा एक एम्पावरमेंट की तरफ जो पूरा इकोसिस्टम गया है वो एक सर

0: अन्य कदम है, ना सिर्फ भारत के लिए, अब हमारी टेक बाहर के देशों में भी उसकी डिमांड हो रही है। अगर आप देखिए डिफेंस रिलेटेड एस्पेक्ट में हमारे ड्रोन्स, हमारे सर्वेलेंस की ये मांग काफी बढ़ रही है, हमारे स्पेस टेक की बहुत ज्यादा डिमांड
1: कर रहे हैं हम।
0: जी, और अभी जब प्रधानमंत्री यूरोप की यात्रा में थे तो काफी एमओयू साइन हुए स्पेस रिलेटेड स्टार्टअप्स के जरिए, तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है भारत को एज अ डीप टेक रिसर्च ओरिएंटेड प्लेयर के रूप में स्थापित करने के।
1: उत्पल जी, अगर भारत की संभावनाओं को थोड़ा सा ध्यान में रखें तो एक समय था जब भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आयात पर सबसे ज्यादा निर्भर करता था, लेकिन आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फोन निर्माता बन चुके हैं, तो ये जो डिजिटल इंडिया की सफलता हमने प्राप्त की है, इसके पीछे आप किन चीजों को मानते हैं, कि आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से बदलाव हुए जो ये सफलता हमारे देश को अर्जित हुई?
2: ये पॉलिसीज में है, पॉलिसीज में सुधार हुआ है। उसके बाद स्टार्टअप और बाकी कंपनीज को वो जो एनकरेजमेंट, ओके एंडोर्समेंट जो मिलते हैं उसके वजह से भी हुआ है। तो आप देखिए अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टार्ट कर दिए हैं, काम इलेक्ट्रॉनिक्स में हो रहा है, एआई में ऑलरेडी हो रहा है, हम लोग सोवरेन एआई का बात कर रहे हैं जो कि बहुत जरूरी है कि हम लोग खुद का हमारा इंडिपेंडेंट मॉडल्स रहे, एटलीस्ट हमारा क्रिटिकल सेक्टर जो है, चाहे डिफेंस हो, चाहे हमारा फाइनेंशियल सेक्टर, गवर्नमेंट कुछ कुछ सेक्टर्स हो, हेल्थ केयर कुछ सेक्टर्स हो, तो इस सब में सोवरेन एआई का आ गया है। और जब भी सोवरेनिटी का बात कर रहे हैं मतलब हम लोग खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद अभी क्वांटम आ रहा है, अभी क्वांटम के लिए भी बहुत जगह पे क्वांटम प्रोसेसर, क्वांटम चिप्स जो है वो बनाने का काम चालू हो गया। हमारा जो क्वांटम इंडियन क्वांटम नेशनल क्वांटम मिशन है उसके तहत हम लोग क्वांटम हब्स बनाए हैं, जिसमें की अलग अलग तरीके का क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च हो रहा है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग जो है या क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है ये नेक्स्ट फ्रंटियर है, मतलब और ये एआई के साथ कन्वर्ज होगा, मतलब एआई के साथ एक साथ होके एक हम लोगों को नई दुनिया देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वांटम वो स्पीड लेके आएगा, वो पैरालिज्म लेके आएगा, उतना सिक्योरिटी लेके आएगा जो कि आज हम लोग वो सिक्योरिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कोई भी जगह सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए। तो ये क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, ये जितना कुछ भी चीज है ये पूरा सब कुछ ये इकोसिस्टम के ऊपर ही बनेगा। और मैं इसके लिए गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज जो चेंजेस हुआ है ये बाकी सब कुछ बाई प्रोडक्ट है पॉलिसीज, आप जो भी पॉलिसी चेंजेस करेंगे तो ये सब ऑटोमेटिकली इसको बढ़ावा मिलेगा।
1: अभी मैंने प्रसून जी से बात की थी सेमीकॉन पर, तो आपको क्या लगता है कि सेमीकॉन की जो संभावनाएं हैं वो दिन प्रतिदिन हमारे लिए बढ़ती जा रही हैं?
2: सेमीकंडक्टर पे हम लोग निर्भर नहीं रह सकते हैं बाहर के कंपनीज को ऑलवेज, क्योंकि क्या हो गया अभी एआई के लिए भी हम लोग को जीपीयू चाहिए। अभी जीपीयू अगर जो देखा जाए तो दो तीन कंपनी है जो कि बाहर का कंपनी है उनके ऊपर हम लोग निर्भर रहे हैं, लेकिन हम लोग को खुद का जीपीयू चाहिए, हम लोगों को वो माइक्रो चिप्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, वो नैनो लेवल पे जो भी अभी काम हो रहा है वो सब वो फैब्रिकेशन का जरूरत है। अगर हम वो नहीं कर पाएंगे तो एआई तो शायद हमारा खुद का हो जाएगा, हमारा बाकी भी चीज शायद खुद का हो जाएगा, लेकिन वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो रन करता है, जो जीपीयू पे रन करता है, वो फिर भी बाहर के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट रह जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स रिवोल्यूशन एक इंडिया में आया है और इसको आगे लेके जाए और इसको पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिपेंडेंस के तक के जाए, सो दैट कि हम लोग किसी के ऊपर भी इलेक्ट्रॉनिक्स में डिपेंडेंट ना रहे।
1: जी, तो प्रसून जी, जैसे भी डिजिटल व्यवस्था की जो हम बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब जिक्र होता है तो तमाम चीजें हमारे सामने आती है, किस तरह से हम अपने काम को करेंगे, जो सेफ्टी एक बड़ा पैरामीटर हमारे लिए, खासतौर पर जब हम बैंकिंग की बात करते हैं या फिर जहां पर पैसे से रिलेटेड चीजें होती हैं, वहां पर किस तरह की ये चीजें आपको लगती हैं कि और ऐड की जा सकती है या फिर उन पर हम काम कर रहे हैं?
0: तो ये डिजिटल सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड एस्पेक्ट आई थिंक काफी इनिशिएटिव भारत सरकार ले रही है, खासकर अवेयरनेस रिलेटेड कि कैसे इसको यूज किया जाए। जैसे अगर आप देखिए सरल भाषा में हमें एड्स या वॉइस एड्स आते हैं कि ओटीपी शेयर नहीं करना है या ऐसे वो आ रहे हैं, पर उसको आगे और सुदृढ़ करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी लैंग्वेजेस में कम्युनिकेशन करना चाहिए। जैसे इनिशिएटिव हुआ है कि जो बैंक्स भी आपको ट्रांजैक्शंस या एसएमएस या वॉइस भेजते हैं, क्या वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में भेज सकते हैं क्या, बंगाली, मराठी, गुजराती? क्योंकि जो भी ये हैकर्स हैं मोस्टली वो इंग्लिश या जो प्रेवलेंट लैंग्वेजेस हैं थोड़ी बहुत हिंदी में वो अटैक कर सकते हैं, पर हमारे पास एक इनहेरिट स्ट्रेंथ है डिफरेंट लैंग्वेजेस की, हम उसको अगर यूज करने लगे तो वो हमारी सोवर्निटी, सिक्योरिटी और ट्रस्ट के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगी। और आई थिंक ये रिकॉग्नाइज हुआ भी है हमारे कुछ इकोसिस्टम में, रीजनल लैंग्वेजेस को डिजिटल कम्युनिकेशन में और सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में यूज करना शुरू कर दिया गया है। तो आई थिंक ओवरऑल इसमें भारत सरकार काफी इनिशिएटिव्स ले रही है, जैसे हमने भी एक आईआईटीज के थ्रू एमएसएमईज को अवेयर करने के लिए कि इनको कैसे यूज किया जा सकता है और बेसिक साइबर

0: पार्टी के क्या प्रैक्टिसेस हैं वो ली जा सकती है, उसके बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है। पर उसमें मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर्स को भी आगे आके उसमें कंट्रीब्यूशन करना चाहिए अवेयरनेस में, ये सिर्फ गवर्नमेंट पे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, यूजर प्राइवेट कॉरपोरेट्स को भी आना चाहिए इसके आगे और कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए।
1: आपने एमएसएमई का जिक्र किया, तो जब एमएसएमई की हम बात करते हैं तो ये कह सकते हैं कि छोटे कारोबारियों को ज्यादा मौके देने की बात होती है, इसमें ओएनडीसी जैसी पहल या फिर जीईएम जिसे हम जेम भी बोलते हैं उस तरह की पहल, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपको लगता है कि सभी को अब आज के समय में पर्याप्त अवसर दिए जा रहे हैं और बराबर के अवसर दिए जा रहे हैं?
0: जी बिल्कुल, और ये सरकार की कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलपमेंट है। अगर आप देखिए, पहले उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बनाया, वहां पे उन प्रोडक्ट्स के जो एमएसएमईज हैं उनको अनेबल किया, अब उनके प्रोडक्ट्स को वो डिजिटल कैटलॉग्स में ओएनडीसी पे ला रहे हैं। फिर अगर आप देखिए, हमारी सरकार ने मल्टीपल एफटीए साइन करे हैं, अब ओएनडीसी के थ्रू वो अपना एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और जो एक्सपोर्ट के लिए उनको चीजें चाहिए जैसे वहां की सर्टिफिकेशन चाहिए, क्वालिटी चेक्स चाहिए, उनके रीजनल भाषाओं में कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि चाहे वो हमारे फार्मर्स हो या हमारे हैंडीक्राफ्ट मेकर्स हो, वो समझ सके और उनके ज्यादा प्रोडक्ट्स बिक सके। तो ये अगर आप देखिए, सारे लेयर्स पे अनेबलमेंट सरकार कर रही है, पहले उनके प्रोडक्ट को हाईलाइट और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे ला रही है, फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म में डिस्प्ले कर रही है, फिर बाहर के मुल्कों के साथ एफटीए कर रही है और उसके थ्रू उनको एक नई मार्केट का एक्सेस दे रही है।
1: इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, आज का दिन पहले जुलाई का दिन है और आज से कुछ साल पहले जीएसटी हमारे देश में आज के दिन ही पेश किया गया था। इसी से मैं इसको जोड़ना चाहूंगा कि जीएसटी जैसी पहल जो पूरी तरह से डिजिटल थी या उसके साथ में जो टैक्सेशन की जितनी भी चीजें थी, इस तरह से उनको डिजिटल किया गया कि कारोबार करना हमारे देश में आसान हो जाए, चाहे छोटा व्यापारी हो बड़ा व्यापारी हो, पूरे देश में कहीं भी व्यापार कर सके और आसानी से अपनी चीजों को फैला सके और उससे अपनी अर्निंग कर सके।
0: जी, टैक्सेशन और खासकर एमएसएमईज को ये कंप्लायंस के बर्डन से काफी हद तक मुक्त किया गया है, काफी हद तक उन चैलेंजेस को हटाया गया, बट अभी भी काफी चैलेंजेस हैं, पर आई थिंक वो इवॉल्व हो रहा है सिस्टम एंड सरकार आई थिंक ओपन है डिस्कशंस या इंप्रूवमेंट्स के सजेशन के लिए, और वो मल्टीपल फोरम्स में एंगेज हो रही है सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे उनके रिप्रेजेंटेटिव हो, और चाहे वो जैसे आप पॉलिसी एडवोकेसी वाले लोग हो, क्योंकि अगर आप हमारे एमएसएमई के जो प्रोडक्ट्स हमें बाहर बेचने हैं एफटीए के थ्रू बेचने हैं, तो उसमें भी कुछ ट्वीकिंग चाहिए होंगी हमारे टैक्सेशन सिस्टम में। तो आई थिंक काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, कुछ होना बाकी है, पर उसके लिए सरकार इंगेज है ग्राउंड लेवल पे।
1: उत्तल जी, माई भारत जो हमारी पहल है वो युवाओं को, और एग्रीस्टेक जो किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बना रही है, तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, इनको आप इस तरह से देखते हैं कि लोगों के पास अब नए अवसर बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं और ये एक तरह से व्यापक अभियान का रूप ले चुके हैं?
2: हाँ जी जरूर, जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसका जो अल्टरनेटिव्स है, हम लोगों को अल्टरनेटिव्स ढूंढना पड़ेगा, और वो हमारे जो सरकार है वो बहुत अच्छी तरीके से अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा है कि हमारा जो स्किल्ड, अगर आपके पास स्किल है तो आपको खाली जॉब का जरूरत नहीं है, आप जॉब के सिवा भी बहुत कुछ कर सकते हैं, वो फ्रीलांसिंग हो, वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हो या एंटरप्रेन्योरशिप हो, बाकी जो कुछ भी आप कर सकते हैं स्किल। सो मेरे ख्याल से जो स्किल के ऊपर अगर हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे, जो कि ऑलरेडी वो हो रहा है ये सब पहल के माध्यम से, तो क्या होगा, हमारा जो जॉब के ऊपर जो हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग जॉब सीकर्स से जॉब प्रोड्यूसर्स ज्यादा बन जाएंगे, और क्या करेंगे, हमारा स्किल को हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे कि बाहर का काम करने के लिए, क्योंकि बहुत ऑनलाइन जॉब्स है, बहुत कुछ ये है जो कि हम लोग, तो दीज आर सम प्लेटफॉर्म्स, ये सब कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो प्लेटफॉर्म्स के थ्रू से हमारा जो यूथ है, यूथ को एम्पावर करने का कोशिश किया जाता है, और इसका जो सेंटर स्टेज पे है वो है स्किल, क्योंकि अगर स्किल है तो हमारा जो एंटायर जो इकोसिस्टम है वो डिग्री बेस्ड या सर्टिफिकेशन बेस्ड इकोसिस्टम से अभी स्किल बेस्ड इकोसिस्टम पे ट्रांसफर हो रहा है, और ये खाली इंडिया का नहीं है, पूरा दुनिया में ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है एक सिस्टम से। नाउ कमिंग टू हेल्थ केयर, जो आपने बात किया उसमें भी बहुत कुछ चीजें हमारा हो रहा है जो की एक मॉडल होके निकलेगा। इंडिया ये अभी अलग तरीके से कर रहा है, बिकॉज मैं क्या देखता हूँ, इंडिया का जो मॉडल है ये यूनिक मॉडल देखता हूँ, ये कॉपी पेस्ट नहीं है कोई भी कंट्री के साथ, तो ये तो मैं बोल सकता हूँ।
1: श्रोताओं, चर्चा का विषय में आज बस इतना ही। हमने आज बात की डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर, जिसमें चर्चा की गई एआई, सेमिकॉन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर। हमारे साथ खास मेहमान, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष, एआई, सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे एआई विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और एआई एवं तकनीकी विशेषज्ञ उत्पल चक्रवर्ती। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।

ये आकाशवाणी चाईबासा है। रात्रि के 10 बज रहे हैं। पेश खिदमत है गज़लों का कार्यक्रम महफिल, जिसमें आज के फनकार हैं जगजीत सिंह।

कार्यक्रम महफिल में आज आप सुन रहे थे एक ही फनकार जगजीत सिंह की आवाज। शुरू के रंग पेशकन बताइए प्रोग्राम फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में सबसे पहले आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश को। फिल्म का नाम है फर्ज़।

मासूम बचाता है आज का सुरों के रंग कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

0: दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कवरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1979 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। श्री मिश्री ने 3 प्रधानमंत्रियों इंद्र कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के ITR में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वो जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनका ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ कल होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज AP मॉलर मर्स्क समूह के एस्टेट स्ट्रेटेजी प्रमुख अहमद हसन के साथ भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत बनाने पर चर्चा की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12वें ओवर में 3 विकेट पर 114 रन बना लिए हैं। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड और DR कांगो के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक DR कांगो ने 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The government today approved two major highway infrastructure projects worth combined over 14,000 crore rupees. Briefing media in the national capital about the Union Cabinet's decisions, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the Cabinet has approved the construction of an 8.1-kilometre long, six-lane road tunnel in Delhi on NH-148AE connecting the Dwarka Expressway with Nelson Mandela Mark in Vasant Kunj. Mr. Vaishnaw said the Cabinet also approved the construction of the 117.7-kilometre long Kanpur-Kaburai section of National Highway 34 in Uttar Pradesh as a four-lane access-controlled corridor. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission, Grameen, or Viksit Bharat G. Ramji Act 2025 has come into force across the country today. Under the Act, eligible rural households will now have a statutory entitlement to 125 days of guaranteed wage employment. The government also notified revised wage rates under the VB G. Ramji Act 2025 for all states and union territories. Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan described today as an unprecedented day for rural India. Prime Minister of Japan Sanae Takaichi arrived in New Delhi this evening on a three-day visit to India. Prime Minister Takaichi was received by Minister of State Dr. Jitendra Singh. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. She will attend the 16th India-Japan Annual Summit tomorrow with Prime Minister Narendra Modi. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between the two leaders. Prime Minister Narendra Modi today said that he is looking forward to the wide-ranging discussions with Japanese Prime Minister that will further deepen India-Japan's special strategic and global partnership. In a social media post, Mr. Modi said that he is delighted to host her on her first visit to India. Prime Minister Modi said that through their joint efforts, India and Japan will continue to advance peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. Union Home Minister Amit Shah has asked the High-Level Committee on Demographic Changes to submit its recommendations at the earliest. Mr. Shah gave the direction during a meeting with the committee in New Delhi. The committee informed the Home Minister that they will visit various states and union territories to obtain first-hand information on demographic changes and interact with various administrations. The panel informed the Home Minister that a detailed questionnaire has been prepared to seek relevant information from states and union territories in advance, making its field visits more meaningful and interactive. India has strongly condemned the demolition of the historic 125-year-old sacred Gurudwara Sri Guru Singh Sabha Sahib in Farrukhabad, Pakistan, calling it highly deplorable and a targeted act of vandalism. In response to media queries regarding the reported demolition, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, the systemic targeting of religious minorities and their places of worship in Pakistan continues unabated. India has called upon Pakistan to expeditiously investigate this matter and bring the perpetrators of this act to justice. India and Pakistan today exchanged lists of civil prisoners and fishermen in each other's custody through diplomatic channels in New Delhi and Islamabad. The External Affairs Ministry said in a statement that India has shared lists of 386 civil prisoners and 53 fishermen in its custody who are Pakistani or believed to be Pakistani. Pakistan has shared lists of 52 civil prisoners and 198 fishermen in its custody who are Indian or believed to be Indian.